0: आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग. आपलं खानदेश, आपली माणसं.
1: इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की. वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने. ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में. कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में. कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की.

नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, कई बार लोग ऊपरी तौर पर बहुत बड़े धार्मिक बन जाते हैं। वे गले में माला डाल लेते हैं, माथे पर तिलक लगा लेते हैं, घंटों पूजा पाठ या ध्यान का ढोंग भी करते हैं और समाज में यह दावा करते हैं कि उन्होंने अपने क्रोध, लोभ और वासनाओं पर काबू पा लिया है। लेकिन जैसे ही कोई ऐसी परिस्थिति आती है जहां उनके स्वार्थ को चोट पहुंचती है, उनका यह नकली मुखौटा तुरंत उतर जाता है और उनका असली हिंसक रूप बाहर आ जाता है। इसे अध्यात्म की भाषा में आत्मछल या नकली साधना कहा जाता है। कबीर साहब बाहरी दिखावे और खोखले दावों के सख्त खिलाफ थे। वे कहते थे कि जब तक भीतर की बुनियादी जमीन साफ नहीं होगी, तब तक ज्ञान की फसल कभी नहीं उग सकती। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह आंखें खोल देने वाला सूत्र। मन मारिया मन करी, सके न पंच प्रहारी। मन मारिया मन करी, सके न पंच प्रहारी। सील सांच सरधा नहीं, इंद्री अजहू उघारी। मन मारिया मन करी, सके न पंच प्रहारी। मन मारिया मन करी, सके न

श्रोताओं, कबीर साहब उन लोगों की पोल खोलते हुए कहते हैं जो मन को जीतने का दिखावा करते हैं। मन मारिया मन करी, तुमने पूरी दृढ़ता और ईमानदारी के साथ अपने इस चंचल मन को नहीं मारा, इसे शांत नहीं किया, केवल ऊपर ऊपर से साधु होने का नाटक किया। सकेन पंच प्रहारी, और यही कारण है कि तुम आज भी उन पंच प्रहारी यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी पांच दुश्मनों के प्रहार को रोक नहीं सके। जब भी मौका मिलता है, ये पांचों विकार तुम्हें अपने वश में कर लेते हैं। तुम्हारी साधना असफल क्यों हुई? अगली पंक्ति में कबीर इसका सीधा और मर्मभेदी कारण बताते हैं। सील सांच श्रद्धा नहीं, क्योंकि तुम्हारे जीवन की बुनियाद में न तो सील यानी सदाचार और पवित्रता है, न सांच यानी आचरण की सच्चाई है, और ना ही परमात्मा के प्रति कोई श्रद्धा यानी सच्ची श्रद्धा है। तुम्हारी भक्ति में केवल प्रदर्शन है, प्रामाणिकता नहीं। इंद्री अजहू उघारी, और इसीलिए तुम्हारी इंद्रियां आज भी अजहू उघारी यानी पूरी तरह बेलगाम, नग्न और सांसारिक भोगों की तरफ भागने के लिए व्याकुल बैठी हैं। तुम्हारा त्याग केवल एक दिखावा है। यह दोहा यम नियम और नैतिक शुद्धता का महासूत्र है। पतंजलि योग सूत्र में भी ध्यान और समाधि से पहले यम और नियम जैसे सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, संतोष को अनिवार्य माना गया है। कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि जो साधक अपने आचरण में शील और सत्य को धारण नहीं करता, उसकी इंद्रियों का पसर यानी फैलाव कभी शांत नहीं हो सकता। पंच प्रहारी हमारे ही भीतर के वे आदिम विकार हैं जो चेतना को पशु स्तर पर गिराए रखते हैं। कबीर का यह सूत्र हमें चेतावनी देता है कि आध्यात्मिक प्रगति का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जब तक मन को सजगता से, जतन से नहीं साधा जाएगा और श्रद्धा को गहरा नहीं किया जाएगा, तब तक संसार सम्मोहन नहीं टूटेगा। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा खुद के प्रति पूरी तरह ईमानदार होकर अपनी साधना और अपने आचरण को टटोलिए। हम मंदिर जाते हैं या कबीर के इन सूत्रों को सुनते हैं, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हमारे भीतर का क्रोध कम हुआ है? क्या हमारे भीतर दूसरों के प्रति ईर्ष्या और निंदा का भाव शांत हुआ है? आज कोशिश कीजिए इस आत्म छल को रोकने की। ऊपरी दिखावे को छोड़कर अपने भीतर सील यानी मधुर व्यवहार यानी ईमानदारी और श्रद्धा यानी अटूट विश्वास की नींव को मजबूत कीजिए। अपने मन की वृत्तियों पर होश का ऐसा पहरा बिठाइए कि ये पंच प्रहारी आपको दोबारा लूट न सकें। जब आपके आचरण में पवित्रता आएगी, तो वह राम नाम आपके भीतर सहज ही फलीभूत होने लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जब पीछे मुड़कर देखा, पास्ट को जब भी देखते हैं, तो ना चाहते हुए भी वो सारी बातें हमें याद आ जाती हैं, या फिर हम जीवन में जब चल रहे होते हैं, कभी भी अचानक अनजाने ही पास्ट की बातें ट्रिगर हो जाती हैं, और फिर जहां हम खड़े हैं वो पास्ट ही हमारा प्रेजेंट बनने लगता है। अगर पिछली कड़ी आपको याद हो तो हमने बात की थी कि कैसे हमारा पूरा गुजरा हुआ कल आज भी, तभी हम कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स, क्योंकि मैंने ही उसे अपना प्रेजेंट बना लिया तो फिर वही तो आगे सामने आएगा। हमने एक मुद्दे पर बात करनी चाही थी और वो था जब किसी लव्ड वन की, किसी करीबी की, जो अपनी देह छोड़ देते हैं, वो नहीं रहते जीवन में, या फिर कहीं कोई ऐसा अपना होता है जो छूट जाता है, कहीं और चला जाता है। तो ऐसे दो एक्सपीरियंस हैं जो कि जिनसे पार पा पाना, या जो वो बार बार अनजाने ही आते हैं, उन्हें कैसे हैंडल करना है, और इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पास्ट की हम बात कर रहे थे तो कई अनुभव तो छोटे छोटे होते हैं जिसको करके कि हम हैं, और खुद ही अपने आप को हील करना, ये हमने समझा, ना हम किसी और को बदलेंगे ना सिचुएशन बदलेगी, और वो गुजर गया, खत्म हुआ। लेकिन कुछ सिचुएशंस, जैसे कि कोई हमारा बहुत करीबी और उसकी डेथ हुई, वो आज भी उतना ही बड़ा घाव है, और हमने किसी तरह से अपने आप को कवर अप किया है। मतलब इतने लोग इतना समझाते हैं, इतनी बातें करते हैं, कवर अप कर लेते हैं, नॉर्मल जिंदगी भी जी रहे हैं, सबके साथ भी जी रहे हैं, काम पर भी है, लेकिन वो खाव तो भरता नहीं है।
1: डेफिनेटली आई थिंक जीवन में हमें बहुत सारे, जैसे हम शुरू से देख रहे हैं, उतार चढ़ाव देखने, लेकिन ये जो एक परिस्थिति होती है, डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर और अ क्लोज फ्रेंड, ये शायद जीवन का सबसे बड़ा एग्जाम पेपर होता है, जिसमें तो हमने कहा कि दर्द तो नेचुरल ही है, वी नेवर एवर थॉट के कोई और ऑप्शन भी है। यस, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। जीवन में वो सिचुएशन है जिसको पार करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, लेकिन इसमें भी अगर हमें राइट नॉलेज है, विजडम है, और फिर साथ साथ पावर भी है, तो इसको भी हम क्रॉस कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम देखते कि उसमें भी अगर हम देखें कि जब हमारा बच्चा, बिकॉज आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, लेकिन उसमें भी अगर किसी के बच्चे की डेथ हुई है, यंग अनटाइमली डेथ, तो शायद उसको पेरेंट्स के लिए फेस करना बहुत डिफिकल्ट होता, और वो अपने आप को ये कह ही देते कि बाकी पूरी जीवन तो दर्द में ही बीतनी है, यहाँ तक कि वो दर्द इतना ओवरपावर कर जाता कि कहते हमें जीना ही नहीं है, हमारे जीने का कोई पर्पस नहीं है। उनको अब जो प्रेजेंट फैमिली मेम्बर्स हैं वो कोई नहीं दिखाई देते, उनका कुछ नहीं लग रहा, बस वो एक उसमें ही इतने दर्द में चले गए हैं कि कहते आई डोंट वांट टू लिव एनीमोर, आई लॉस्ट माय पर्पस ऑफ लिविंग। ऐसे समय में भी हम अपना ध्यान कैसे रखें, बिकॉज हमारा पूरा जो बात है वो यही कि अपना ध्यान कैसे रखना, क्योंकि अब तो वो जिसका हम ध्यान रख रहे थे
0: वो भी नहीं रहा,
1: वो नहीं है, तो वो दर्द में अब मुझे अपना ध्यान कैसे रखना,
0: अब मैं ध्यान अपना रखना ही नहीं चाहती। यू नो, लाइक दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इट लाइक आई डोंट वांट टू लिव, आई डोंट वांट टू डू

0: एनीथिंग यू नो, एंड उसके बावजूद भी मैं करती हूँ, उठता हूँ, काम करती हूँ और चीज़ें करती हूँ।
1: राजयोग में जो सबसे फंडामेंटल बात जो हमें समझ में आती कि मैं कौन हूँ, ये एक फंडामेंटल रियलाइजेशन है जो हमारा सारा पर्सपेक्टिव चेंज कर देती कि ये शरीर है, नाम है, परिवार है, रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन इन सब के लिए हमने कहा मेरा, यू नो, मेरा नाम ये है, मेरा प्रोफेशन ये है, ये मेरे रिश्ते हैं। शरीर के लिए भी हमने कहा मेरी आंखें, मेरा कान, मेरा शरीर, आज मेरा शरीर बहुत दर्द हो रहा है, तो ये सब कुछ मेरा मेरा कहने वाला वो मैं कौन। तो वो हमें समझ में आता कि वो एनर्जी है जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते, चैतन्यता जिसको कहते, द लिविंग, द बीइंग पार्ट, क्योंकि हम कहते हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंटिटीज, वन इज द बॉडी, द ह्यूमन जो ह्यूमस वर्ड से निकलता मिट्टी, एंड बीइंग इज एनर्जी, कॉन्शियसनेस। तो ये जो बॉडी है ये मेरी है, और मैं कौन, वो शक्ति। जब हमें समझ में आता कि आई एम एनर्जी, देन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सो इट इज इटर्नल। जब ये समझ में आता तो देन आई अंडरस्टैंड कि मैं वो चैतन्य शक्ति जिसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम आत्मा कहते, सोल कहते, स्पिरिट कहते, मैं इटर्नल हूँ। तो डेथ किसकी होती है, क्योंकि पूरा जीवन हम मृत्यु के भय में जीते हैं, लेकिन जब मुझे समझ में आता कि मैं तो इटर्नल हूँ, आज दिन तक भी हम सुनते आए आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जो जल नहीं सकता, जो मर नहीं सकता, जिसका विनाश नहीं हो सकता, आई एम इटर्नल एंड सो इज एवरी सोल, सो एवरी सोल इज इटर्नल। तो मृत्यु का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज डेथ, इज व्हेन आई द सोल लीव वन कॉस्ट्यूम, वन सेट ऑफ रिलेशनशिप्स, वन पर्टिकुलर सीन, एंड देन आई हैव टू शिफ्ट। तो अब हम अगर इसको देखें कि डेथ मीन्स के वो आत्मा एक, क्योंकि वी आर सीइंग डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर, वो आत्मा जो कल तक मेरे साथ थी, उसका मेरे साथ एक जिसको हम कहें कार्मिक अकाउंट था। हम कहाँ आते हैं, बर्थ और डेथ कैसे डिसाइड होता है, कई लोग बोलते कौन डिसाइड करेगा कहाँ जन्म हुआ और कब तक उस शरीर में रहना और फिर कब वहाँ से चलना है, इट इज़ बेस्ड ऑन माई कार्मिक कनेक्शंस। हम जिस परिवार में हमारा जन्म होता, जिन लोगों के हम कनेक्शन में आते, इट इज़ बिकॉज उन आत्माओं के साथ मुझ आत्मा का कार्मिक कनेक्शन है, जिसको हम कहें एनर्जी के लेन देन है, दिस इज़ बेस्ड ऑन माई पास्ट कार्मिक कनेक्शंस। तो जिन आत्माओं के साथ हम आज हैं, हम पहले भी उनके साथ कभी थे, जब हम उनके साथ पहले थे हमारा एक पर्टिकुलर अकाउंट क्रिएट हुआ था, अब हम फिर उनको मिलते फिर हमारा एक अकाउंट है, लेकिन जैसे ही अब मेरा ये अकाउंट जो था वो सेटल हो जाता, आई हैव टू लीव, आई कैन नॉट स्टे वन मिनट मोर आफ्टर दैट। तो जब हमें ये समझ में आता वो आत्मा मेरे कॉन्टैक्ट में आई फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, for settling a particular account, उसके बाद the soul cannot be in my contact anymore, क्योंकि उसका वो account finish हो गया and it has to go somewhere else, जहाँ उनका एक
0: नया account
1: है। वो soul अपनी journey पे है, you know, it's like एक train में हम जा रहे हैं, हम सब अपनी अपनी journey पर हैं, ऐसा नहीं होगा कि सब लोग एक ही station से चढ़ें और सब लोग एक ही station पे उतरे, हर एक की journey अलग अलग है, तो हर एक का बोर्डिंग पॉइंट वो भी अलग अलग है, हर एक का उतरने का स्थान वो भी अलग अलग है, क्योंकि हर एक अपनी अपनी यात्रा पर है।
0: But I didn't want to finish this account. See?
1: No, it's not about I wanting to finish this account. I'm not talking about my account. It's about the other soul's account. अगर आपका अकाउंट मेरे साथ चार दिन का है, तो उसके बाद आपने पांचवें दिन दूसरी जगह जाना ही जाना है, क्योंकि पांचवें दिन आपका कनेक्शन दूसरी जगह, लेट्स से आप हफ्ते में तीन दिन हमारे साथ शूट करते हैं, लेकिन चौथे दिन आपको कहीं और शूट पे जाना है, आपकी वो कमिटमेंट है। अब मैं को तीन दिन आपके साथ बहुत अच्छा लगा, मैं सोचूं चौथे दिन भी आप यहीं आ जाएं, तो मेरे चाहने से आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपका कमिटमेंट अब चौथे दिन कहीं और है। अब मैं जो यहाँ पीछे बैठी, आप तो चले गए कहीं और, अब मेरे पास चॉइस है कि मैं इसको एक्सेप्ट करूं कि आपका कमिटमेंट आपका अकाउंट कोई और है या मैं दर्द में रहूं कि वो क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है आज मेरे
0: साथ। सबसे बड़ी बात ये भी फिर ये भी रहता है कि तो इसका मतलब उनको जब वो चले गए हम याद ही नहीं रहते, यू नो, बिकॉज कमिटमेंट पूरा हुआ।
1: हम उनको याद नहीं रहते, ये उनके लिए अच्छा है ना एक्चुअली। अगर हम एक पल के लिए देखें, आई मेट वन मदर जिनका 21 साल का बेटा ने एक्सीडेंट में डेथ हुई, तो वो बहुत अच्छा पास्ट का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। बेटा दूसरे देश में था तो कहा हमारा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था कि यहाँ अगर मैं अपसेट होती उसको वहाँ पता चलता या उसके साथ कुछ होता तो मुझे यहाँ इतना जैसे हमारा यू नो वो बॉन्डिंग था। तो कहते हम तुरंत फोन करते एक दूसरे को, सब ठीक है, कुछ हुआ है? एंड शी सेड इनवेरिएबली वी वर राइट कि दूसरे के साथ कुछ ना कुछ हुआ था, तो इतना हमारा कनेक्शन। अब वो बच्चा, वो आत्मा कहीं और चली गई है। ये मदर बहुत रोती है, रोज रोती है इतना। तो आई जस्ट आस्क्ड हर वन थिंग, आई सेड कल तक आपका और उस आत्मा का इतना कनेक्शन था ना कि आपकी एक थॉट उधर तक पहुंचती, उसकी एक थॉट आप तक पहुंचती। अब वो आत्मा का कॉस्ट्यूम चेंज हो गया है। सी व्हाट वी से, इट्स ओवर, इट्स डेथ, इट्स फिनिश्ड, नो, इट्स जस्ट द सोल हैज चेंज्ड अनदर कॉस्ट्यूम। लेकिन क्या वो कनेक्शन फिनिश हो गया होगा? क्या वो एनर्जी एक्सचेंज फिनिश हो गया होगा? अगर आप आज कहीं और भी चले गए, क्या आपको भूल गए? आपको याद नहीं आएगी? आएगी। अब क्या होगा? लेकिन पहले वो दूसरे देश में था, उसको अगर याद आता या उसको कैच होता, ही कुड कॉल। एक मिनट के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्रिएट द सीन इन फ्रंट ऑफ यू कि वो आत्मा अब एक दूसरे शरीर में है, प्रोबेबली इन द वूम्ब ऑफ द मदर और अ वेरी लिटिल बेबी, जस्ट कैन नॉट कॉल यू बैक।
0: But will he remember? It's not the remembrance.
1: It is not remembrance. शुरू में तो remembrance है।
0: हाँ।
1: एक आत्मा जब उस शरीर में है, आप देखो एक बच्चे को शुरू में सारा पास्ट याद होता है।
0: कभी वो हंसता है, कभी रोता है।
1: कभी वो हंसता है, कभी वो रोता है। क्या? क्योंकि नेचर है ना, जैसे हमें पास्ट भूलता जाता है, तो नेचर बहुत सुंदर ऐसे बनी हुई है प्रकृति कि जैसे जैसे बच्चा बोलने की स्टेज पर आता, दो तीन चार साल, तीन साल तो हो जाते, तब तक उसको पास्ट भूल जाता क्योंकि प्रेजेंट की इन्फॉर्मेशन लेयर उसके ऊपर सारी कोड होते जाते। तो कई बच्चे ऐसे मिलते हैं ना जिनको पास्ट याद होता, तो वो किस एज में होते हैं? वो 19, 20, 25 की एज में नहीं होता कभी भी,
0: 5, 6, 7।
1: क्यों? क्योंकि मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग थी कि वो जो बात दो तीन साल तक भूल जानी चाहिए थी वो 4, 5, 6 साल तक भी याद है और वो उसका वर्णन फिर करना शुरू करते। लेकिन जब वो आत्मा माँ के गर्भ में है, वो तो अभी अभी आई है, या वो एक एकदम छोटा बच्चा, वो तो अभी उसको सब याद है, सारा कुछ याद है, और वो पास्ट को याद करके ही रोता और हंसता है। बच्चा कभी भी प्रेजेंट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। हम हॉस्पिटल में बच्चे को क्रेडल में देखते, हम उसके साथ प्यार से बात करें, हमें लगता है वो हमें देखकर डजंट इवन नो मी, डजंट इवन रिकॉग्नाइज मी, वो कुछ और याद करके हंसता और रोता है। अब यहाँ वो माँ है, यहाँ वो आत्मा है, हम उसको बच्चा नहीं कहेंगे, अब वो आत्मा है यहाँ। अगर पहले आपका एक एक दर्द वो ऐसे कैच करता था, अब नहीं करेगा? अब करेगा या नहीं करेगा? अभी भी करेगा। यहाँ आप इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, किसको याद करके रो रहे हैं? उसको याद करके रो रहे हैं। लॉ ऑफ एनर्जी
0: किस बॉडी में था? यू नो, किसी और कॉस्ट्यूम में था,
1: पर कॉस्ट्यूम को नहीं हम याद करते ना। एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो कॉस्ट्यूम और कॉस्ट्यूम के बीच नहीं, वो आत्मा और आत्मा के बीच है। दैट्स व्हाट वी सेड इज रिलेशनशिप। अब जब हम रो रहे हैं, हम पेन की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, एनर्जी ट्रैवल करने वाली है, कहाँ ट्रैवल करेगी?
0: उसी पे,
1: उस आत्मा के प्रति जिसके लिए वो क्रिएट की गई है। सो यस, इट इज वेरी डिफिकल्ट। यस, हम नहीं इस, हम कहते हैं हम इस दर्द से नहीं निकल सकते, लेकिन अगर हम अपने आप को प्यार से और लॉजिकली समझाएंगे कि जब वो आत्मा यहाँ थी तो मैं चाहे कुछ भी हो जाता उसको दर्द ना होने देती, मैं कुछ भी कर जाती उसको अपने दर्द से दूर करने के लिए, और आज मैं ही बैठकर क्या भेज रही हूँ? मैं दर्द भेजते जा रहे हो, भेजते सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वो मेरे सामने नहीं है, तो मुझे पता नहीं चल रहा, तो मेरे ऊपर उसका फर्क नहीं पड़ रहा। इफ आई हैव द रियलाइजेशन दैट ऑल दिस पेन दैट आई एम क्रिएटिंग इज गोइंग टू दैट सोल, आई विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। अपने लिए नहीं ध्यान रखना चाहते ना, ठीक है, वी से मुझे नहीं ध्यान रखना अपना, आई डोंट वॉन्ट टू बी फ्री ऑफ पेन, अपने लिए नहीं, उनके लिए सही।
0: जिसके लिए हम जीवन भर वैसे ही करते आए हैं,
1: जिनके लिए जो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट थे उनको इतना दर्द पहुंच रहा है। अच्छा, बच्चा अगर थोड़ा बड़ा होता जाता वो हमें याद नहीं रख, वो याद नहीं करता, भूल जाता है, लेकिन एनर्जी जो हम भेज रहे हैं वो एनर्जी वो फिर भी रिसीव करता है। एनर्जी ऐसी चीज है, आप जिसके प्रति क्रिएट करो इट इज ट्रैवलिंग टू दैट पर्सन।
0: तो मतलब इसका मतलब वो जो सोल जिसने जहाँ जन्म लिया जो भी है उस तक वो वाइब्रेशंस तो पहुंच रही हैं।
1: ऑलवेज ऑलवेज ऑफ कोर्स, सी इट्स लाइक दिस, आप मेरे लिए जो भी एनर्जी क्रिएट करोगे
0: तो देन अननोइंगली
1: आई एम सेंडिंग सो मच पेन।
0: यस, और वो पेन में चला जाता होगा बच्चा, मतलब वो जहां पे भी होगा।
1: सी हाउ इट हैपेंस, क्योंकि हमारे अंदर आज इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने आप की प्रोटेक्शन कर सके। हमने यही देखा ना, आपने दर्द भेजा तो मेरे भी दर्द में चली जाते हो। अनलेस आई वर्क वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ कि आपकी एनर्जी औरों की एनर्जी मुझ पर इन्फ्लुएंस नहीं करे, लेकिन मोस्ट ऑफ अस आर नॉट डूइंग दैट वर्क। तो मोस्ट ऑफ अस आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय वट एवर एनर्जी इज बीइंग सेंट टू अस। तो जब हम उन सब लोगों की एनर्जी से इन्फ्लुएंस होते जो हमारे आसपास है, अगर कोई कहीं और भी है लेकिन वो जो एनर्जी भेज रहे हैं उसका भी इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर।
0: और उस बच्चे को तो ये पता भी नहीं चलेगा ना, बिकॉज वो सामने हो तब हमें समझ में आता है कि इसकी एनर्जी ये आ रही है, वो उसका ये आ रहा है, लेकिन वो तो द चाइल्ड वोंट बी इवन नोइंग कि वो कहां से आ रही
1: है। दैट्स बिकॉज़ वी आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ पेन। तो एज अ पेरेंट, एज अ हस्बैंड वाइफ, जो भी हम हैं यहाँ पर, हमें मालूम है, हम अपने आप को तो ये कह देते कि हमें खुश रहने का कोई हक नहीं है, हम रहना नहीं चाहते खुश। यू नो पीपल से आई डोंट वांट टू बी हैप्पी, इट्स नॉट अबाउट बीइंग हैप्पी। यस, यू डोंट वांट टू बी हैप्पी, बट हैप्पी इज नॉट एक्साइटमेंट, इट्स अबाउट बीइंग स्टेबल, इट्स अबाउट बीइंग पेन फ्री, दैट्स ऑल। क्योंकि अब आप जितनी बार दर्द क्रिएट करेंगे अपने को तो देंगे ही, उनको भी भेजेंगे। देखो अगर बच्चा कहीं और है, देखो नॉर्मल में कैसे होता, अगर बच्चा कहीं और है और वो हमें फोन करता दूसरे शहर से, कहता सब कुछ ठीक है घर पे, तो हम क्या कहते? हाँ,
0: सब ठीक है।
1: यहाँ पर हो सकता 10 प्रॉब्लम हो आज, हम बच्चे को कभी नहीं बताते, या जो भी हस्बैंड वाइफ पे गए हो हम बताते नहीं। व्हाट इज द इंटेंशन? दूसरा जहाँ है वहाँ वो सेट हो जाए। अगर हम यहाँ की बात उसको बताते रहेंगे सारा, वो वहां सेट कैसे होगा? सिमिलरली आत्मा दूसरी जगह है, हमारा प्योर इंटेंशन क्या होना चाहिए? वो वहां पर सेट हो जाए। हम रोज पता है क्या मैसेज भेजते
0: हैं? हम सेट नहीं होने दे, बिकॉज हमारा, इट मींस वी आर एक्चुअली बीइंग लिटिल सेल्फिश। I don't want to say that, but
1: because we're thinking only about ourselves, yes, no? Yeah. We're not thinking about them. Why we were not able to think about them? Because we thought they are gone.
0: Haan.
1: You know, जहाँ हमने कहा they are gone, तो फिर हमें यही नहीं था कि वो अभी हैं। हमने कहा वो तो चले गए।
0: वो मेरी ज़िंदगी से तो पर चले गए ना, ये बड़ा दुख है।
1: लेकिन
0: वो कहीं तो है
1: ना। Similarly, अगर बच्चा दूसरे शहर में, वो यहाँ नहीं
0: है, how should I accept it, you know? Like, ये मैं मान ही नहीं पाती हूँ, because ये इतने confusions और death के बाद क्या होता है क्या नहीं होता, इसको लेके इतने सारे belief systems हैं, ये इतना सब कुछ है, तो ये मैं कैसे accept कर लूँ कि वो है?
1: जब हमें ये समझ में आ गया कि हम आत्मा हैं, और ये हमें समझ में आ गया कि आत्मा का विनाश नहीं होता, तो फिर तो वो है ना। विनाश नहीं हो सकता ना, एनर्जी कैन नॉट बी फिनिश्ड, सो इट इज देयर। व्हाट डज एनर्जी डू? इट जस्ट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, सो वन कॉस्ट्यूम टू अनदर, वो है।
0: लेकिन यहाँ एक बात मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ कि इससे जुड़ी इतनी कन्फ्यूजन है कि हम फिर ना कई कई और चीजों में चले जाते हैं। उसने शरीर लिया कि नहीं लिया, वो यही है कि नहीं है, और कई बार हम कुछ और
1: कनेक्ट करने की भी कोशिश
0: करते हैं। इज इट राइट?
1: इट इज अगेन, सी राइट एंड रॉन्ग अगेन, जितना हम उसको यहाँ खींचने, देखो एक तो है हम असंभव करने की कोशिश, या तो हमारे कुछ भी करने से अगर वो वापस इस कॉस्ट्यूम में आ सकते, गो एंड डू वट एवर यू वॉन्ट, वो तो होने नहीं वाला है। लेकिन अगर हम बार बार यहाँ कनेक्ट करना मेरे से, यू नो बहुत सारे आजकल टेक्निक्स फॉलो कर, क्या क्या, कम्युनिकेट विद हिम, आई कैन कनेक्ट विद हिम, जब वो यहाँ आ नहीं सकते हमें उनको क्या करने देना है? जितने बच्चे हैं जिनको अपना पास्ट बर्थ याद आ जाता है, यू नो हाउ अनकंफर्टेबल दे बिकम। वो यहाँ है 5 साल के, याद उनको आ गया कुछ पास्ट का, ये उनका प्रेजेंट है। प्रेजेंट को वो छोड़ नहीं सकते, लेकिन वो प्रेजेंट और पास्ट के बीच में खींचते जाते, एंड दैट इज वाई इट्स लॉ ऑफ नेचर कि हमें वो पास्ट बर्थ भूल जाना चाहिए, क्योंकि जिसको नहीं भूलता वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट में चलता है. तो इसी तरह वो आत्मा दूसरी जगह चली गई, लेट इट सेटल. अगर हम उसको इस तरह से अलग अलग तरह से खींचने की कोशिश करें,
0: सेटलमेंट नहीं होगा,
1: नहीं होगा ना. इट इज लाइक सपोज बच्चा दूसरे शहर में है और हम उसको फोन करके बोले वापिस आ जाओ, तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लग रहा. हम ऐसा बोलेंगे कभी? हम कहेंगे नहीं, सब ठीक है, आप वहीं रहो. सिमिलरली आत्मा कहीं और चली गई है, दूसरी जगह. हम थॉट्स क्या क्रिएट करते, क्यों छोड़ के चले गए, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती, मुझे जीना ही नहीं है,
0: कुछ भी करके लौट आओ, यू नो, लाइक इट्स
1: नाउ सी, नाउ इमेजिन दैट सोल देयर गेटिंग ऑल दीस थॉट्स, दीस ऑल वाइब्रेशंस, हाउ मच पेन. वो आ भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकते, वो सिर्फ क्या करते, रिसीव करते जाते, रिसीव करते जाते इतना दर्द. तो अपने लिए नहीं, उनके लिए, उस आत्मा के लिए जो गए है, लेट्स स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ आर सेल्फ. एंड ऑल्सो जो हमारे साथ अभी हैं परिवार में, ये भी एक बहुत बड़ी जो बात हो जाती, एक घर में दो तीन चार लोग हैं, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, अच्छा हस्बैंड वाइफ हैं, एक नहीं है, रिश्ते में क्या दूंगी मैं दूसरे को. हम ये नहीं वैल्यू करते कि ठीक है वो आज मेरा मेंबर मेरे साथ नहीं है, लेकिन ये एक दो लोग ही. दिस इज हाउ द पास्ट
0: एक्चुअली एज इम्पोर्टेंट एज दैट चाइल्ड
1: एज इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स इक्वली इम्पोर्टेंट वॉज इट दैट दैट पर्सन वॉज इम्पोर्टेंट द रेस्ट वर नॉट इम्पोर्टेंट बट माई फोकस गोज ऑल टूवर्ड्स दैट one who's not there, and in the process I neglect everyone who is there. Bahut gharon mein ye dekha ja raha hai ki husband wife ke beech ka relationship wo dur ho jate hain ek dusre se. Jo bachcha hai aaj wo neglected feel kar raha hai kyunki parents kya hain, puri tarah se dard mein chale gaye hain. To us bachche ko jo unke saath hai, uske paas kaun si energy hai dene ki? Ghar ka pura vayumandal kaisa ho gaya hai? Dard mein. We have to stop and ask ourselves, till when will we let this past influence my present? I cannot do anything about it except for accepting the situation.
0: What to do then? Okay, one realization hits. I just hope a lot of people watching, because this is something actually one can empathize with, you know. Samajh mein aata hai, dard bhi genuine tha. Aur ab ye realization, jab facts saamne aate hain, ki ये है, अब आप अगर अपने आप पर काम करने के लिए तैयार हैं तो क्या करें?
1: हमें ये पता है कि याद तो आती है, यू नो, हम कहें भूल जाएं उसको तो वो नहीं होता, लेकिन एक है प्यार से याद, दूसरा है दर्द से याद. नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही याद आती तो याद इज फॉलोड बाय दर्द. कई बार लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारी अच्छी मेमोरीज थी, हमने बहुत अच्छा समय उनके साथ बिताया, तो वो समय को याद करके हमें अच्छा लगता है. लेकिन एक्चुअली क्या होता, जैसे ही वो अच्छे वाले सीन्स हमें याद आते, हमें उन क्षण बहुत अच्छा लगता, एंड नेक्स्ट क्षण हम दर्द में चले जाते कि अब वो सीन्स नहीं है,
0: क्योंकि अब वो नहीं है, यू नो, वो पूरा वो रोना,
1: एक्चुअली वो अच्छा नहीं है. इट्स नॉट that you created happiness or you created love, you still created pain. तो ये हमें याद रखना होगा कि ये दर्द जो हम बार बार justified कहकर create कर रहे हैं, ये मेरे ऊपर तो impact डाल ही रहा है, मेरे साथ अब जो आत्माएं हैं उनके ऊपर impact डाल रहा है, और सबसे ज्यादा impact
0: तो कोशिश क्या करें कि वो जो पुरानी good memories हैं,
1: उसको जब भी याद करें, नहीं उनको जब भी याद करें, याद तो आती है, याद जब भी करें, we consciously sit and send vibrations of love. Okay, yes, I understand you're somewhere else. I wish that you settle there. And I send you vibrations of love, vibrations. हम नहीं कहते एक मिनट उन आत्मा को शांति का दान भेजे, उस आत्मा की शांति के लिए नहीं हवन करते हैं, क्या करते हैं उस आत्मा की शांति के लिए. लेकिन उस आत्मा को शांति ये सिर्फ करने से नहीं मिलेगी, वो आत्मा को शांति कब मिलेगी,
0: जब
1: हम शांत रहेंगे. हम अगेन सी हाउ वी हैव बिकम, हम शांति भेजने के लिए भी करते हैं, वी आर डूइंग थिंग्स, कुछ भी करने से शांत. अगर मैं रो रो कर हवन कर रही हूँ, हवन नहीं पहुंचेगा उधर, वो तो फिजिकल है, क्या पहुंचेगा,
0: मेरा
1: दर्द पहुंचेगा. तो उस आत्मा की शांति के लिए हमें क्या करना होगा, हमें शांत रहना पड़ेगा. दैट्स द ओनली वे, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू एक्सेप्ट एंड लेट गो ऑफ द पास्ट. एंड जब भी याद आए vibrations of love, peace and power. It's very important.
0: And actually, हम जितना peace, power और इस love की vibrations भेजेंगे, वो हमसे ही होकर गुजरेंगे. तो this actually we can try it out.
1: Actually, situation को accept करना पड़ता है. दर्द क्यों create करते हैं? हम accept नहीं करते.
0: I don't want to accept.
1: मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ? मेरे साथ मुझे नहीं. हमें accept करना पड़ेगा कि आत्मा का मेरे साथ इतना ही समय का पाठ था. अब उनका पाठ कहीं और है. और जितना हम उनको अच्छी vibrations भेजेंगे, वो उस पाठ में बहुत अच्छा अपना जीवन अपने परिवार के साथ अपने नए शरीर में अपने नए रोल में बहुत अच्छा बिताएंगे. एंड एज अ फैमिली मेंबर, एज अ पेरेंट, हमारी शुभ भावना हमेशा क्या होगी कि वो बच्चा जहाँ भी है वो वहाँ पर बहुत सेटल.
0: आई थिंक इट्स अ वंडरफुल वे टू लुक एट इट. कोई बात, कोई सवाल मन में है, आप जरूर हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे को हमने अपने साथ लिया है. सिस्टर शिवानी, ये जो प्रोसेस है, ये बिना साइलेंस में बैठे हम नहीं अनुभव भी कर पाएंगे. तो हम चाहेंगे कि अगर आज कुछ शेयर करें.
1: सबसे पहले अपने आप को देखें. इस शरीर का मालिक, इस शरीर को भी चलाने वाली शक्ति, दैट प्योर कॉन्शियंट बीइंग शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं. आई एम अ पीसफुल बीइंग. My peace is my creation. It is not dependent on those who are with me, and it is not dependent on those who have left. I can create it right here in the present moment. And as I create it, it flows out from me. Shanti ke vibrations. मुझ आत्मा से निकल बाहर चारों तरफ फैल रहे हैं और ये उन आत्माओं तक पहुंच रहे हैं जो आज मेरे साथ नहीं है. लेकिन संबंध तो है आत्मा का, आत्मा के साथ संबंध. और ये संबंध स्नेह, शांति और शक्ति का है. I send out vibrations of peace and love to that soul. Om Shanti.
0: Om Shanti. Thank you so much. बहुत कुछ हम अभी तक अपने दर्द के लिए करते आए हैं. आज ये प्रयास भी करके देखें और फिर देखें कि कैसा हम महसूस करते हैं. आपसे अभी विदा लेते हैं. अवेकनिंग में आगे भी बहुत सी बातें होती रहेंगी. ओम शांति.

0: श्रोत्यो, रेडिओ मनभावनच्या कार्यक्रमांबद्दल आपले अभिप्राय देण्यासाठी आम्हाला फोन करा 9284499433 ह्या क्रमांकावर, किंवा व्हॉट्सअप करा 9922337361 ह्या क्रमांकावर.
1: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में बातें मुलाकातें. इस कार्यक्रम में आज के हमारे खास मेहमान संजय जी हैं, जिनसे हम लोग बातें करेंगे, और एजुकेशनिस्ट है. और मुझे अच्छा लगा जब उनसे हमने बातें की कि इस तरह से हम लोग टॉक करेंगे, किस विषय को लेकर बातचीत करेंगे. तो संजय जी का बहुत ही अच्छा एक व्यू था कि उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में जिस तरह से टीचर्स और बच्चों ने जो चैलेंजेस फेस किए हैं, उस विषय को लेकर हम लोग बातचीत कर सकते हैं, और नई चीज़ें क्या कर सकते हैं, इस विषय को लेकर बातें करेंगे. तो आप सभी की तरफ से संजय जी का आज के शो में बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार करते हैं. आपसे जानना चाहूंगा कि आप वर्तमान में कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं, थोड़ा बताइए, अपने लोकेशन के बारे में भी बताइए.
2: सर, फिलहाल मैं सूरत में हूं और 26 साल से मैं सूरत में ही कार्यरत हूं. फिलहाल गणित का टीचर हूं, 11वीं 12वीं के बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं.
1: जी जी.
2: और मैंने 25 साल से मैं इस लाइन में हूँ, और मैंने इस दौरान CBSE के बच्चों को पढ़ाया है, ISC के बच्चों को पढ़ाया है, गुजरात बोर्ड के, स्टेट बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया है. और मेरी ये सफर बहुत ही आनंददायी और बहुत ही रिच रहा है. मैंने काफी कुछ सीखा है पढ़ाने के दौरान. मेरा अनुभव सीखने का ज्यादा रहा है. मेरे ख्याल से मैंने सीखा ज्यादा है इस दौरान. बहुत मजेदार सफर रहा है, काफी कुछ सीखने को मिला.
1: जी जी जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत खुशियाँ आपको. और बच्चों के साथ जितना आप रहते हैं उतना सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं, तो नेचुरली एक अलग माहौल बन जाता है और एक जो है अलौकिक रिश्ता भी बन जाता है बच्चों के साथ में. भले बच्चे कहीं से भी आ जाते हैं, लेकिन जब तक आपके पास रहते हैं तो वो आपके बच्चे बनकर रहते हैं और आप उन्हें अपना समझ के पढ़ाते हैं, तो निश्चित तौर पर एक जुड़ाव बन जाता है. और ये जुड़ाव जो है हमें बहुत जो है सुकून देता है. कोई नौकरी हम लोग करते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ें रहती हैं, बॉसिज्म की बात आती है और ओनर्स वगैरह की बात आती है. यहाँ पर वो चीज़ें नहीं रहती हैं. विद्या में या स्कूल एजुकेशन में वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं. यहाँ पर सिर्फ लेन देन होता है. बच्चों को हम पढ़ाते हैं, बच्चों से हम कुछ सीखते हैं, तो ये एक अलग चीज़ आता है यहाँ पर जो और फील्ड में नहीं है. तो आइए इसी को लेकर हम लोग बातें करेंगे. लेकिन मैं फिर एक छोटा सा गीत जरूर सुनाना चाहूंगा जो बहुत ही प्यारा सा है, और इस गीत को आपको डेडिकेट करता हूं. उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे.

0: नमस्कार, फिर से एक बार संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस गीत के माध्यम से। और हमारे
1: नमस्कार।
0: साथ रोशनी जी भी जुड़ गई हैं। रोशनी जी मणिपुर से हैं और एजुकेशन फील्ड में ही वो भी सेवा देती हैं और साथ ही साथ संगीत के साथ उनका बड़ा लगाव है, म्यूजिक उनका पैशन है। बड़ा अच्छा लगता है जब भी वो आ जाते हैं। तो आइए संजय जी, मैं चाहूँगा कि जैसे कि अभी हम लोग धीरे धीरे लॉकडाउन अनलॉक होते जा रहा है और हम लोग जो है अपने फिर से पहले वाले प्रारूप में आने की कोशिश में लगे हुए हैं और कुछ नियमों का पालन करते हुए, अभी मैं चाहूँगा कि जैसे लॉकडाउन और अभी जो सिचुएशन है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो टीचर्स और बच्चों ने चैलेंज फेस किया है इस दौरान, इस एक साल के दौरान, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप बातें बताइए, अपना अनुभव सुनाइए।
1: रमेश जी, आपने एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न किया है। लॉकडाउन जो है वो पूरे विश्व के लिए एक नई स्थिति थी। इसके लिए हम पहले से तैयार नहीं थे, कोई भी तैयार नहीं था। लॉकडाउन के दौरान जो ऑनलाइन एजुकेशन पर इतना जोर दिया गया और टीचर्स ने, बच्चों ने, पेरेंट्स ने, स्कूल ने एक दूसरे के साथ में मिलकर इस चीज़ को कैसे बेहतर और बेहतर बनाया जाए इस पर जोर दिया। लेकिन स्कूल का जो काम है, स्कूल का जो पर्पस है, वो एकेडमिक से, शिक्षा से बहुत बहुत ऊपर है। वहाँ पर सिर्फ किताबें ज्ञान नहीं है, पढ़ाना ही नहीं है, उसके अलावा भी बच्चे स्कूल में जब जाते हैं तो वो सैकड़ों नई चीज़ें सीखते हैं। ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो आगे जीवन में बहुत काम में आ रही हैं। मैं दो तीन चीज़ बताना चाहूँगा। जब रिसेस में बच्चे खाना खाते हैं तो वो एक दूसरे के साथ में अपना डब्बा शेयर करते हैं। मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स पीरियड और रिसेस जो होता है, लंच टाइम जो है, वो बच्चों का सबसे सबसे मज़ेदार समय होता है स्कूल के दौरान। तो उस दौरान जब बच्चे आपस में हिल मिलकर खाना खाते हैं तो वो ऊंच नीच का भेदभाव नहीं देखते हैं, वो जाति पाति नहीं देखते हैं। आप हम सब एक हैं, हम सब साथ में हैं, मिलकर वो खाना खाते हैं। ऐसे जब वो खेलते हैं तो डिसिप्लिन तो वो सीखते ही हैं, लेकिन डिसिप्लिन अनुशासन के साथ साथ वो एक चीज और सीखते हैं कि हार जीत जो है वो अस्थाई है। आज मैं जीता हूं कल वो जीतेगा, या आज मैं हारा हूं कल वो जीतेगा, और लगातार प्रयास चलता रहना। हमारी टीम कैसे जीते, हम कैसे आगे बढ़े, अपने को कैसे डेवलप करना है, उसके ऊपर वो कहीं रुकता नहीं है, वो निराश नहीं होता है। ऐसे ही कक्षा में जब वो बैठे रहते हैं बच्चे, तो वो ये नहीं देखता कि मेरे बाजू वाला बच्चा हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है, वो दोस्त हैं, वो एक है। ये हमारे भारत का कल्चर रहा है, हमारे भारत की संस्कृति रही है कि स्कूल जो है वो शिक्षा के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें बच्चों को सिखा रहा है जो आगे जाके जीवन में उसको काम में आएगा। जो हर महीना होने वाली कसौटियां हैं, टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, यूनिट टेस्ट हैं, ये जो परीक्षाएं होती हैं समय समय पर, ये बच्चों को आने वाले समय के लिए तैयार करते हैं कि जब वो फील्ड में जाएंगे, जब वो काम करने जाएंगे, तो वहां पर भी उनको इसी तरह से काम दिया जाएगा। जैसे कि कल उनको प्रेजेंटेशन देना है, बैलेंस शीट बनाना है, रिपोर्ट बनाना है, सबमिशन करना है, तो ये सारी चीजों के लिए एक तरीके से स्कूल उनको तैयार कर रहा है। तो स्कूल का जो रोल है वो सिर्फ पढ़ाने तक सीमित नहीं है, इसके बियॉन्ड भी बहुत ज़्यादा है। लॉकडाउन के दौरान मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमने कुछ हद तक पढ़ाई पर जोर दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख पाए, और ये समय 10 महीने का इतना लंबा होने के कारण अब जाके वो बच्चे थक गए हैं, जिसको हम लोग फटिग बोलते हैं। वो मानसिक तौर पर थोड़ा थक गए हैं, वो एक ब्रेक चाहते हैं। वो ब्रेक इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो अपने दोस्तों को मिस कर रहे हैं, वो खेल कूद को मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें लॉकडाउन के दौरान नहीं हो पाई। वो सिर्फ घर के चार दीवारी में बंद हो गए या फिर अपने बिल्डिंग के कैंपस तक ही सीमित रह गए, तो अब धीरे धीरे वो चिड़चिड़े से हो गए हैं, वो थोड़े झगड़ालू हो गए हैं। ये उनका का बेसिक नेचर नहीं है, लेकिन क्योंकि 10 महीने का इतना लंबा समय निकला है, ना वो किसी अपने दोस्तों से मिल पाए हैं, ना बातचीत कर पाए हैं, और जो स्कूल की जो मस्ती है, स्कूल का जो वातावरण है, उसको जो वो मिस कर रहे हैं, उसके कारण ये मैं सोचता हूँ कि ये सारी चीज़ें तो आनी थी। और जब अनलॉक हो रहा है अभी, अब जैसे जैसे बच्चे स्कूल में जाएंगे, तो टीचर्स के लिए ये और बड़ा चैलेंज हो जाएगा स्कूल के लिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी कि बच्चे जब एकदम से बाहर आएंगे और स्कूल पहुंचेंगे तो उनको किस तरीके से हैंडल करने का, क्योंकि जो लॉकडाउन की जो इन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है कि हमको क्या क्या चीज़ों की सावधानी बरतनी है उसका भी उनको ध्यान रखना है। और जो मिलने की खुशी है बचपन में एक दूसरे दोस्तों से जो मिलते हैं उसको भी उनको संभालना है। तो ये चैलेंज था। एक चैलेंज और इंडिया ने, हमारे देश ने जो फेस किया मेरे हिसाब से, हम लोग तो शहर में रहते थे, हमको लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी सफल रहा, लेकिन जब अब शहर से थोड़ा सा बाहर की तरफ जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ नेटवर्क का इशू है, उनके पास में लैपटॉप नहीं है, मोबाइल फ़ोन नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, पूरे घर में दो बच्चे हैं, तीन बड़े लोग हैं, एक मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल है जिसके अंदर टेलीकास्ट हो सकता है, लेकिन पापा अगर काम से गए हैं, खेत पर गए हैं, दुकान पर गए हैं तो वो अपना मोबाइल साथ में लेकर जाएंगे, तो बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा। एक तरीके से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था इस सब चैलेंज के लिए, लेकिन फिर भी इन परिस्थितियों में युद्ध स्तर पर जो हम तैयारी कर सकते थे उतना किया, हर एक ने अपने तरफ से पूरा योगदान दिया है, पेरेंट्स ने भी कोऑपरेट किया है, सेक्रीफाइस किया है, बच्चों ने भी सेक्रीफाइस किया है, कोऑपरेट किया है, और टीचर्स का जो चैलेंजेस था वो सबसे बड़ा था, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स को तो कंप्यूटर चालू करना भी नहीं आता था, और वहाँ से आगे बढ़कर कैसे अपने लेसन को बच्चों तक पहुँचाने का, पढ़ाने का तरीका बदल गया, समझाने का तरीका बदल गया, तो ये बड़ी विषम स्थिति थी जिससे हमारा देश बहुत अच्छी तरह से उभर के बाहर आया है, और अब टीचर्स ने दौड़ना सीख लिया है, तो मेरे ख्याल से हम ये सफर अच्छी तरह से तय कर पाएंगे।
0: संजय जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में आपने शेयरिंग किया, और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं इमीडिएट वाली बात होती है, और बहुत जल्दी उन चीज़ों को करना इतना संभव भी नहीं था, और यहाँ पर टेक्निकल इश्यूज हैं, जैसे आपने बताया कि गाँव के बच्चे हैं तो वहाँ पर डिवाइसेस उनके पास नहीं है, जहाँ पर डिवाइसेस हैं तो वो अपने घर के लिए यूज़ करेंगे पहले, तो बच्चों को तो नहीं देंगे, ये भी एक चीज़ें सामने आई थी, और ऐसी कई चीज़ें हमारे बीच में आती हैं जिसको देखकर हमें लगता है कि निश्चित तौर पे हमें जो है उसके लिए पूरी तैयारियां और भी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी इस दौरान मैं चाहूँगा कि काफ़ी कुछ जैसे चैलेंजेस आते हैं तो हम लोग कुछ सीखते भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि लर्निंग क्या क्या हुआ वो भी तो बताइए।
1: लर्निंग तो मैं कहूँगा कि बहुत बहुत बहुत सीखा, सबने सीखा, पेरेंट्स ने भी सीखा, बच्चों ने भी सीखा, स्कूल ने सीखा है, जो साधन है उसको कैसे हम अवसर में बदल सकते हैं, उसका कैसे पूरा उपयोग कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में एक नियम आया है वो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेस, मतलब जो साधन हमारे पास में उपलब्ध हैं उन साधन को हम किस तरीके से बेहतर और उपयोग में ला सकते हैं, ये हमको सीखा इस दौरान। बच्चों ने सीखा कि कैसे एक टब एक साथ पौन घंटा, एक घंटा, तीन घंटा, चार घंटा क्लासेस के हिसाब से शांत होकर लैपटॉप के सामने बैठना है, उस पर गेम्स नहीं खेलना है। पेरेंट्स को भी, अभी तक पेरेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट था बच्चों की एजुकेशन में वो बहुत कम था, पेरेंट्स का बहुत से पेरेंट्स का ऐसा मानना था कि हमने बच्चों को स्कूल में भेज दिया तो उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, जब बच्चा घर पर पढ़ाई कर रहा है, तो छोटे बच्चों के केस में विशेष तौर पर मैं सोचता हूँ आठवीं तक के बच्चे तो ऐसे थे जिनके पेरेंट्स उनके मम्मी या पापा या दादा या दादी या बड़ा भाई बहन उनके साथ पे बैठा रहता था ये निगरानी रखने के लिए कि वो ढंग से पढ़ाई कर रहे, वो उनके मास्टर नहीं बन रहे थे, वो कोई रिंग मास्टर नहीं बन रहे थे, लेकिन उनकी चिंता थी कि टीचर जो भी प्रयास कर रही है उस प्रयास में वो सफल हो, मेरा बच्चा कहीं पीछे नहीं रह जाए, इन्वॉल्व हो जाए। तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इस दौरान देखने को मिला, ये नई चीज है जो पेरेंट्स ने देखी, और पेरेंट्स को ये भी पता लगा कि मेरे बच्चे में क्या खूबी है और क्या खामी है। उनको ये भी पता लगा कि जो टीचर्स हैं, जो स्कूल है, वो अपनी तरफ से कितना प्रयास करते हैं, एक एक बच्चे को संभाला, एक क्लास में 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं कहीं पर, उन बच्चों को एक साथ बांधे रखना बहुत बहुत मुश्किल कार्य है, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, और वो भी तब जब आप आमने सामने नहीं हैं, एक माध्यम से आप जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप जुड़े हुए हैं। आपको नहीं मालूम कि सामने वाला बच्चा भी सोते हुए पढ़ाई कर रहा है, खाना खा रहा है, घूम रहा है, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी टीचर्स अपने मकसद में लगे हुए हैं। किसी न किसी तरह हम जो समझाना चाहते हैं वो बच्चों तक पहुंच जाए, बच्चे समझ जाए और उनका ग्रोथ हो जाए, ये उनका एकमात्र लक्ष्य था। मैंने टीचर्स को देखा है जिन्होंने, जिनके पास साधन नहीं थे, उन्होंने अपने मोबाइल को हवा में टांग दिया, रस्सी से बांध दिया, लकड़ी से बांध दिया, नीचे वो कॉपी पर नोट्स बना रहे हैं, एक एक बात एक एक बच्चे का नाम लेकर पूछते हैं, बेटा समझ में आया ना, बेटा समझ में आया ना, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो ये काफी चीजें सीखी और बहुत चैलेंजिंग था और इंटरेस्टिंग भी था। इंटरेस्टिंग इसलिए था और संतोषप्रद इसलिए है क्योंकि सबने उस चीज को अपना कॉमन मिशन बना दिया। एक बहुत अच्छी कहावत है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कब ग्रो करता है, वो तब ग्रो करता है जब हम एक लक्ष्य के पीछे लगते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक अपने अपने लक्ष्य के पीछे जा रहा है, ऐसा नहीं, अपनी संस्था का एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य के लिए हर कोई काम कर रहा है, तब जाकर वो संस्था, वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। तो ये भी ऐसा ही एक दौर था जब पूरा देश, पूरा स्कूल, हर बच्चा, हर एक जना जो उसमें इन्वॉल्व था, प्रिंसिपल से लेकर टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स, हर कोई इन्वॉल्व था कि कैसे हम बच्चों को सही तरीके से शिक्षा दे पाए। काफी चीज सीखी लेकिन अच्छा था ये दौर, काफी बढ़िया था, काफी कुछ सीखने को मिला।
0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो 90.4 एफएम। चलिए, संजय जी ने अपनी दिल की बातें हमारे साथ शेयर किया कि चैलेंजेस जो था लॉकडाउन के पीरियड में, तो बहुत सारे चैलेंजेस थे डिवाइसेस, टेक्निकल चीज़ों का, और टीचर्स को भी इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था, तो उनको भी ये चीज़ें सीखने को मिला, और बच्चों को भी ये चीज़ें नहीं पता था कि हमें इस तरह के घर में बैठ कर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो दोनों जगह से लर्निंग्स तो काफ़ी हुए, लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही थे और लर्निंग्स भी उतने ही थे। मुझे लगता है कि हमें सीखने को भी काफ़ी मिला और कुछ चैलेंजेस थे उस सीखने में, वो चैलेंजेस में हमारे सामने आकर हमें जो है कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ें सिखाने की कोशिश की। तो आइए आगे बढ़ते हुए, विक्रांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, तो मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद फिर संजय जी से जुड़ेंगे और एजुकेशन में नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान जो चीज़ें हुई और जो पढ़ाई हुई उसमें बच्चों ने क्या सचमुच पढ़ाई हुई, ये भी बात है। विक्रांत जी सुनाइए।
2: पहले तो मेरा प्रणाम और नमस्कार।
0: नमस्कार,
2: आइए मैं आपके बीच एक गणेश वंदना गाइए, गणपति जग वंदन।

0: सुबह सुबह प्रार्थना सुनने में अच्छा लगता है, भजन सुनने में अच्छा लगता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। संजय जी, फिर से मैं आपको जोड़ना चाहूँगा, जैसे कि अब क्या सचमुच बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हुई या नहीं, ये आप अपने अनुभवों को शेयर कीजिए, अगर हुई है तो किस तरह के हुई है,
1: क्या सीखा, इसको हम दो परिप्रेक्ष्य में देखना चाहेंगे।
0: जी जी जी,
1: बच्चों ने लैपटॉप चलाना सीखा। अभी तक हम बच्चों को लैपटॉप नहीं देते थे, हाथ मत लगा। बच्चों ने उसको स्टार्ट करना सीखा, उस पर लॉगिन करना सीखा, उस पर टाइपिंग करना सीखा, उसमें वॉल्यूम सेट करना सीखा, उसमें म्यूट अनम्यूट करना सीखा, उसमें अपना असाइनमेंट टाइप करना सीखा, जो उनको होमवर्क दिया उसको फोटो लेना, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना, उसको भेजना, ये सीखा बच्चों ने कि अगर टीचर्स नहीं है, सामने से पढ़ा रहे हैं तो भी हमको इसको करना है, ये उन्होंने सीखा। तो सीखना सिर्फ किताबी ज्ञान है ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। दूसरी बात, एजुकेशन सिस्टम उसकी एक तरीका होता है, कोई भी नई चीज जो हम बच्चों को सिखाते हैं वो कम से कम 2 साल और अधिकतम 3 साल तक कवर होती है। मैं एक बात बताता हूँ, जैसे परसेंटेज बच्चों को सिखाना है, परसेंट प्रतिशत कैसे निकालना है, तो प्रतिशत 7वीं में बच्चों को सिखाया और उसी का कुछ एडवांस वर्जन, उसी की कुछ एप्लीकेशन बच्चों ने 8वीं में और सीखी। उन्होंने ज्योमेट्री में अगर ट्रायंगल सीखा है 1 साल, तो अगले साल ट्रायंगल्स और उसके आगे क्वाड्रिलेटरल्स और सर्कल सीखेंगे। इस साल एलजेब्रा सीखा है तो नेक्स्ट ईयर, ऐसा नहीं कि एलजेब्रा 1 साल आया और खत्म हो गया। तो इस साल अगर बच्चे कुछ कम ज्यादा भी सीख पाए तो ऐसा नहीं है कि उनका जीवन या उनकी पढ़ाई व्यर्थ हो गई या आगे वो कोपअप भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो 3 साल तक कम से कम चलता रहेगा और ये टीचर्स भी उस चीज को समझ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो कवर अप हो जाएगा अगर कहीं पर कुछ कमी रह गई है तो। दूसरा एक विषय यह है कि सबसे ज्यादा परेशानी किनको भी, तो हम बच्चों को 3 लेवल में डिवाइड कर देते हैं। एक जो बहुत होशियार है, जो सेल्फ मोटिवेटेड है, खुद ही अपने बेसिस पर कर लेते हैं, एक तो वो बच्चे, एक वो बच्चे हैं जो एवरेज है, जिनके मार्क्स जो है वो मतलब 50 से लेकर 60-65 तक आ रहे हैं, ऐसे बच्चे हैं। और एक वो बच्चे हैं जो बहुत स्लो लर्नर्स है, उनको 2-3 बार ऐसा कराना पड़ता है। सबसे ज्यादा समस्या इन बच्चों के साथ में हुई, जो बच्चे स्लो लर्नर्स हैं। लेकिन भगवान की दया से मैंने जितने भी वीडियो देखे, मैं जिन जिन स्कूल्स में गया है, मैंने जहां पर भी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं, मैंने देखा है टीचर्स ने बहुत धैर्य के साथ में बहुत अच्छे वीडियोस पढ़ाए हैं। उन्होंने जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए, उनकी जो मानसिकता है बच्चों की इस समय, उसको समझ कर उन्होंने पढ़ा है। एक एक चीज को 2-3 बार उसको समझाने की कोशिश करेंगे। फिर भी मेरा ये कहना है कि अगर कुछ कमी रह गई है तो आने वाले दिनों में हम इसको पूरा कर सकते हैं। 365 दिन होते हैं एक साल में, उसमें से स्कूल लगता है 220 दिन, 220 दिन में से 40 दिन परीक्षा के चले जाता है ना, जब हम एग्जाम देते हैं, मतलब 180 दिन हमारे स्कूल में पढ़ाई हो रही है। उन 180 दिन में से 30 दिन किसी न किसी एक्टिविटीज में, प्रोग्राम की तैयारी में, प्रिपरेशन में चले जाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स डे 1 हफ्ता उसमें चला गया, स्कूल का वार्षिक उत्सव है तो उसमें हमारा समय चला जाता है, कभी जन्माष्टमी मना रहे हैं, कभी 26 जनवरी है, 15 अगस्त की तैयारी चल रही है, परेड की तैयारी चल रही है। तो कुल मिलाकर मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि जो कोर टीचिंग पढ़ाने का जो दिन होते हैं वो 150 दिन होते हैं, जो 50% से भी कम है। तो आने वाले दिनों में, अगला साल जो 2021-22 होगा, इसमें अगर हम हमारी वेकेशन को कुछ स्क्वीज कर सकें, हमारा टाइम टेबल जिसको हम एकेडमिक टाइम टेबल बोलते हैं, उसको अगर हम प्रॉपरली डिवाइस कर सकते हैं, प्रॉपर प्लानिंग कर सकें, तो जो कभी इधर रह गई उसको हम पूरा कर सकते हैं। दूसरा, टीचर्स ने क्या सीखा, तो टीचर्स ने ये सीखा कि ऑनलाइन हम कैसे पढ़ा सकते हैं, ऐसी कौन सी भाषा में हमको पढ़ाना है कि बच्चों तक मेरा मैसेज पहुंचे, बच्चों तक वो कंसेप्ट पहुंच जाना चाहिए। बार बार देखो ऑनलाइन एजुकेशन के तीन बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिसको हम बोलते हैं कि इसको ध्यान में रखना चाहिए। उसमें से एक है उनको एंगेज करने का। बच्चे अगर एंगेज नहीं है तो वो भाग जाएंगे। जैसे आपके प्रोग्राम में रमेश जी आपने विक्रांत जी को बुलाया, इन्होंने भजन किया, रोशनी जी थे, उसके पहले आपने गाना सुनाया, तो इस तरीके से एंगेजमेंट बढ़ता है। तो टीचर्स ने भी ऐसा प्रयास किया, बच्चों को बीच में कुछ चुटकुले सुनाए, कुछ क्विज किया, कुछ एनिमेशन दिखाया, कुछ वीडियो दिखाया, कुछ इधर उधर की बातें करी। तो एक पहला होता है एंगेजमेंट, है ना, उनको एंगेज करो अपने प्रोग्राम में, क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं, ये एक सीरियस वर्क है ऐसा। तो अगर बच्चे एंगेज नहीं होंगे, अगर आपसे जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो बच्चे वो भाग जाएंगे वो ऐसा। तो एंगेज करने का दूसरा होता है उनको एंटरटेन करने का, किसी ने किसी तरीके से उनका मूड बनाए रखने का, उनको जागरूक कर रखने का। तो हमको यह कोशिश करनी पड़ती है कुछ हंसी मजाक इधर उधर की बातें करने का ऐसा। वो कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो उनको भेज दिया, GIF भेज दिया, कुछ कार्टून भेज दिया, कुछ यूट्यूब से निकाल कर कुछ हंसी मजाक की बात कर ली। कभी कभी कई प्रश्न जिसको बोलते हैं पहेलियां जो है वो पूछ लेते हैं बच्चे टीचर्स, ताकि बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो एंगेज हो गया, एंटरटेन हो गया, एजुकेट तो आप कर ही रहे हैं, पढ़ा तो रहे हैं, वो तो हमारा मुख्य उद्देश्य है। और तीसरा होता है उसको इवेल्युएट करने का, उसको जांचने का, परखने का कि बच्चे किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है। अब इवेल्युएशन करना मतलब उनको परखना, ये सबसे चैलेंजिंग काम होता है साहब, क्योंकि जैसे ही आपने बोला कि कल मैं टेस्ट लूंगा, तो अगर बच्चे को नहीं आता है तो वो चीटिंग के तौर पर चला जाता है, इधर उधर से देख कर लिखने की कोशिश करता है। गूगल पर बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, उसके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल है। तो मैं तो जैसे मैथ्स का टीचर हूँ, गणित पढ़ाता हूँ, तो मैं तो ये वर्ड ही नहीं यूज करता हूँ कि मैं टेस्ट ले रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ कि कल हमने ये सीखा था, लेट अस रिवाइज इट। तो मैं क्या करता हूँ, कल जो पढ़ा उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन दे दिए बच्चे को, बोला लेट मी सी कि सबसे पहले तीन करने वाले कौन है, ऐसा कि बच्चों ने सही किया है वो मुझे देखना है। मैं टेस्ट ले रहा हूँ लेकिन मैंने टेस्ट वर्ड नहीं यूज किया इस तरह। तो बच्चे एक चैलेंज के तौर पर लेते हैं उसको, उनके बीच में होड़ लगी हुई लेकिन फिर भी उनकी होड़ लगी हुई, वो उसको सॉल्व कर दें। अब मुझे पता लग जाता है कि क्लास में अगर 60-70% बच्चों ने उसको सॉल्व कर लिया, मतलब क्लास का एवरेज आ गया, अब हम इस कंसेप्ट को रिवाइज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो परखना, ये इवेल्युएट करना कि बच्चों ने पूरा समझा है या नहीं समझा, ये सबसे चैलेंजिंग काम है। इसलिए मेरे को लगता है कि अगर आप 1.5 घंटा पढ़ा रहे हो, अगर आपके पास में 40 मिनट का पीरियड है, तो कम से कम 15 मिनट आप पहले जो पढ़ाए, पहले दिन जो पढ़ाया उसको रिवाइज करें, उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछें, ताकि वो इन्वॉल्व महसूस करें। क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है तो बच्चों को ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को आता है इसका आंसर। इजी क्वेश्चन पूछना, इजी क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, उसके दो फायदे हैं। अगर मैंने को लगता है कि बच्चा थोड़ा डल है, तो मैं उससे पर्पसफुली एक इजी आसान क्वेश्चन पूछता हूँ। आसान प्रश्न पूछने से उसको मन में यह तसल्ली रहती है कि मैंने आंसर दिया। उसको नहीं मालूम कि प्रश्न आसान था या मुश्किल था, कठिन था, उसको उसने प्रश्न पूछा गया और उसने उसका जवाब दिया, उसको बहुत अच्छा लगता है, ही फील हैप्पी। दूसरा वो इन्वॉल्व हो जाता है तुरंत कि टीचर मेरे से भी पूछ सकती है, मैं इग्नोर नहीं हूँ क्लास के अंदर, टीचर ने मुझसे पूछा है और टीचर का मेरी तरफ ध्यान है, मेरे को भी ध्यान देना है, हो सकता है अगली बार फिर से टीचर वैसे ही पूछ ले, बाकी बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से हर रोज आपको इवेल्युएट करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, सिलेबस भी खत्म करना है, रिविजन भी करना है, बच्चों को एंगेज भी करना है। तो अगर हम इन तीन चीजों पर ध्यान दें, उनको एंगेज करो, उनको एंटरटेन करो, एडुकेट करो और इवेल्युएट करो, तो मेरे ख्याल से हम ऑनलाइन को ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। अब आपका जो प्रश्न था कि बच्चों ने कितना सीखा था, तो जो कमजोर बच्चे थे उनको सबसे ज्यादा परेशानी हुई है, क्योंकि स्कूल में तो क्या होता है, जैसे आपने छोटे बच्चों को

0: थे स्कूल। लेकिन ये जो एवरेज और बिलो एवरेज वाले जो बच्चे हैं, मैं बिलो एवरेज नहीं बोलता हूँ, मैं वर्ड यूज करता हूँ स्लो लर्नर्स, इनको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, इनको रिविजन की सपोर्ट पड़ती है। तो स्कूल में ये सुविधा थी कि टीचर उन बच्चों को पर्सनल अटेंशन दे सके, उनके पास में जाकर उनको समझा सकते थे। लेकिन ऑनलाइन में ये टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, टीचर की जो जिम्मेदारी है, वो बहुत हद तक पेरेंट्स ने जो है उसको पूरा किया। पेरेंट्स, मैंने मेरे घर में मेरी बेटी जो है वो अभी सेकंड स्टैंडर्ड में है, यही सूरत में पढ़ती है, तो उसकी मम्मी हमेशा उसके साथ में रहती है। तो अगर वो कुछ मिस कर जाती, कुछ नहीं लिख पाती है, तो उसको बोलती, देखो बेटा टीचर ने बोला ना तुम्हारे सवाल आधा रह गया, पहले इसको कंप्लीट कर लो। तो या फिर जब क्लास खत्म हो जाती है, उसको बोलती, देखो 15 मिनट में जो जो क्वेश्चन तुम्हारे बाकी रह गए ना वो कर लो, तो ये सेंटेंस तुम पूरा नहीं लिख पाए, ये पूरा लिख दो, ये स्पेलिंग तुमने गलत लिख दी बेटा, इसको 2 बार लिख लो। तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें बढ़ गया, ये मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि अभी तक पेरेंट्स इस चीज से दूर भाग रहे थे, वो बच्चों की परीक्षा मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे। उनका इंटरेस्ट ये था कि बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेज दो, उसकी फीस समय से जमा करा दो, अगर कोचिंग की जरूरत है तो उसको ट्यूशन टीचर लगवा दो, बस। लेकिन आज के दौर में पिछले 10 महीने में घर का कम से कम एक सदस्य तो अपने बच्चों के साथ में इन्वॉल्व है। इसमें उसने समझा है कि मेरे बच्चे का क्या स्तर है, मेरे बच्चे को 5 विषय में से कौन से विषय में इंटरेस्ट ज्यादा है, उसकी कौन सी रुचि ज्यादा है, वो अपने बच्चे को समझ पाया। और जो होशियार बच्चे थे उन्होंने तो खैर अच्छा किया है, और लर्निंग मेरे ख्याल से थोड़ा हैम्पर तो होता है, थोड़ा असर तो पड़ता ही है, स्कूल में नहीं है ना, ऑनलाइन का है, तो 20-30% तो कमी तो रह गई है। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे आपसे चर्चा करी मैंने, हमारे पास काफी समय रहता है साल के दौरान, तो हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं। नया सत्र जब चालू हो तो पहला 1 महीना हम रिविजन के तौर पर ले सकते हैं कि पिछले साल का जो है हम उसको रिवाइज कर, हाँ स्कूल का क्या हुआ उसको करके हम आगे बढ़ सकते हैं।
1: संजय जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, दोनों तरफा आपने बताया, बच्चों का और माता पिता का इन्वॉल्वमेंट जो है इस समय ज़्यादा हुआ, जो पहले नहीं हुआ करता था, क्योंकि रेगुलर स्कूल जाते थे तो इतना वो भी ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अभी क्योंकि घर से ही बच्चे पढ़ते हैं तो नेचुरली उनको एक जन को किसी न किसी को इन्वॉल्व होना ही पड़ता है उसमें। और मैंने देखा कि बच्चों के साथ साथ माता पिता भी बैठ कर उन्हें गाइड कर रहे हैं, उनके साथ वो भी सुन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये एक प्लस पॉइंट रहा जिसमें हम सभी को अच्छा लग रहा है, और खास करके टीचर्स को भी अच्छा लग रहा है कि बच्चे बच्चों के साथ माता पिता भी जुड़ गए हैं। हाँ, ये रोशनी भी जुड़ गए हैं। रोशनी जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच
1: जी। और आप मणिपुर में बच्चों को एजुकेट करते हैं, आपने क्या इनिशिएटिव नया किया है उसके बारे में बताइए। संजय जी भी यहाँ पर सूरत में बच्चों को पढ़ाते हैं, मैथ्स के टीचर हैं।
2: मैं साइंस पढ़ाती हूँ सर, संजय जी, और मैं बच्चों के लिए इनोवेटिव आइडिया बनाकर टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाती हूँ विदाउट स्पेंडिंग मच मनी, क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ वो ज़्यादातर जो स्टूडेंट आते हैं तो फैमिली बैकग्राउंड बहुत, तो उसके पास इतना पैसे भी नहीं है जो वो सब नोटबुक की या और जो एक्सपेंसेस है वो हैंडल कर पाए।
1: उनके यहाँ नेटवर्क इश्यू है रोशनी जी के पास, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं जो जुड़ पाऊँ, जितना भी जुड़ पाऊँ आपसे। तो वहाँ जो है मणिपुर में जो बच्चे बहुत गरीब हैं उनको पढ़ाते हैं, और उनका देखते हैं कि नोटबुक भी वो खरीद नहीं सकते, तो ऐसे बच्चों के लिए कैसे एजुकेशन देना है ये एक चैलेंजेस था। तो उन्होंने इनिशिएटिव ये लिया कि कुछ रैम्स वगैरह जो है उनके लोकल भाषा में बच्चों को बना के YouTube के माध्यम से सुनाते हैं, कराते हैं। और स्कूल में जैसे कि कुछ डिवाइसेस होते हैं, TV वगैरह होता है, उसके माध्यम से भी बताते हैं, तो इससे बच्चों को जो है डायरेक्टली ऑडियो विजुअल मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूँगा कि एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे। ऑनलाइन लर्निंग का बेनिफिट कितना है, और जो हम लोग सन्मुख बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें क्या अंतर आता है, थोड़ा सा ये डिफरेंस बताइए।
0: ऑनलाइन लर्निंग के कुछ अच्छे फायदे भी हैं, उसके कुछ फायदे ये हैं कि बच्चे अपनी सुविधा के अनुसार उस चीज को कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर मटेरियल

0: मटेरियल ऑनलाइन होते हुए भी रिकॉर्डेड है, वो उसके पास में अवेलेबल है। अब अगर मैं एक स्लो लर्नर हूँ, मैंने एक बार क्लास अटेंड करी, मेरे को वो नहीं समझ में आया, तो मेरे पास ये सुविधा है ऑनलाइन में कि मैं टीचर से उसकी रिकॉर्डिंग ले लूँ और उसको वापस रिवाइंड करके दो बार तीन बार जब तक मुझे नहीं समझ में आया मैं उसको समझ लूँ। ऐसा सुबह नहीं तो शाम को, सुबह अगर मैं बिजी हो गया तो शाम को कर लिया, शाम को मैं व्यस्त हो तो अगले दिन कर लिया। ये एक सुविधा ऑनलाइन कंटेंट में है ऐसा। दूसरा, उसमें हम ऑनलाइन में उसके साथ में कुछ एनिमेशन वगैरह ऐड कर सकते। टीचर ने एक जगह एक्सपेरिमेंट कर ली, 20 बच्चे ने उनको घेर लिया, तो बात बाहर के जो बच्चे उनको तो कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसा। लेकिन ऑनलाइन में सामने कैमरा लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, टीचर एक्सपेरिमेंट कर रही है, हर एक बच्चा उसको ध्यान से देख, उसको ऐसा लगेगा जैसे उसके प्रत्यक्ष उसके बिल्कुल सामने ही एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये इसके कुछ बेनिफिट है। लेकिन जो हम आमने सामने होते हैं, जब हम एक्चुअल क्लासरूम में स्कूल के अंदर जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों के हाव भाव देखने से टीचर को पता लग जाता है कि इसको समझ में आया है, इसको नहीं समझ में आया है, इसको अभी कुछ कंफ्यूजन है। तो ये एक प्रभाव पड़ता है कि जब हम सम्मुख रहकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे हमारे सामने है, तो टीचर को उनको देखकर उनको पता लग गया कि हाँ ये हमारा काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, मैं जो मैसेज जो चीज समझाना चाहती हूँ वो बच्चों तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। लेकिन ऑनलाइन में ये एक डिफिकल्टी है। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में हमको एक कंसेप्ट है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग मतलब हमको दोनों चीज को मिक्स करके पढ़ाना है। कुछ चीज ऐसी है जो ऑनलाइन बच्चों को हमको पढ़ाना है, और कुछ चीज ऐसी है जो बच्चों को सम्मुख रखकर हमको पढ़ाना है। कोई भी लेसन क्यों नहीं हो, हम बच्चों को उसको पहले भेजें, बच्चे घर पर उस वीडियो को देख लें, उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को देख लें, यूट्यूब पर वो वीडियो है तो उसको देख लें, अगर लाइव लेक्चर है तो उसका रिकॉर्डिंग देख लें। उसके बाद में जब वो स्कूल में आते हैं तो वो ऑलरेडी एक लेवल तक तैयार है। जैसे मैं कल क्या पढ़ाने वाला हूँ, अगर मैंने आज बच्चों को बताया कि कल मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे और ये वीडियो की लिंक मैं उनको भेज देता हूँ, तो बच्चे क्या करेंगे, उस वीडियो को लिंक देख कर अगले दिन आते हैं। जब वो अगले दिन क्लास में आते हैं तो उनकी समझ काफी डेवलप हो जाती है और क्लास में उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। वो तैयार होकर आते हैं कि हाँ मुझे क्या प्रश्न पूछना है टीचर से। तो आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को मिक्स करके ही हम आगे बढ़ पाएंगे। इतना जो हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े हैं, अब हम सोचें कि 10 महीने के बाद टीचर्स को और बच्चों को बोला अब इसको भूल जाओ, अब तो आप स्कूल में आकर ही पढ़ लीजिए, तो गलत बात है। ये तो ऐसे ही हो गया था, है साइकिल से जाता था स्कूल, अब मैंने बाइक चलाना सीख लिया है तो तब भी आप बोले कि नहीं सर आप बाइक रख दो, आपको तो स्कूल तो साइकिल सीखना है, ऐसे नहीं चले। ये तो जब हमने नई चीज सीखी है और वो बेहतर है, बेहतर है मतलब हम दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो इनको आगे साथ में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी भी मैं सोचूं कि मैं टीवी नहीं देखूं, मैं अभी सिर्फ रेडियो के माध्यम से ही चलूं तो वो नहीं चलेगा। सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखूं, मेरे को कलर टीवी एचडी टीवी नहीं यूज करना है तो दैट विल नॉट। टेक्नोलॉजी को हमको साथ में लेकर चलना है। टेक्नोलॉजी ने हमारा काम बेहतर बनाया है, आसान बनाया है, लेकिन टेक्नोलॉजी भी सब कुछ ऐसा नहीं है ऐसा। टीचर्स का उसमें बहुत बड़ा रोल है, स्कूल का बहुत बड़ा रोल है। और इस संवाद के शुरुआत में हमने डिस्कस किया था, इस पर चर्चा करी थी कि स्कूल में बच्चा सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसके अलावा भी जीवन उपयोगी बहुत सारी चीजें हैं जो वो सीख रहा है
1: ऐसा, सही बात।
0: तो अगर वो सिर्फ ऑनलाइन रहेगा तो ये बहुत सारी कमी उसमें रह जाएगी, वो कभी भी दूसरे बच्चों के साथ में सामंजस्य स्थापित करके आगे बढ़ना ये नहीं सीखेगा। टॉलरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, सोशल टॉलरेंस होता है, रिलीजियस टॉलरेंस होता है, इमोशनल टॉलरेंस होता है, ये वो कैसे सीखेगा। आज मेरे बाजू वाले बच्चे को छींक आ गई तो मैं स्कूल में हूं तो समझता हूँ कि हाँ ये ठीक है, अभी मैं अकेला रहता हूँ कोई छींकेगा मैं अरे आई विल रिएक्ट लाइक दिस, ये क्या है। मेरे साथ में आकर कोई अगर दूसरे धर्म का बच्चा बैठ जाएगा तो मुझे अजीब सा लगेगा, लेकिन स्कूल में जाता हूँ मेरे को सिखाते कि वो भी इंसान है, उसका भी एक मजहब है, उसको भी हमको पालन करना, उसका भी रिस्पेक्ट करना, उसका भी आदर करना, क्यों? क्योंकि स्कूल में हम लोग सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं अपना रहे, हम वहां जन्माष्टमी मनाते हैं तो ईद की भी छुट्टी है, वहां पर क्रिसमस का भी सेलिब्रेशन है, नए साल का भी सेलिब्रेशन है, सब है। हम नवरोज की भी छुट्टी हो रही है, वहां पर गुड़ी पड़वा भी मना रहे हैं, जन्माष्ट भी मना रहे हैं, तो सब चीज सीख रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि बच्चों को सिर्फ एक ही चीज के बारे में बता रहे हैं, तो पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें जो है वो ऑफलाइन जब हम स्कूल में जाएंगे बच्चे हमारे सम्मुख रहेंगे तो हम सीखेंगे। लेकिन मेरा ये निवेदन है कि टीचर्स ने और बच्चों ने इतना लंबा सफर हमने तय किया है तो इसको जाया नहीं करें, इस लर्निंग को ये जो हमने सीखा है इसको साथ में लेकर और बेहतर तरीके से हम कैसे उपयोग कर सकते हैं ये करना चाहिए। अच्छा आप सोचो, एक मैं क्लास ले रहा हूँ, स्कूल जाकर बच्चे आ रहे हैं, 20 बच्चे में से 3 बच्चे आज एबसेंट है। अब अगले दिन वो स्कूल में आते हैं तो देयर मिस्ड इट, उनको नहीं समझ में आता। लेकिन अगर मैं उस लेक्चर को रिकॉर्ड कर लेता हूँ, शाम को बच्चों के साथ शेयर कर लेता हूँ कि आज मैंने क्लास ये पढ़ाया था, कल आने के पहले ये वीडियो देख कर आना, तो वो 3 बच्चे जब अगले दिन क्लास में आते हैं तो दे आर एट पार, वो बाकी बच्चों के समकक्ष हो गए। नहीं तो अगले दिन आपको को समझ में नहीं आता कि क्या किया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों चीजों को मिक्स करके आगे चल रहा हूँ ना, तो है हमको ब्लेंडिंग करके आगे बढ़ना पड़ेगा, किसी भी एक चीज पर पूरी तरह से निर्भर होकर नहीं चल सकते, ऐसा मेरा मंतव्य है।
1: जी संजय जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि टेक्नोलॉजी के साथ लेके चलना है वर्तमान समय को देखते हुए। अगर लॉकडाउन अनलॉक हो जाता है, बच्चे स्कूल में आना शुरू कर देते हैं, तो अगर हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई जो चल रहा है उसको थोड़ा सा कम जरूर करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह से खत्म होगा, ऐसा नहीं होगा, और दोनों चीज़ें साथ साथ चलेगी। तो निश्चित तौर पे जो बच्चे किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए तो उनके लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा, असेट रहेगा। तो आइए इसी बीच एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
2: तो आइए एक भजन आप लोगों के बीच, गुरु पर, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं।
3: गुरु बिन ज्ञान कहाँ

0: गुरु ना होवे तो का कर पाओ, गुरु ना होवे तो का कर पाओ, गुरु बिन ज्ञान खाते लाऊं।
1: कहना है
0: गुरु मेरा ईश्वर, गुरु परमेश्वर, गुरु मेरा माता भाग्य विधाता है, गुरु मेरा राखा, गुरु मेरा शाखा, गुरु मेरा भाग्य विधाता है, गुरु के चरण शीश झुकाऊं, गुरु बिन ज्ञान का से

विष्णु और महेश्वर गुरु में सबका वास है। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर गुरु में सबका वास है। गुरु की कृपा जिस पर होती उसका बेड़ा पार है। गुरु की महिमा से दिन गाओ, गुरु की महिमा से दिन गाओ, गुरु बिन ज्ञान से ना।

0: चलिए, बहुत ही अच्छा लगा विक्रांत जी, बहुत ही प्यारा सा गीत, और समय और विषय को देखकर आपने इस गाने को सुनाया तो अच्छा लगा हमें। तो आइए आगे बढ़ते हुए, आखिरी प्रश्न है हमारा संजय जी, जैसे कि हम लोग एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों को हमने बलिबाती समझने की कोशिश की, और इस लॉकडाउन के चैलेंजेस और लॉकडाउन के बाद क्या चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में भी जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। अब मैं एक और सवाल, ये लास्ट सवाल ये है कि जो बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, मतलब लर्निंग डिसेबल है थोड़ा सा, उनको जल्दी से समझ में कोई चीज़ नहीं आता, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग उसके बारे में बताइए।
1: बहुत बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि जो बच्चे एलडी बच्चे हैं, लर्निंग डिसेबल, मेरे अनुभव में मैं उन बच्चों के लिए वर्ड यूज करता हूँ स्लो लर्नर्स। स्लो लर्नर्स इसलिए हैं क्योंकि कुछ बच्चों को एक बार सुनने से, एक बार समझाने से वो समझ जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको दो बार समझाना पड़ता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको तीन बार या चार बार आपको समझाना पड़ता है। अब जो बच्चे तीन बार या चार बार या पांच बार समझाने पर समझते हैं, वो बच्चे कक्षा में बाकी बच्चों से पीछे रह जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि दसवीं का भी अगर कोई बच्चा है तो 30 घंटे अगर हम उसको शिद्दत से पढ़ा दें, नया नहीं, जो उसने पहली से लेकर नवीं दसवीं तक जो सीखा है, 30 घंटे में हम उसको बाकी बच्चों के साथ में ला सकते हैं, और ये संभव है। मैंने पिछले 25 साल का मेरा टीचिंग लाइन का अनुभव है, मैं करीब 12 साल से इस चीज पर काम कर रहा हूँ, और मैंने देखा है कि जो हम बच्चों को एलडी के टैग से लेबल कर देते हैं, लेकिन स्लो लर्नर्स, और उनको ये समझाओ कि बच्चे आपकी प्रवृत्ति एक बार में नहीं समझने की है, लेकिन दो बार में समझ में आ जाएगा, तीन बार में समझ में आ जाएगा। तो अगर हम ये करें तो कोई सा बच्चा हो, वो दिमाग से, मतलब वो बुद्धू नहीं है, दिमाग पैदल नहीं है, वो उसको हम समझा सकते हैं, उसको बाकी बच्चों के पास ला सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम जो बच्चे गणित में और लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में जो वीक रह जाते हैं, कमजोर रह जाते हैं, हम उन बच्चों को कमजोर है ऐसा लेबल कर देते हैं। लेकिन यही बच्चे जब मातृभाषा में, उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है या हिंदी में है, उस भाषा में जब हम उनको समझाते हैं, उस प्रश्न को समझाते हैं या उस पढ़ाई को कराते हैं, तो बच्चे बहुत तेजी से उस चीज को सीखते हैं और आगे कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमको इस चीज को थोड़ा, हमारा नजरिया बदलना पड़ेगा कि मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा मैथ्स में वीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज करो मेरा बच्चा नवी में है और उसको गणित समझ में ही नहीं आ रहा, उसको इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि नवी का जो गणित है, वो जो विषय है, उसके जो सिद्धांत है, वो पांचवी छठी सातवीं आठवीं में जो उसने पढ़ा उसके ऊपर आधारित है। तो अगर वहां पर कोई कमजोरी रह गई तो वो नवी में उसको नहीं समझ में आएगा। अब टीचर्स को, पेरेंट्स को वहां पर ध्यान देने का है, 30 घंटे का समय निकालो, वो जो कक्षा में गणित 10 कटो सा, वो अगर तीसरी कक्षा में है तो 30 घंटे उसको लगेंगे, चौथी कक्षा में गणित 30 घंटे, 30 आवर्स का मैंने ऐसे देखा है कि 30 आवर्स अगर हम बच्चों के लिए निकालें तो वो निश्चित तौर पर बाकी बच्चों के पैदल हो जाएगा, उससे बेहतर भी निकल सकता है। मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा है जो गणित से एकदम दूर भागते थे, मैं गणित की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा विषय रहा है ऐसा, तो वो बच्चे जो बिल्कुल दूर भागते थे, नहीं सर मेरे को तो करना ही नहीं है, कई बच्चे ऐसे बोलते हैं सर पहला मौका मिला तो मैं गणित छोड़ दूंगा। अगर गवर्नमेंट हमको ऑप्शन क्यों नहीं देती कि हम गणित ड्रॉप कर रहे हैं, किसने गणित बनाया ऐसा प्रश्न पूछते हैं, किसके दिमाग में आया कि ये चैप्टर्स इंक्लूड करना चाहिए, ऐसे प्रश्न करते। तो बच्चा मुझे इनडायरेक्टली ये बोलना चाहता है कि आप जो ये पढ़ा रहे ना, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, या तो इसको मैं जिस भाषा में समझ सकता हूँ, मैं जिस तरीके से समझ सकता हूँ उस तरीके से समझाओ, तो मैं इतना कुछ करूंगा, नहीं तो मेरे लिए बेकार है। जैसे अभी विक्रांत जी ने भजन गाया है ना। अब अगर मेरे को संगीत की बिल्कुल भी समझ नहीं होगी, मेरे को यह भाषा ही नहीं आएगी विक्रांत जी, मेरे को अगर हिंदी समझ भी नहीं आएगी तो मैं इसको उसका लुफ्त नहीं उठा पाऊंगा, उसका आनंद नहीं उठा पाऊंगा, उसको समझ ही नहीं पाऊंगा। तो मैं आपसे क्या निवेदन करूंगा कि विक्रांत जी इसको उस भाषा में समझाओ जो भाषा में मैं समझ पा रहा हूँ। ऐसा मैं मेरे एक सर की बात बताता हूँ, वो हमको पढ़ा रहे थे, हमको स्लोप बता रहे थे कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, लाइन कितना इंक्लाइंड है। बच्चे ने पूछा तो सर ने बोला कि स्लोप मतलब ग्रेडियंट। अब बच्चे को स्लोप समझ में नहीं आ रहा तो ग्रेडियंट वर्ड और उससे डिफिकल्ट वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है, वो कैसे समझ में आएगी। ये ऐसा हो तो बच्चा जिस भाषा में उसको समझ पा रहा है उसमें समझाने का। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है, जो नई एजुकेशन NEP 2020 लॉन्च किया है, उसमें इस बात पर भी जोर है कि हम जो लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में उनको गणित और विज्ञान पढ़ाएं, सोशल सामाजिक विज्ञान भी उसमें पढ़ाएं, जिससे बच्चों की समझ बढ़ेगी। आपको कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, 12वीं तक एक बच्चे ने गुजराती मीडियम में पढ़ाई करी, ठीक है, वो क्लास का टॉपर था, उसने बायोलॉजी उसका विषय था, उसने बहुत अच्छे मार्क्स आए, एग्जाम देकर वो मेडिकल कॉलेज में चला गया, ठीक है। उसने पढ़ाई किसमें करी है, गुजराती मीडियम। जब वो मेडिकल में जाता है पूरी पढ़ाई कौन सी भाषा में, इंग्लिश। वहां पर जाकर जो बच्चा अपने कॉलेज में अपने स्कूल में टॉप रहा है, जिसने बोर्ड में इतना अच्छा परफॉर्म किया है, जिसने नीट के एग्जाम में इतना अच्छा परफॉर्म किया, तब तो जाकर उसका मेडिकल में एडमिशन हुआ। वहां पर जाकर बच्चे को वो टेक्निकल वर्ड समझ में नहीं आते। और ऐसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो वहां पर जाकर उनको एक एक दो दो विषय में वो फेल हो जाते हैं। जब वो फेल हो जाते हैं तो वो मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं और अधिकतर बच्चे एक साल के बाद में पढ़ाई छोड़ देते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया है, फर्स्ट ईयर में ऐसे बच्चों के लिए इंग्लिश एक विषय उसमें ऐड किया है, लेकिन वो विषय भी उनको जो 12 साल का है उसको मेकअप नहीं कर सकता। तो मेरा तो गवर्नमेंट से ये गुजारिश रहेगी, ये रिकमेंडेशन रहेगा कि हम अगर बच्चों को 12वीं तक हमने गुजराती में पढ़ाया है या मराठी में पढ़ाया है तो आगे की जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसको भी आप उसमें करिए ताकि बच्चे को उसका बेनिफिट मिले। आज मराठी का एक बच्चा है, वो कॉमर्स में उसने बहुत अच्छा किया, वो CA बनना चाहता है, लेकिन जब उसके पास में CA की बुक्स आती है, जब उसके नोट्स आते हैं, स्टडी मटीरियल आता है, तो वो देखता है पूरा मटीरियल तो दो ही लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी। अब उसने तो हिंदी में लिखना पढ़ना भी नहीं सीखा। अब आप बताइए वो बच्चा जो टॉपर है वो CA बनना चाहता है, वो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना चाहता है, CS करना चाहता है, लेकिन आगे जाके क्या देखता है, आगे की पढ़ाई हायर एजुकेशन तो पूरा का पूरा अंग्रेजी में, वो कैसे सर्वाइव करेगा बताइए। वहां जाकर वो जो टॉपर है वो भी वीडियो का एवरेज बच्चा हो जाता है, लो परफॉर्मर हो जाता है। ये कुछ चीजें हैं जिस पर हमको ध्यान देना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है। ऐसा अगर आपके माध्यम से ये चीज हम लोग गवर्नमेंट तक या अथॉरिटीज तक पहुंचा सकते हैं, हायर एजुकेशन को भी इसमें सम्मिलित करें, और जो ये जो विषय है गणित का है और विज्ञान का विषय है, अगर हम इनको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाएं तो आगे जाके बच्चों का बहुत उद्धार होगा, बहुत आसानी होगी।
0: संजय जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोगों को जो LD वाले बच्चे हैं यानी स्लो पढ़ते हैं, जो बच्चे स्पीड नहीं उनका रहता है, उन बच्चों को भी आपने कहा कि एक बहुत ही अच्छा 30 घंटे का जो है अगर उनको टाइम मिल जाता है तो निश्चित तौर पे वो बच्चे भी नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ाई कर सकते हैं और उनको भी उनको जोड़ सकते हैं। तो कई बार हम लोग कुछ एफर्ट नहीं लेते हैं तो इस वजह से भी वो बच्चे छूट जाते हैं। थोड़ा सा हमें जो है स्कूल मैनेजमेंट हो या सरकार हो या टीचर्स हो थोड़ा सा इस पे और आगे काम करे तो निश्चित तौर पे उन बच्चों को हम लोग सभी को साथ लेके चल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और आपने कहा कि इस माध्यम से अगर ये संदेश सब तक पहुंच जाए और वो इसके लिए कुछ काम करे तो और अच्छा है। तो मैं भी चाहूँगा कि आप अगर देख रहे हैं, अगर आप अथॉरिटी हैं, तो निश्चित तौर पे संजय जी ने जो बात बताई उसके ऊपर थोड़ा सा एक बार फिर से रीथिंक करें, विचार मंथन करें और फिर इन चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित तौर पे हम जो पीछे स्लो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको स्पीड अप कर सकते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ सकते हैं। तो संजय जी थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया। एजुकेशन फील्ड में काफ़ी समय से आप हैं तो आपके पास पूरा अनुभव है, और गणित के आप शिक्षक हैं तो बच्चों को गणित पढ़ाते हैं, और गणित को पढ़ाने के लिए आपने काफ़ी कुछ मशक्कत की है, और बच्चों को आप जो है जो नहीं पढ़ना चाहते उनको भी आप जो है अच्छी तरह से समझा सकते हैं। और एक तरीका अच्छा लगा कि बच्चों को डायरेक्टली पढ़ाई पढ़ाने के बजाय उनसे बातें करके फिर अगर पढ़ाना शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पे बच्चों का एक कनेक्शन बन जाता है। कई बार हम लोग तुरंत आ जाते हैं और लेसन शुरू कर देते हैं तो वो थोड़ा सा मोनोटोनस लगता है, कहीं ना कहीं लगता है कि सर पढ़ा के जाने वाले हैं और हमको सिर्फ सुन के जाना है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं, वहाँ जुड़ाव नहीं होता है। तो जैसे कहते हैं कि अगर वहाँ पास टेक्नोलॉजी में और हम लोग सब तीन लोग यहाँ पर हैं तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं वायरिंग जुड़ा हुआ है, हाँ जो दिख नहीं रहा है लेकिन जुड़ा हुआ है, चाहे एयर से हो चाहे फिजिकली हो, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तब हम लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को भी कनेक्ट करके फिर उनकी अपनी भाषा करके उनके साथ थोड़ी हंसी मजाक करके फिर आप पढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर बच्चों को भी अच्छा लगेगा और वो आपको सुनेंगे भी और समझने की कोशिश भी करेंगे, खुल जाएंगे बच्चे और आपके साथ रैपो बनेगा। तो उनके पास जो भी उनको लगता है कि ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो आपसे वो खुल के पूछेंगे तो सही। अभी क्या हो रहा है कि आप पढ़ा के चले जाते हैं तो जो नहीं समझ में आया तो पूछने में भी डर लगता है उनको, तो ये चीज़ें भी ना हो। तो बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू संजय जी, बहुत सारी बातें आपने की, फिर वापस मिलते हैं हम लोग कुछ नई बातें लेकर। थैंक यू सो मच संजय
1: जी, आपका और मधुबन रेडियो का बहुत बहुत आभार, विक्रांत जी का आभार, बहुत अच्छे दो भजन सुनाए उन्होंने, थैंक यू वेरी मच। रमेश जी आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया मधुबन रेडियो का कि उन्होंने मौका दिया।
0: जी जी, नमस्कार मित्रों, आज के इस लाइव सेशन में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपने काफ़ी कुछ समझा होगा, सीखा होगा, जो कुछ अच्छी बातें आपको लगी हो उससे दूसरों तक जरूर पहुँचाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर एक बार सलाम नमस्ते, खमा गनीसा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, जय हिंद जय भारत, ओम शांति।
2: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका, रेडिओ मनभावन 90.8 FM, always heard to you.

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि वीके कृष्ण मेनन का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 3 मई। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, शिवाजी नगर भोपाल से जयप्रकाश दुबे और उज्जैन से संजीव जैन। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

चंपारण भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास से जुड़ी वो भूमि जहां सत्य ने पहली बार अन्यायी सत्ता की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारा था, जहां से नील की खेती करने पर मजबूर शोषित किसानों की मुक्ति का महामंत्र गूंजा और पूरे देश में छा गया। चंपारण यदि गांधी जी को महात्मा बनाने वाली प्रयोगशाला थी, तो उस प्रयोगशाला में प्रज्वलित सबसे प्रकाशवान दीपक थे राजकुमार शुक्ल। उन्हें चंपारण आंदोलन का वास्तविक शिल्पकार माना जाता है। राजकुमार शुक्ल का जन्म 23 अगस्त सन 1875 को चंपारण जिले के सतवरिया गांव में हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार था जिसकी अपने क्षेत्र में बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनके पिता का नाम कोलाहल शुक्ल था, जो मूलतः सीवान जिले के निवासी थे, लेकिन बाद में वो सतवरिया आकर बस गए थे, जहां उन्होंने काफी भूमि अर्जित की। इसी समृद्ध परिवार में राजकुमार शुक्ल का पालन पोषण हुआ। इस तरह वो एक समृद्ध और प्रभावशाली किसान थे, जिनकी आर्थिक स्थिति उस समय के औसत किसान से बहुत बेहतर थी। उनका विवाह केवला देवी से हुआ था। उनके पारिवारिक जीवन में उनकी पत्नी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि पंडित राजकुमार शुक्ल को एक सत्याग्रही के रूप में विकसित करने और संघर्षों में साथ देने में केवला देवी का महत्वपूर्ण योगदान था। उनके परिवार में दो पुत्रियां थीं, जिन्होंने उनके संघर्षपूर्ण जीवन को बहुत करीब से देखा था। राजकुमार शुक्ल ने अपनी युवावस्था में बेतिया राज में एक मुहर्रिर यानी मुंशी के रूप में भी कार्य किया था, जहां उन्हें प्रशासनिक और विधिक प्रक्रियाओं का आरंभिक ज्ञान प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह कृषि तथा सामाजिक कार्यों में संलग्न हो गए। ये वो समय था जब अंग्रेजों ने किसानों पर अत्याचार की एक अलग ही कहानी लिखी। अपनी ही कृषि भूमि पर किसानों के लिए अलग नियम कानून और प्रतिबंध लागू हुए, जिसने किसानों की दुर्दशा कर रखी थी।

19वीं शताब्दी के मध्य से ही यूरोपीय बागान मालिकों ने चंपारण में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी थीं और ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में उन्होंने किसानों पर अत्याचार का एक संगठित ढांचा तैयार कर लिया था। उन्होंने तिनकठिया खेती की प्रणाली लागू की थी। ये एक दमनकारी भू राजस्व व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी भूमि के प्रत्येक बीघा यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा भूमि पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी। ये प्रणाली बेहद शोषणकारी थी क्योंकि किसानों को नील की फसल के लिए जो मूल्य दिया जाता था वो उनकी लागत से भी कम होता था। बागान मालिक स्वयं ही मूल्य निर्धारित करते थे। नील की खेती से भूमि की उर्वरता का भी ह्रास होता था क्योंकि नील की जड़ें गहरी होती थीं जो भूमि की उर्वरता को नष्ट कर देती थीं, जिससे उस भूमि पर बाद में अनाज उगाना कठिन हो जाता था। इसके साथ ही 40 प्रकार के अवैध कर भी किसानों पर लगाए गए थे। राजकुमार शुक्ल स्वयं बेलवा कोठी के अंतर्गत एक रैयत थे, इसलिए इन प्रताड़नाओं का उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव था। अंग्रेजों के इस शोषण और अत्याचार ने उन्हें भीतर तक आंदोलित कर रखा था। उनकी संघर्ष यात्रा इन्हीं अत्याचारों के प्रतिरोध से आरंभ हुई। उनका प्रतिरोध सन 1907-8 के आसपास स्पष्ट रूप से उभरने लगा था। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था और भारत की धरती पर यह उनका पहला आंदोलन था, लेकिन चंपारण में गांधी जी के आगमन से लगभग एक दशक पहले भी किसानों ने सामूहिक विद्रोह किए थे, जिसमें शेख गुलाब और शीतल राय जैसे नेताओं की अगुवाई में बागान मालिकों के गुंडों और कारिंदों को कड़ी चुनौती दी गई थी। राजकुमार शुक्ल ने इस दौरान स्थानीय पंचायतों को संगठित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। वो चाहते थे कि किसान अपने विवादों को निलहे साहबों की अदालत के बजाय अपनी पंचायतों में सुलझाएं। राजकुमार शुक्ल की ये पहल ब्रिटिश सत्ता और बागान मालिकों के लिए एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि इससे उनके न्यायिक और प्रशासनिक एकाधिकार को खतरा पैदा हो गया था। वो बागान मालिकों के लिए एक बड़ा अवरोध बन गए थे। परिणाम स्वरूप उन्हें व्यक्तिगत क्षति पहुंचाई गई, उनकी फसलों को नष्ट कर दिया गया, उनके घर को आग लगा दी गई, उनका पशुधन भी छीन लिया गया, उन पर दर्जनों झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। बेलवा कोठी के बागान मालिकों ने उन पर चोरी, मारपीट और दंगे के आरोप लगाए। सन 1914 में एक बागान मालिक के साथ हुए विवाद के कारण उन्हें कुछ हफ्तों के लिए जेल में भी डाला गया, लेकिन राजकुमार शुक्ल का प्रतिरोध लगातार जारी रहा। ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, उनका संकल्प अडिग रहा। अपमानजनक स्थिति और आर्थिक नुकसान के बावजूद वो अंग्रेजों को चुनौती देते रहे, लेकिन अब उन्हें लगने लगा था कि चंपारण की जो समस्या है वो केवल स्थानीय स्तर पर प्रतिरोध करके सुलझाई नहीं जा सकती है, इसके लिए एक राष्ट्रीय नेतृत्व की आवश्यकता है और उनकी दृष्टि में इस समस्या को केवल गांधी जी ही सुलझा सकते थे।

राजकुमार शुक्ल के इस संघर्ष में उनके साथ जुड़े पीर मोहम्मद मुनीश। वो एक पत्रकार थे और कानपुर से निकलने वाले समाचार पत्र प्रताप में वो चंपारण के किसानों पर होने वाले अत्याचारों की खबरें लिखते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में निकलने वाला ये पत्र किसानों की पीड़ा का दर्पण बन गया। पीर मोहम्मद मुनीश के साथ मिलकर राजकुमार शुक्ल ने इस संदर्भ में गांधी जी और कई राष्ट्रीय नेताओं को पत्र भी भेजे थे। दोनों की जोड़ी ने ही मिलकर वो वैचारिक धरातल तैयार किया जिस पर बाद में चंपारण सत्याग्रह खड़ा हुआ। दिसंबर सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, अंबिका चरण मजुमदार जैसे अनेक नेताओं से राजकुमार शुक्ल खुद मिले, लेकिन सभी ने उनसे कहा कि वो स्थानीय स्तर पर इस समस्या को सुलझाएं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब गांधी जी से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने गांधी जी से प्रार्थना की कि आपको चंपारण चलना होगा, वहां किसान मर रहे हैं। हालांकि अधिवेशन में उनके प्रयासों से चंपारण में किसानों की दुर्दशा पर एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया था, लेकिन राजकुमार शुक्ल इससे संतुष्ट नहीं थे। वो चंपारण में गांधी जी की उपस्थिति चाह रहे थे, जैसे नियति भविष्य लिख रही थी। अधिवेशन के बाद गांधी जी ने चंपारण जाने में अपनी असमर्थता जताई और राजकुमार शुक्ल साये की तरह उनके पीछे हो लिए। गांधी जी कानपुर गए, शुक्ल जी वहां भी पहुंच गए। गांधी जी साबरमती आश्रम लौट आए तो वो आश्रम में डेरा डालकर बैठ गए। गांधी जी कलकत्ता पहुंचे तो वो पहले से ही वहां मौजूद थे। गांधी जी ने बाद में लिखा भी कि इस अनपढ़ किंतु संकल्पवान किसान ने मुझे जीत लिया। अंततः 9 अप्रैल सन 1917 को वो राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण के लिए रवाना हुए और 10 अप्रैल को दोनों पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचे। दोनों की साधारण वेशभूषा देखकर नौकरों ने उन्हें अछूत समझ लिया तथा कुएं से पानी तक लेने से रोक दिया। यही वो बिंदु था जब गांधी जी ने महसूस किया कि भारत की लड़ाई केवल अंग्रेजों से नहीं, सामाजिक कुरीतियों से भी है। इसके बाद गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां जेवी कृपलानी और छात्रों ने उनका स्वागत किया। 15 अप्रैल सन 1917 को वो मोतिहारी पहुंचे, जो पूर्वी चंपारण का मुख्यालय था। यहीं से आरंभ हुआ चंपारण सत्याग्रह, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह जिसने ब्रिटिश राज को हिला कर रख दिया। कमिश्नर ने गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने इस सरकारी आदेश की विनम्रता पूर्वक अवहेलना की। 18 अप्रैल को मोतिहारी की अदालत में गांधी जी की पेशी हुई। राजकुमार शुक्ल ने आसपास के गांवों में सूचना फैला दी, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों की संख्या में किसान अदालत परिसर में जमा हो गए। ये जन सैलाब ब्रिटिश सत्ता के लिए अप्रत्याशित था। और फिर गांधी जी ने अदालत में अपना ऐतिहासिक बयान दिया। उन्होंने कहा, मैंने कानून तोड़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज और मानवीय सेवा के उच्चतर कानून का पालन करने के लिए जिला छोड़ने से इनकार किया है। उनका बयान बिजली की तरह पूरे देश में फैल गया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा, मुकदमा वापस ले लिया गया और गांधी जी को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति मिल गई। ये भारत में सविनय अवज्ञा की पहली बड़ी नैतिक जीत थी। राजकुमार शुक्ल गांधी जी के साथ गांव-गांव घूमते रहे। गांधी जी ने उन क्षेत्रों को देखा जहां अत्याचार चरम पर था। इस जांच के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद और जेबी कृपलानी आदि के साथ एक टीम तैयार हुई। राजकुमार शुक्ल ने किसानों को निर्भीक होकर बयान देने हेतु प्रेरित किया और लगभग 10,000 किसानों के बयान दर्ज हुए। इस आधार पर चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ, तिनकठिया प्रथा समाप्त हुई, किसानों से वसूले गए अवैध धन का एक हिस्सा लौटाने का आदेश हुआ और अन्यायपूर्ण कर से भी मुक्ति हुई। राजकुमार शुक्ल ने इस आंदोलन के बाद भी शिक्षा, स्वच्छता और जन जागरण के कार्य में स्वयं को समर्पित रखा। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। वो विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और खादी के प्रचार में जुट गए तथा किसान सभा आंदोलन के प्रारंभिक स्तंभ बने। वर्षों की कानूनी लड़ाई में ब्रिटिश दमन ने उनकी संपत्ति छीन ली थी, पशुधन नष्ट हो गया था, उनकी आर्थिक स्थिति भी टूट चली थी, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। इसी विपन्न अवस्था में उन्होंने 20 मई सन 1929 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि राजकुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन लें, राजकुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: भूदान की तरह साल की अखंड पदयात्रा में विनोबा ने सर्दी, गर्मी और बारिश की सतत मार सहन की है। कुदरत की क्या करामात थी कि जहां सबसे अधिक गर्मी, वहीं गर्मी के दिनों में उनकी पदयात्रा चलती थी। जहां सबसे अधिक ठंड, वहीं ठंड के दिनों में घूमने का कार्यक्रम बनता था। यही हाल बारिश का। बारिश के ही दिनों में उनकी असम यात्रा और केरल यात्रा चली। लोग कहते, बाबा अब तो बैठिए, कब तक घूमते रहेंगे, इतना कष्ट इस जर्जर शरीर को क्यों दे रहे हैं, थोड़ा उसकी तरफ भी तो देखिए।
1: तुम लोग कुछ नहीं जानते, इस यात्रा में इस देह को थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी, परंतु बापू सतत मेरे आगे पीछे रहते हैं और मुझे संभालते हैं, इसीलिए तो मुझे ना कोई तकलीफ है ना कोई चिंता।
0: भूदान पदयात्रा में एक डच सज्जन विनोबा जी से मिलने आए। पहले ही मुलाकात में उन्होंने कहा, विनोबा जी आपके भारत में मैं आया था गांधी जी को देखने। मैं दिल्ली गया, बंबई गया और भी कई जगह भटका, परंतु गांधी कहीं नहीं दिखाई दिए। इज ही रियली डेड? क्या वे सचमुच मर गए?
1: नो सर, ही स्टिल लिव्स।

0: बैठे हुए थे। लालटेन का हल्का प्रकाश बाबा के मुंह पर पड़ रहा था। बापू के बारे में बातें चल रही थी। बाबा भूतकाल में खोते जा रहे थे, एक के बाद एक प्रसंग कहते जा रहे थे। आखिर उन्होंने आंखें बंद कर ली और धीरे से गदगद आवाज सुनाई दी।
1: वे हुक्म दें और मैं उनके हुक्म को उठा लूं, यही आज तक का मेरा जीवन रहा है।
0: पौनार का पवित्र परमधाम आश्रम, सुबह का शांत शीतल समय। ब्रह्म विद्या मंदिर के सभी सदस्य अपने अपने दैनिक कार्यक्रम में व्यस्त थे। नहा धोकर जब मीराबेन बाबा की छोटी सी कुटिया में जाकर देखती है तो कुछ नई प्रवृत्ति में बाबा अकेले व्यस्त थे। बिछावन अस्त व्यस्त पड़ा था और नीचे बैठक जमाने का प्रयास चल रहा था। पूछा, क्या करना है?
1: नीचे सिर्फ दरी और तकिया ही रखनी है, बाकी सब निकाल दो।
0: मीराबेन ने कहा, बाबा पहले पाट पर की गद्दी निकाल दी, फिर पाट ही निकाल दिया, अब नीचे सिर्फ दरी रखने के लिए कह रहे हैं, क्या बात है?
1: देखो, एक तो हमारी ये छोटी सी कुटिया, उसमें पाट हो तो फिर आने वाले को बैठने में मुश्किल होती है। सब नीचे बैठे और मैं ऊपर बैठूं, ये भी ठीक नहीं। इस दृष्टि से मैंने पाट निकलवा दिया और नीचे बिछाने का शुरू किया, परंतु नीचे की बैठक में मेरी इस मोहिनी पर सबका पांव पड़ता है, यह ठीक नहीं। इसलिए आज से तय किया है कि दिन में दरी पर नीचे ही बैठना और लेटना, रात को पाट पर सोऊंगा और मोहिनी मेरे नीचे नहीं रहेगी परंतु मेरे सिरहाने रहेगी।
0: और विनोबा ने बिस्तर में से एक ब्राउन रंग का कंबल हाथ में लेकर मीराबेन को बुलाया। कोने में बापू का नाम लिखा हुआ था। उनका पारायण बाबा की मुंह से अनेक बार सुनने को मिलता था, आज फिर से सुनने को मिला।
1: तुम जानती हो इस मोहिनी की कहानी? सन 1950 में मेरा दिल्ली जाना हुआ, तब बापू का यह कंबल मुझे बख्शीश में दिया गया, तब से वह मेरे पास ही है। बापू की यह स्मृति है इसलिए उसका नाम मैंने मोहिनी रखा है। रोज नीचे बिछाकर इतने साल सोया हूं, मेरे पास सुरक्षित रहा है। गांधी स्मारक वाले जानेंगे तो मैं मानता हूं कि मुझसे मांगेंगे नहीं, क्योंकि मैं उसे संभालता हूं।
0: वैराग्य के प्रखर वैनाश्वर में जिनके मोह, ममत्व और आसक्ति का कण कण सुलग कर भस्म हो चुका है, निरासक्त सन्यासी का उत्तम नमूना जिसने अपने जीवन के द्वारा दुनिया के समक्ष खड़ा किया है, उस बैरागी को मोहिनी की मोहिनी से मोहित देखा तो मेरा सिर उनके इस अलौकिक प्रेम के आगे झुक गया। मोहन उनके शरीर के रोम रोम में व्याप्त हो गया है। इसकी प्रतीति हुई, मोहन की मीठी याद दिलाने वाली उस मोहिनी सेज पर सोने के लिए रोज रात को जय जगत करके ये शुभ्र वस्त्रधारी मूर्ति जब मच्छरदानी में अदृश्य होती है, तब बहुत बार लगता है कि बाबा बापू में समा गए। बापू के शिक्षण का निचोड़ विनोबा ने इस प्रकार रखा है।
1: सत्यम जीवन का लक्ष्य, संयम जीवन की पद्धति, सेवा जीवन का कार्य, यह सब आचरण में उतरे, यही भगवान से निरंतर प्रार्थना है।

0: भगवान कृष्ण 12 साल की शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से घर जाने वाले हैं। विदा लेते समय गुरु संदीपन के पास आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि जब तक जीऊं मातृ हस्तेन भोजनम मिले। विनोबा जी भी कहते हैं कि
1: जिन श्रीमंत बच्चों को जन्म लेने पर मां के बदले

0: वह गर्भ श्रीमंत नहीं, वह गर्भ दरिद्र है। माँ का दूध ना मिले, माँ के हाथ का भोजन ना मिले, उसके जैसा दूसरा दुर्दैव क्या। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, उन सबको मैंने अपने हाथों से भोजन पकाकर खिलाया है। जेल में भी जेल को आश्रम बनाते वक्त मैंने रसोई का काम उठा लिया था। मेरे हाथ की रसोई यानी बिना मिर्च मसाले की। पहले तो राजनीतिक कैदियों में से 10-15 लोग ही बिना मिर्च मसाले की रसोई खाते थे, क्योंकि सबको तीखा पसंद था। परंतु जब मैंने रसोई बनाना शुरू किया तो सब राजनीतिक कैदी सादी रसोई ही ज़्यादा पसंद करने लगे। धीरे धीरे दूसरे कैदी भी उसमें शामिल होने लगे। फिर तो संख्या इतनी बढ़ गई कि जेलर को प्रार्थना करनी पड़ी कि कृपया आप दूसरे कैदियों के भोजन की जिम्मेदारी मत उठाइए।
1: रसोई को विनोबा फाइन आर्ट कहते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि रसोई सुखादु बननी चाहिए और खाना चाहिए अस्वाद की भावना से। रसोई का स्वाद सिर्फ मिर्च मसाले से नहीं आता है, उनमें जब भाव उड़ेला जाता है तब मनपसंद भोजन बनता है। माँ के हाथ से जब रसोई बनती है तब रसोई की प्रत्येक प्रक्रिया में माँ के हृदय का भाव उड़ेला जाता है। उसका वो कर्म उपासना रूप होता है। जेल में सब राजनीतिक कैदी अपने पढ़ने के लिए अपनी रुचि की किताबें मंगवाते रहते थे। जेल का एक सरकारी अफसर उन पुस्तकों को देखकर आपत्तिजनक पुस्तकों पर रोक लगाता था और देने जैसी पुस्तकों की इजाजत देता था। दूसरे सब कैदियों की रोज बर रोज कुछ न कुछ शिकायत सुनाई देती थी कि आज फलानी किताब को रोका गया क्योंकि सरकार की दृष्टि से वो खतरनाक थी। विनोबा की किताबों पर कभी कोई रोक नहीं लगती थी क्योंकि उनकी फेहरिस्त में गीता, उपनिषद, पुराण जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ रहते थे। एक दिन किसी ने कहा, हम सहस्त्र किताबें मंगाएंगे तो उनमें से हमें एक दो मिलेंगी और विनोबा की सभी किताबें मंजूर होकर आएंगी। तब विनोबा ने कहा,
0: यह सरकार मूर्ख है, खतरनाक क्या है, उसकी उसे कोई पहचान ही नहीं है। अकल होती तो उपनिषद, गीता को सरकार जरूर रोकती और दूसरी किताबें जिनसे वह भड़की हुई रहती है उन्हें आने देती। गीता का आधार नहीं होता तो अंग्रेज सरकार के लिए महाखतरनाक गांधी गांधी ना बनते, तिलक तिलक ना बनते, श्री अरविंद अरविंद ना बनते। जिन ग्रंथों में जीवन का अधिष्ठान है वे ही ग्रंथ जुल्मी सत्ता में बारूद लगा सकते हैं।
1: स्वराज आंदोलन के सैनिकों की सजा थी जेल यात्रा। 1943 में एक बार सिवनी जेल से कैदियों को दक्षिण में वेलूर जेल ले जाया गया। दूसरे कैदियों के साथ विनोबा भी सवेरे वेलूर जेल में पहुंचे। जेलर हाजिर था। सब कैदी राजनीतिक थे, इसलिए हर एक को अपनी अपनी आवश्यकता बताने के लिए जेलर ने कहा। प्रत्येक ने अपनी अपनी आवश्यकताएं बताई। जब विनोबा की बारी आई तब उन्होंने कहा,
0: मुझे दो चीजों की जरूरत है। ये जरूरतें पहले पूरी होनी चाहिए। एक तो मेरे सिर के बाल बहुत बढ़ गए हैं इसलिए नाई चाहिए, और दूसरे मैं तमिल सीखना चाहता हूँ इसलिए मुझे कोई तमिल शिक्षक चाहिए।
1: विनोबा ने पहले ही दिन से तमिल भाषा सीखना आरंभ कर दिया। बेचारे तमिल शिक्षक को लगता था कि ये मनुष्य तमिल क्यों सीखता है, क्या मद्रास में व्यापार करना चाहता है। वे जेल में 4 महीने रहे, परंतु दूसरे कैदियों की मदद से दक्षिण की चारों भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम उन्होंने सीख ली। वे मानते हैं कि जिस प्रांत का अन्न खाते हैं उस प्रांत की भाषा न सीखे तो वो प्रांत द्रोह माना जाएगा। दूसरा, राष्ट्र की भावनात्मक एकता सिद्ध करने के लिए प्रत्येक अदक्षिणी को दक्षिण की कोई न कोई भाषा सीखनी ही चाहिए। जेल के प्रांगण में एक जगह घास को कतर कर 1945 लिखा था। हर साल ये डिजाइन बदल दी जाती थी। पुरानी घास निकाल डालते थे, चालू वर्ष के अंक बना दिए जाते थे। उसका दृष्टांत देकर विनोबा अपने साथियों को समझाते थे।
0: घास के प्रत्येक तिनके का अपना अपना स्वतंत्र प्रयोजन है, परंतु उन सब तिनकों का मिलाजुला एक सामूहिक प्रयोजन भी है, और वह है 1945 बनाना। यह बात ये तिनके नहीं जानते, वे तो उगते हैं और मिटते हैं, परंतु सब मिलकर एक प्रयोजन सिद्ध होता है। हम सब भी तिनके जैसे ही हैं, हम अपना प्रयोजन देखते हैं, परंतु इस सृष्टि में अपना क्या प्रयोजन है वह हम नहीं जानते। परंतु कोई ऐसा प्रयोजन जरूर है जिसके लिए सृष्टिकर्ता ने हमें पैदा किया।
1: वेलूर जेल में विनोबा और उनके साथी जब पहुंचे, उसके पहले कोंडी वेंकटा नाम के भाई वहां पहुंच गए थे और उन्होंने कैदियों में प्रार्थना शुरू करवा दी थी। प्रार्थना में गीता के 11वें अध्याय से कुछ श्लोकों का पाठ कराया जाता था और फिर रामधुन आदि बापू की प्रार्थना करवाते थे। क्रम में कुछ फर्क था। जेल में बापू के कुछ अनुयायी गए, उनको ऐसी प्रार्थना पसंद नहीं आती। वे विनोबा से कहते रहते कि आपको जोर देकर कहना चाहिए कि बापू ने जो क्रम रखा है वही क्रम रखना चाहिए, क्रम भंग होना अच्छा नहीं है, ये बात आपको उन्हें समझानी चाहिए।
0: भाई, मुझसे ये काम नहीं बनेगा। भारत में हिंदुओं में एक ही प्रार्थना चले, यह असंभव है। जिसके हृदय को जो स्पर्श करे वही प्रार्थना हो सकती है। हिंदू धर्म की यही विशेषता है कि उसमें हजारों संप्रदाय रह सकते हैं। तिलक ने हिंदू की व्याख्या की, उपास्यानाम अनियमः साधनानाम अनेकता। जिस धर्म में साधना की अनेकता हो, मतलब किसी एक ही निश्चित साधना का आग्रह ना रखा जाए, वही तो हिंदू धर्म है।
1: गोपाल राव काले विनोबा के बचपन के सहपाठी रहे हैं। जेल में रहते समय एक बार उनकी पत्नी विनोबा से मिलने आई। विनोबा की तबीयत के समाचार पूछकर उन्होंने विनोबा से पूछा, क्यों, जेल में कैसा लग रहा है? विनोबा ने लाक्षणिकता में जवाब दिया,
0: आपने सर्कस देखा है ना? सर्कस में मनुष्य पशु पर जुल्म ढाते हैं, जेल में इससे उल्टा होता है। यहां पशु मनुष्य पर जुल्म ढाता है। जेल जीवन का विधायक दर्शन देखिए। सच्चा आश्रमी जीवन तो जेल में भी अनुभव किया जा सकता है। गिनती के कपड़े, पानी का मग और कांजी की कटोरी, इतने से बर्तन, इससे अधिक असंग्रह के व्रत का पालन कहाँ होगा? नियम से नहाना, खाना, काम करना और घंटी बजते ही सो जाना और उठना, क्रमबद्ध जीवन, बीमार पड़ने की छुट्टी नहीं, भोजन में रोज ही अस्वाद व्रत, इससे अधिक संयम व्रत हम अपने आश्रम में भी कहाँ पालते हैं? अपने आश्रमों में जेल की अच्छी चीजें अपनाकर सुधार करना होगा।
1: सिवनी जेल में राजनीतिक कैदी अपने रिश्तेदारों को पत्र लिख सकते थे, परंतु विनोबा को यह भेद मंजूर नहीं था, इसलिए वे किसी को भी पत्र नहीं लिखते थे। 3 साल में उन्होंने किसी को पत्र नहीं लिखा था। एक दिन न जाने जेलर का क्या हुआ कि वो विनोबा के पास आकर बैठ गया और पूछने लगा,
2: आपके जीवन में दुख जैसी कोई चीज नहीं है?
0: हाँ है, परंतु वह दुख कौन सा है यह आप ही ढूंढिए। मैं आपको 7 दिन का समय देता हूं।

0: विनोबा जी, पिछले एक सप्ताह में मुझे कुछ मिल नहीं रहा, कृपया आप ही बताइए आपको कौन सा दुख है।
1: इस जेल में सूर्योदय और सूर्यास्त का दर्शन नहीं होता, यह मेरा सबसे बड़ा दुख है।

0: लोग पूछते कि विनोबाजी आपको 1200 कैलोरी भोजन कैसे पर्याप्त मालूम होता है, तो हंसते हंसते विनोबाजी जवाब देते,
1: अरे भाई मेरी खुराक कितनी है यह आप कैसे जानेंगे? इन 1000 कैलोरी के अलावा मैं गीता के 18 अध्याय खाता हूँ और उससे भी अधिक चारों ओर फैला हुआ विशाल आकाश खाता हूँ। अब आपको कुछ कहना है?

0: आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग. आपला खानदेश, आपली माणसं.
1: इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की. वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने. ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में. कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में. कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की.

नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, कई बार लोग ऊपरी तौर पर बहुत बड़े धार्मिक बन जाते हैं। वे गले में माला डाल लेते हैं, माथे पर तिलक लगा लेते हैं, घंटों पूजा पाठ या ध्यान का ढोंग भी करते हैं और समाज में यह दावा करते हैं कि उन्होंने अपने क्रोध, लोभ और वासनाओं पर काबू पा लिया है। लेकिन जैसे ही कोई ऐसी परिस्थिति आती है जहां उनके स्वार्थ को चोट पहुंचती है, उनका यह नकली मुखौटा तुरंत उतर जाता है और उनका असली हिंसक रूप बाहर आ जाता है। इसे अध्यात्म की भाषा में आत्मछल या नकली साधना कहा जाता है। कबीर साहब बाहरी दिखावे और खोखले दावों के सख्त खिलाफ थे। वे कहते थे कि जब तक भीतर की बुनियादी जमीन साफ नहीं होगी, तब तक ज्ञान की फसल कभी नहीं उग सकती। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह आंखें खोल देने वाला सूत्र। मन मारिया मन करी, सके न पंच प्रहारी। मन मारिया मन करी, सके न पंच प्रहारी। सील सांच सरधा नहीं, इंद्री अजहू उघारी। मन मारिया मन करी, सके न पंच प्रहारी। मन मारिया मन करी, सके न

आरिम श्रोताओं, कबीर साहब उन लोगों की पोल खोलते हुए कहते हैं जो मन को जीतने का दिखावा करते हैं। मन मारिया मन करी, तुमने पूरी दृढ़ता और ईमानदारी के साथ अपने इस चंचल मन को नहीं मारा, इसे शांत नहीं किया, केवल ऊपर ऊपर से साधु होने का नाटक किया। सकेन पंच प्रहारी, और यही कारण है कि तुम आज भी उन पंच प्रहारी यानी काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार रूपी पांच दुश्मनों के प्रहार को रोक नहीं सके। जब भी मौका मिलता है ये पांचों विकार तुम्हें अपने वश में कर लेते हैं। तुम्हारी साधना असफल क्यों हुई? अगली पंक्ति में कबीर इसका सीधा और मर्मभेदी कारण बताते हैं। सील सांच श्रद्धा नहीं, क्योंकि तुम्हारे जीवन की बुनियाद में न तो सील यानी सदाचार और पवित्रता है, न सांच यानी आचरण की सच्चाई है, और ना ही परमात्मा के प्रति कोई श्रद्धा यानी सच्ची श्रद्धा है। तुम्हारी भक्ति में केवल प्रदर्शन है, प्रामाणिकता नहीं। इंद्री अजहू उघारी, और इसीलिए तुम्हारी इंद्रियां आज भी अजहू उघारी यानी पूरी तरह बेलगाम नग्न और सांसारिक भोगों की तरफ भागने के लिए व्याकुल बैठी हैं। तुम्हारा त्याग केवल एक दिखावा है। यह दोहा यम नियम और नैतिक शुद्धता का महासूत्र है। पतंजलि योग सूत्र में भी ध्यान और समाधि से पहले यम और नियम जैसे सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य संतोष को अनिवार्य माना गया है। कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि जो साधक अपने आचरण में शील और सत्य को धारण नहीं करता, उसकी इंद्रियों का पसर यानी फैलाव कभी शांत नहीं हो सकता। पंच प्रहारी हमारे ही भीतर के वे आदिम विकार हैं जो चेतना को पशु स्तर पर गिराए रखते हैं। कबीर का यह सूत्र हमें चेतावनी देता है कि आध्यात्मिक प्रगति का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जब तक मन को सजगता से जतन से नहीं साधा जाएगा और श्रद्धा को गहरा नहीं किया जाएगा, तब तक संसार सम्मोहन नहीं टूटेगा। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा खुद के प्रति पूरी तरह ईमानदार होकर अपनी साधना और अपने आचरण को टटोलिए। हम मंदिर जाते हैं या कबीर के इन सूत्रों को सुनते हैं, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हमारे भीतर का क्रोध कम हुआ है? क्या हमारे भीतर दूसरों के प्रति ईर्ष्या और निंदा का भाव शांत हुआ है? आज कोशिश कीजिए इस आत्म छल को रोकने की। ऊपरी दिखावे को छोड़कर अपने भीतर सील यानी मधुर व्यवहार यानी ईमानदारी और श्रद्धा यानी अटूट विश्वास की नींव को मजबूत कीजिए। अपने मन की वृत्तियों पर होश का ऐसा पहरा बिठाइए कि ये पंच प्रहारी आपको दोबारा लूट न सकें। जब आपके आचरण में पवित्रता आएगी तो वह राम नाम आपके भीतर सहज ही फलीभूत होने लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जब पीछे मुड़कर देखा, पास्ट को जब भी देखते हैं, तो ना चाहते हुए भी वो सारी बातें हमें याद आ जाती हैं, या फिर हम जीवन में जब चल रहे होते हैं, कभी भी अचानक अनजाने ही पास्ट की बातें ट्रिगर हो जाती हैं, और फिर जहां हम खड़े हैं वो पास्ट ही हमारा प्रेजेंट बनने लगता है। अगर पिछली कड़ी आपको याद हो तो हमने बात की थी कि कैसे हमारा पूरा गुजरा हुआ कल आज भी, तभी हम कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स, क्योंकि मैंने ही उसे अपना प्रेजेंट बना लिया तो फिर वही तो आगे सामने आएगा। हमने एक मुद्दे पर बात करनी चाही थी और वो था जब किसी लव्ड वन की, किसी करीबी की, जो अपनी देह छोड़ देते हैं, वो नहीं रहते जीवन में, या फिर कहीं कोई ऐसा अपना होता है जो छूट जाता है, कहीं और चला जाता है। तो ऐसे दो एक्सपीरियंस हैं जो कि जिनसे पार पा पाना, या जो वो बार बार अनजाने ही आते हैं, उन्हें कैसे हैंडल करना है, और इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पास्ट की हम बात कर रहे थे तो कई अनुभव तो छोटे छोटे होते हैं जिसको करके कि हम हैं, और खुद ही अपने आप को हील करना, ये हमने समझा, ना हम किसी और को बदलेंगे ना सिचुएशन बदलेगी, और वो गुजर गया, खत्म हुआ। लेकिन कुछ सिचुएशंस, जैसे कि कोई हमारा बहुत करीबी और उसकी डेथ हुई, वो आज भी उतना ही बड़ा घाव है, और हमने किसी तरह से अपने आप को कवर अप किया है। मतलब इतने लोग इतना समझाते हैं, इतनी बातें करते हैं, कवर अप कर लेते हैं, नॉर्मल जिंदगी भी जी रहे हैं, सबके साथ भी जी रहे हैं, काम पर भी है, लेकिन वो खाव तो भरता नहीं है।
1: डेफिनेटली आई थिंक जीवन में हमें बहुत सारे, जैसे हम शुरू से देख रहे हैं, उतार चढ़ाव देखने, लेकिन ये जो एक परिस्थिति होती है, डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर और अ क्लोज फ्रेंड, ये शायद जीवन का सबसे बड़ा एग्जाम पेपर होता है, जिसमें तो हमने कहा कि दर्द तो नेचुरल ही है, वी नेवर एवर थॉट के कोई और ऑप्शन भी है। यस, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। जीवन में वो सिचुएशन है जिसको पार करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, लेकिन इसमें भी अगर हमें राइट नॉलेज है, विजडम है, और फिर साथ साथ पावर भी है, तो इसको भी हम क्रॉस कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम देखते कि उसमें भी अगर हम देखें कि जब हमारा बच्चा, बिकॉज आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, लेकिन उसमें भी अगर किसी के बच्चे ने, बच्चे की डेथ हुई है, यंग अनटाइमली डेथ, तो शायद उसको पेरेंट्स के लिए फेस करना बहुत डिफिकल्ट होता, और वो अपने आप को ये कह ही देते कि बाकी पूरी जीवन तो दर्द में ही बीतनी है। यहाँ तक कि वो दर्द इतना ओवरपावर कर जाता कि कहते हमें जीना ही नहीं है, हमारे जीने का कोई पर्पस नहीं है। उनको अब जो प्रेजेंट फैमिली मेम्बर्स हैं वो कोई नहीं दिखाई देते, उनका कुछ नहीं

0: वॉन्ट टू लिव, आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग, यू नो. एंड उसके बावजूद भी मैं करती हूँ, उठता हूँ, काम करती हूँ और चीज़ें करती हूँ.
1: राजयोग में जो सबसे फंडामेंटल बात जो हमें समझ में आती कि मैं कौन हूँ, ये एक फंडामेंटल रियलाइजेशन है जो हमारा सारा पर्सपेक्टिव चेंज कर देती कि ये शरीर है, नाम है, परिवार है, रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन इन सब के लिए हमने कहा मेरा, यू नो, मेरा नाम ये है, मेरा प्रोफेशन ये है, ये मेरे रिश्ते हैं. शरीर के लिए भी हमने कहा मेरी आंखें, मेरा कान, मेरा शरीर, आज मेरा शरीर बहुत दर्द हो रहा है. तो ये सब कुछ मेरा मेरा कहने वाला, वो मैं कौन? तो वो हमें समझ में आता कि वो एनर्जी है जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते, चैतन्यता जिसको कहते, द लिविंग, द बीइंग पार्ट. क्योंकि हम कहते हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंटिटीज. वन इज द बॉडी, द ह्यूमन, जो ह्यूमस वर्ड से निकलता मिट्टी, एंड बीइंग इज एनर्जी, कॉन्शियसनेस. तो ये जो बॉडी है ये मेरी है, और मैं कौन? वो शक्ति. जब हमें समझ में आता कि आई एम एनर्जी, देन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सो इट इज इटर्नल. जब ये समझ में आता तो देन आई अंडरस्टैंड कि मैं वो चैतन्य शक्ति जिसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम आत्मा कहते, सोल कहते, स्पिरिट कहते, मैं इटर्नल हूँ. तो डेथ किसकी होती है? क्योंकि पूरा जीवन हम मृत्यु के भय में जीते हैं. लेकिन जब मुझे समझ में आता कि मैं तो इटर्नल हूँ, आज दिन तक भी हम सुनते आए आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, जो जल नहीं सकता, जो मर नहीं सकता, जिसका विनाश नहीं हो सकता. आई एम इटर्नल एंड सो इज एवरी सोल. सो एवरी सोल इज इटर्नल. तो मृत्यु का कॉन्सेप्ट क्या है? वॉट इज डेथ? इज वेन आई द सोल लीव वन कॉस्ट्यूम, वन सेट ऑफ रिलेशनशिप्स, वन पर्टिक्युलर सीन, एंड देन आई हैव टू शिफ्ट. तो अब हम अगर इसको देखें कि डेथ मीन्स के वो आत्मा एक, क्योंकि वी आर सीइंग डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर, वो आत्मा जो कल तक मेरे साथ थी, उसका मेरे साथ एक, जिसको हम कहें, कार्मिक अकाउंट था. हम कहाँ आते हैं? बर्थ और डेथ कैसे डिसाइड होता है? कई लोग बोलते हैं कौन डिसाइड करेगा कहाँ जन्म हुआ और कब तक उस शरीर में रहना और फिर कब वहाँ से चलना है. इट इज़ बेस्ड ऑन माई कार्मिक कनेक्शंस. हम जिस परिवार में हमारा जन्म होता, जिन लोगों के हम कनेक्शन में आते, इट इज़ बिकॉज उन आत्माओं के साथ मुझ आत्मा का कार्मिक कनेक्शन है, जिसको हम कहें एनर्जी के लेन देन है. दिस इज़ बेस्ड ऑन माई पास्ट कार्मिक कनेक्शंस. तो जिन आत्माओं के साथ हम आज हैं, हम पहले भी उनके साथ कभी थे. जब हम उनके साथ पहले थे, हमारा एक पर्टिकुलर अकाउंट क्रिएट हुआ था. अब हम फिर उनको मिलते, फिर हमारा एक अकाउंट है. लेकिन जैसे ही अब मेरा ये अकाउंट जो था वो सेटल हो जाता, आई हैव टू लीव. आई कैन नॉट स्टे वन मिनट मोर आफ्टर दैट. तो जब हमें ये समझ में आता वो आत्मा मेरे कॉन्टैक्ट में आई फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, फॉर सेटलिंग अ पर्टिकुलर अकाउंट, उसके बाद द सोल कैन नॉट बी इन माई कॉन्टैक्ट एनी मोर, क्योंकि उसका वो अकाउंट फिनिश हो गया एंड इट हैज टू गो समवेयर एल्स, जहाँ उनका एक
0: नया
1: अकाउंट है. वो सोल अपनी जर्नी पे है. यू नो, इट्स लाइक एक ट्रेन में हम जा रहे हैं, हम सब अपनी अपनी जर्नी पर हैं. ऐसा नहीं होगा कि सब लोग एक ही स्टेशन से चढ़े और सब लोग एक ही स्टेशन पे उतरे. हर एक की जर्नी अलग अलग है. तो हर एक का बोर्डिंग पॉइंट वो भी अलग अलग है, हर एक का उतरने का स्थान वो भी अलग अलग है, क्योंकि हर एक अपनी अपनी यात्रा पर है.
0: But I didn't want to finish this account. See?
1: No, it's not about I wanting to finish this account. I'm not talking about my account. It's about the other soul's account. अगर आपका अकाउंट मेरे साथ चार दिन का है, तो उसके बाद आपने पांचवें दिन दूसरी जगह जाना ही जाना है, क्योंकि पांचवें दिन आपका कनेक्शन दूसरी जगह. लेट्स से आप हफ्ते में तीन दिन हमारे साथ शूट करते हैं, लेकिन चौथे दिन आपको कहीं और शूट पे जाना है. आपकी वो कमिटमेंट है. अब मैं को तीन दिन आपके साथ बहुत अच्छा लगा, मैं सोचूं चौथे दिन भी आप यहीं आ जाएं, तो मेरे चाहने से आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपका कमिटमेंट अब चौथे दिन कहीं और है. अब मैं जो यहाँ पीछे बैठी, आप तो चले गए कहीं और, अब मेरे पास चॉइस है

0: मैं इसको एक्सेप्ट करूं कि आपका कमिटमेंट, आपका अकाउंट कोई और है, या मैं दर्द में रहूं कि वो क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है आज मेरे
1: साथ। सबसे बड़ी बात ये भी, फिर ये भी रहता है कि तो इसका मतलब उनको जब वो चले गए हम याद ही नहीं रहते, यू नो, बिकॉज कमिटमेंट पूरा हुआ।
0: हम उनको याद नहीं रहते, ये उनके लिए अच्छा है ना एक्चुअली। अगर हम एक पल के लिए देखें, आई मेट वन मदर जिनका 21 साल का बेटा ने एक्सीडेंट में डेथ हुई, तो वो बहुत अच्छा पास्ट का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। बेटा दूसरे देश में था, तो कहा हमारा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था कि यहाँ अगर मैं अपसेट होती, उसको वहाँ पता चलता, या उसके साथ कुछ होता तो मुझे यहाँ, इतना जैसे हमारा यू नो वो बॉन्डिंग था। तो कहते हम तुरंत फ़ोन करते एक दूसरे को, सब ठीक है, कुछ हुआ है? एंड शी सेड इनवेरिएबली वी वर राइट कि दूसरे के साथ कुछ ना कुछ हुआ था। तो इतना हमारा कनेक्शन। अब वो बच्चा, वो आत्मा कहीं और चली गई है। ये मदर बहुत रोती है, रोज रोती है इतना। तो आई जस्ट आस्क्ड हर वन थिंग, आई सेड कल तक आपका और उस आत्मा का इतना कनेक्शन था ना कि आपकी एक थॉट उधर तक पहुंचती, उसकी एक थॉट आप तक पहुंचती। अब वो आत्मा का कॉस्ट्यूम चेंज हो गया है। सी व्हाट वी से, इट्स ओवर, इट्स डेथ, इट्स फिनिश्ड। नो, इट्स जस्ट द सोल हैज चेंज्ड अनदर कॉस्ट्यूम। लेकिन क्या वो कनेक्शन फिनिश हो गया होगा? क्या वो एनर्जी एक्सचेंज फिनिश हो गया होगा? अगर आप आज कहीं और भी चले गए, क्या आपको भूल गए? आपको याद नहीं आएगी? आएगी। अब क्या होगा? लेकिन पहले वो दूसरे देश में था, उसको अगर याद आता या उसको कैच होता, ही कुड कॉल। एक मिनट के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्रिएट द सीन इन फ्रंट ऑफ यू कि वो आत्मा अब एक दूसरे शरीर में है, प्रोबेबली इन द वूम्ब ऑफ द मदर और अ वेरी लिटिल बेबी, जस्ट कैन नॉट कॉल यू बैक।
1: But will he remember? It's not the remembrance.
0: It is not remembrance. शुरू शुरू में तो remembrance है।
1: हाँ।
0: एक आत्मा जब उस शरीर में है, आप देखो एक बच्चे को शुरू में सारा पास्ट याद होता है।
1: कभी वो हंसता है, कभी रोता है।
0: कभी वो हंसता है, कभी वो रोता है। क्या? क्योंकि नेचर है ना, जैसे हमें पास्ट भूलता जाता है, तो नेचर बहुत सुंदर ऐसे बनी हुई है प्रकृति कि जैसे जैसे बच्चा बोलने की स्टेज पर आता, दो तीन चार साल, तीन साल तो हो जाते, तब तक उसको पास्ट भूल जाता क्योंकि प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन लेयर उसके ऊपर सारी कोड होते जाते। तो कई बच्चे ऐसे मिलते हैं ना जिनको पास्ट याद होता, तो वो किस एज में होते हैं? वो 19, 20, 25 की एज में नहीं होता कभी भी, 5, 6, 7। क्यों? क्योंकि मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग थी कि वो जो बात दो तीन साल तक भूल जानी चाहिए थी, वो 4, 5, 6 साल तक भी याद है और वो उसका वर्णन फिर करना शुरू करते। लेकिन जब वो आत्मा माँ के गर्भ में है, वो तो अभी अभी आई है, या वो एक एकदम छोटा बच्चा, वो तो अभी उसको सब याद है, सारा कुछ याद है, और वो पास्ट को याद करके ही रोता और हंसता है। बच्चा कभी भी प्रेजेंट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। हम हॉस्पिटल में बच्चे को क्रेडल में देखते, हम उसके साथ प्यार से बात करते, हमें लगता है वो हमें देखकर, डजंट इवन नो मी, डजंट इवन रिकॉग्नाइज मी, वो कुछ और याद करके हंसता और रोता है। अब यहाँ वो माँ है, यहाँ वो आत्मा है। अब उसको बच्चा नहीं कहेंगे, अब वो आत्मा है यहाँ। अगर पहले आपका एक एक दर्द वो ऐसे कैच करता था, अब नहीं करेगा। अब करेगा या नहीं करेगा? अभी भी करेगा। यहाँ आप इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, किसको याद करके रो रहे हैं? उसको याद करके रो रहे हैं। लॉ ऑफ एनर्जी
1: किस बॉडी में था? यू नो, किसी और कॉस्ट्यूम में था।
0: पर कॉस्ट्यूम को नहीं हम याद करते ना, एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो कॉस्ट्यूम और कॉस्ट्यूम के बीच नहीं, वो आत्मा और आत्मा के बीच है। दैट्स व्हाट वी सेड इज रिलेशनशिप। अब जब हम रो रहे हैं, हम पेन की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, एनर्जी ट्रैवल करने वाली है, कहाँ ट्रैवल करेगी?
1: उसी पे जाएगी,
0: उस आत्मा के प्रति जिसके लिए वो क्रिएट की गई है। सो यस, इट इज वेरी डिफिकल्ट। यस, हम नहीं, हम कहते हम इस दर्द से नहीं निकल सकते, लेकिन अगर हम अपने आप को प्यार से और लॉजिकली समझाएंगे कि जब वो आत्मा यहाँ थे, तो मैं चाहे कुछ भी हो जाता उसको दर्द ना होने देते, मैं कुछ भी कर जाती उसको अपने दर्द से दूर करने के लिए, और आज मैं ही बैठकर क्या भेज रही हूँ? मैं दर्द भेजते जा रही हूँ, भेजते, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वो मेरे सामने नहीं है, तो मुझे पता नहीं चल रहा, तो मेरे ऊपर उसका फर्क नहीं पड़ रहा। इफ आई हैव द रियलाइजेशन दैट ऑल दिस पेन दैट आई एम क्रिएटिंग इज गोइंग टू दैट सोल, आई विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। अपने लिए नहीं ध्यान रखना चाहते ना, ठीक है, वी से मुझे नहीं ध्यान रखना अपना, आई डोंट वॉन्ट टू बी फ्री ऑफ पेन, अपने लिए नहीं, उनके लिए सही।
1: जिसके लिए हम जीवन भर वैसे ही करते आए हैं,
0: जिनके लिए जो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट थे उनको इतना दर्द पहुंच रहा है। अच्छा, बच्चा अगर थोड़ा बड़ा होता जाता वो हमें याद नहीं रख, वो याद नहीं करता, भूल जाता है, लेकिन एनर्जी जो हम भेज रहे हैं वो एनर्जी वो फिर भी रिसीव करता है। एनर्जी ऐसी चीज है, आप जिसकी प्रति क्रिएट करो इट इज ट्रैवलिंग टू दैट पर्सन।
1: तो मतलब इसका मतलब वो जो सोल जिसने जहाँ जन्म लिया जो भी है उस तक वो वाइब्रेशंस तो पहुंच रहे हैं
0: ऑलवेज ऑलवेज ऑफ कोर्स। सी इट्स लाइक दिस, आप मेरे लिए जो भी एनर्जी क्रिएट करोगे
1: तो देन अननोइंगली
0: आई एम सेंडिंग सो मच पेन।
1: यस, और वो पेन में चला जाता होगा बच्चा, मतलब वो जहां पे भी होगा।
0: सी हाउ इट हैपेंस, क्योंकि हमारे अंदर आज इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने आप की प्रोटेक्शन कर सके। हमने यही देखा ना, आपने दर्द भेजा तो मेरे भी दर्द में चली जाते हो, अनलेस आई वर्क वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ कि आपकी एनर्जी औरों की एनर्जी मुझ पर इन्फ्लुएंस नहीं करे। लेकिन मोस्ट ऑफ अस आर नॉट डूइंग दैट वर्क, तो मोस्ट ऑफ अस आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय वट एवर एनर्जी इज बीइंग सेंट टू अस। तो जब हम उन सब लोगों की एनर्जी से इन्फ्लुएंस होते जो हमारे आसपास है, अगर कोई कहीं और भी है लेकिन वो जो एनर्जी भेज रहे हैं उसका भी इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर।
1: और उस बच्चे को तो ये पता भी नहीं चलेगा ना, बिकॉज वो सामने हो तब हमें समझ में आता है कि इसकी एनर्जी ये आ रही है, वो उसका ये आ रहा है। लेकिन वो तो द चाइल्ड वोंट बी इवन नोइंग कि वो कहां से आ रही
0: है। दैट्स बिकॉज़ वी आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ पेन। तो एज अ पेरेंट, एज अ हस्बैंड वाइफ, जो भी हम है यहाँ पर, हमें मालूम है, हम अपने आप को तो ये कह देते कि हमें खुश रहने का कोई हक नहीं है, हम रहना नहीं चाहते खुश। यू नो पीपल से आई डोंट वांट टू बी हैप्पी, इट्स नॉट अबाउट बीइंग हैप्पी। यस, यू डोंट वांट टू बी हैप्पी, बट हैप्पी इज नॉट एक्साइटमेंट, इट्स अबाउट बीइंग स्टेबल, इट्स अबाउट बीइंग पेन फ्री, दैट्स ऑल। क्योंकि अब आप जितनी बार दर्द क्रिएट करेंगे अपने को तो देंगे ही, उनको भी भेजेंगे। देखो अगर बच्चा कहीं और है, देखो नॉर्मल में कैसे होता, अगर बच्चा कहीं और है और वो हमें फोन करता दूसरे शहर से, कहता सब कुछ ठीक है घर पे, तो हम क्या कहते, हाँ,
1: सब ठीक
0: है। यहाँ पर हो सकता 10 प्रॉब्लम हो आज, हम बच्चे को कभी नहीं बताते, या जो भी हस्बैंड वाइफ पे गए हो हम बताते नहीं। व्हाट इज द इंटेंशन, दूसरा जहाँ है वहां वो सेट हो जाए। अगर हम यहाँ की बात उसको बताते रहेंगे सारा, वो वहां सेट कैसे होगा। सिमिलरली आत्मा दूसरी जगह है, हमारा प्योर इंटेंशन क्या होना चाहिए, वो वहां पर सेट हो जाए। हम रोज पता है क्या मैसेज भेजते हैं,
1: हम सेट नहीं होने दे, बिकॉज हमारा इट मींस वी आर एक्चुअली बीइंग लिटिल सेल्फिश। I don't want to say that, but
0: because we're thinking only about ourselves, yes, no? Yeah. We're not thinking about them. Why we were not able to think about them? Because we thought they are gone.
1: Haan.
0: You know, जहाँ हमने कहा they are gone, तो फिर हमें यही नहीं था कि वो अभी हैं। हमने कहा वो तो चले गए।
1: वो मेरी ज़िंदगी से तो पर चले गए ना, ये बड़ा दुख है।
0: लेकिन
1: वो कहीं तो है
0: ना। सिमिलरली अगर बच्चा दूसरे शहर में, वो यहाँ नहीं है,
1: लेकिन एक्सेप्ट इट, यू नो, लाइक ये मैं मान ही नहीं पाती हूँ, बिकॉज ये इतने कंफ्यूजन्स और डेथ के बाद क्या होता है क्या नहीं होता, इसको लेके इतने सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, ये इतना सब कुछ है, तो ये मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ कि वो है।
0: जब हमें ये समझ में आ गया कि हम आत्मा है, और ये हमें समझ में आ गया कि आत्मा का विनाश नहीं होता, तो फिर तो वो है ना। विनाश नहीं हो सकता ना, एनर्जी कैन नॉट बी फिनिश्ड, सो इट इज देयर। व्हाट डज एनर्जी डू, इट जस्ट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, सो वन कॉस्ट्यूम टू अनदर, वो है।
1: लेकिन यहाँ एक बात मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ कि इससे जुड़ी इतनी कन्फ्यूजन है कि हम फिर ना कई कई और चीजों में चले जाते हैं, उसने शरीर लिया कि नहीं लिया, वो यही है कि नहीं है, और कई बार हम कुछ और
0: कनेक्ट करने की भी कोशिश
1: करते हैं। इज इट राइट,
0: इट इज अगेन सी राइट एंड रॉन्ग अगेन, जितना हम उसको यहाँ खींचने, देखो एक तो है हम असंभव करने की कोशिश, या तो हमारे कुछ भी करने से अगर वो वापस इस कॉस्ट्यूम में आ सकते, गो एंड डू व्हाटएवर यू वांट, वो तो होने नहीं वाला है। लेकिन अगर हम बार बार यहाँ कनेक्ट करना मेरे से, यू नो, बहुत सारे आजकल टेक्निक्स फॉलो कर, क्या क्या, कम्युनिकेट विद हिम, आई कैन कनेक्ट विद हिम, जब वो यहाँ आ नहीं सकते हमें उनको क्या करने देना है। जितने बच्चे हैं जिनको अपना पास्ट बर्थ याद आ जाता है, यू नो हाउ अनकंफर्टेबल दे बिकम, वो यहाँ है 5 साल के, याद उनको आ गया कुछ पास्ट का, ये उनका प्रेजेंट है, प्रेजेंट को वो छोड़ नहीं सकते, लेकिन वो प्रेजेंट और पास्ट के बीच में खींचते जाते, एंड दैट इज वाई इट्स लॉ ऑफ नेचर कि हमें वो पास्ट बर्थ भूल जाना चाहिए, क्योंकि जिसको नहीं भूलता वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट में चलता है. तो इसी तरह वो आत्मा दूसरी जगह चली गई, लेट इट सेटल. अगर हम उसको इस तरह से अलग अलग तरह से खींचने की कोशिश करें,
1: सेटलमेंट नहीं होगा,
0: नहीं होगा ना. इट इज लाइक सपोज बच्चा दूसरे शहर में है और हम उसको फोन करके बोले वापिस आ जाओ, तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लग रहा. हम ऐसा बोलेंगे कभी? हम कहेंगे नहीं, सब ठीक है, आप वहीं रहो. सिमिलरली आत्मा कहीं और चली गई है दूसरी जगह, हम थॉट्स क्या क्रिएट करते, क्यों छोड़ के चले गए, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती, मुझे जीना ही नहीं है,
1: कुछ भी करके लौट आओ, यू नो लाइक इट्स.
0: नाउ सी, नाउ इमेजिन दैट सोल देयर गेटिंग ऑल दीस थॉट्स, दीस ऑल वाइब्रेशंस, हाउ मच पेन. वो आ भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकते, वो सिर्फ क्या करते, रिसीव करते जाते, रिसीव करते जाते इतना दर्द. तो अपने लिए नहीं, उनके लिए, उस आत्मा के लिए जो गए है, लेट्स स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्फ. एंड ऑल्सो जो हमारे साथ अभी हैं परिवार में, ये भी एक बहुत बड़ी जो बात हो जाती, एक घर में दो तीन चार लोग हैं, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, अच्छा हस्बैंड वाइफ है, एक नहीं है, रिश्ते में क्या दूंगी मैं दूसरे को. हम ये नहीं वैल्यू करते कि ठीक है वो आज मेरा मेंबर मेरे साथ नहीं है, लेकिन ये एक दो लोग ही. दिस इज हाउ द पास्ट
1: एक्चुअली एज इम्पोर्टेंट एज दैट चाइल्ड
0: एज इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स इक्वली इम्पोर्टेंट. वॉज इट दैट दैट पर्सन वॉज इम्पोर्टेंट, द रेस्ट वर नॉट इम्पोर्टेंट, बट माई फोकस गोज ऑल टूवर्ड्स दैट one who's not there, and in the process I neglect everyone who is there. Bahut gharon mein ye dekha ja raha hai ki husband wife ke beech ka relationship wo dur ho jate hain ek dusre se. Jo bachcha hai aaj wo neglected feel kar raha hai kyunki parents kya hain, पूरी तरह से दर्द में चले गए हैं. तो उस बच्चे को जो उनके साथ है, उसके पास कौन सी एनर्जी है देने की? घर का पूरा वायुमंडल कैसा हो गया है? दर्द में. We have to stop and ask ourselves, till when will we let this past influence my present? I cannot do anything about it except for accepting the situation.
1: What to do then? Okay, one realization hits. I just hope a lot of people watching, because this is something actually one can empathize with, you know. Samajh mein aata hai, dard bhi genuine tha. Aur ab ye realization, jab facts saamne aate hain, ki ye hai, ab aap agar apne aap par kaam karne ke liye tayyar hai, to kya kare?
0: Hame ye pata hai ki yaad to aati hai. You know, hum kahe bhool jaye usko, to wo nahi hota. Lekin ek hai प्यार से याद, दूसरा है दर्द से याद. नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही याद आती तो याद इज फॉलोड बाय दर्द. कई बार लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारी अच्छी मेमोरीज थी, हमने बहुत अच्छा समय उनके साथ बिताया, तो वो समय को याद करके हमें अच्छा लगता है. लेकिन एक्चुअली क्या होता, जैसे ही वो अच्छे वाले सीन्स हमें याद आते, हमें उन क्षण बहुत अच्छा लगता, एंड नेक्स्ट क्षण हम दर्द में चले जाते कि अब वो सीन्स नहीं है,
1: क्योंकि अब वो नहीं है, यू नो, वो पूरा वो रोना,
0: तो एक्चुअली वो अच्छा नहीं है. इट्स नॉट दैट यू क्रिएटेड हैप्पीनेस और यू क्रिएटेड लव, यू स्टिल क्रिएटेड पेन. तो ये हमें याद रखना होगा कि ये दर्द जो हम बार बार जस्टिफाइड कहकर क्रिएट कर रहे हैं, ये मेरे ऊपर तो इम्पैक्ट डाल ही रहा है, मेरे साथ अब जो आत्माएं हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट.
1: तो कोशिश क्या करें कि वो जो पुरानी गुड मेमोरीज हैं,
0: उनको जब भी याद करें, नहीं, उनको जब भी याद करें, याद तो आती है, याद जब भी करें, वी कॉन्शियसली सिट एंड सेंड वाइब्रेशंस ऑफ लव कि यस, आई अंडरस्टैंड यू आर समवेयर एल्स, आई विश दैट यू सेटल देयर, एंड आई सेंड यू वाइब्रेशंस ऑफ लव, वाइब्रेशंस. हम नहीं कहते एक मिनट उन आत्मा को शांति का दान भेजे, उस आत्मा की शांति के लिए नहीं हवन करते हैं, क्या करते हैं, उस आत्मा की शांति के लिए. लेकिन उस आत्मा को शांति ये सिर्फ करने से नहीं मिलेगी, वो आत्मा को शांति कब मिलेगी,
1: जब हम
0: शांत रहेंगे. हम अगेन सी हाउ वी हैव बिकम, हम शांति भेजने के लिए भी करते हैं, वी आर डूइंग थिंग्स, कुछ भी करने से शांत. अगर मैं रो रो कर हवन कर रही हूँ, हवन नहीं पहुंचेगा उधर, वो तो फिजिकल है, क्या पहुंचेगा,
1: मेरा
0: दर्द पहुंचेगा. तो उस आत्मा की शांति के लिए हमें क्या करना होगा, हमें शांत रहना पड़ेगा. दैट्स द ओनली वे, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू एक्सेप्ट एंड लेट गो ऑफ द पास्ट. एंड जब भी याद आए, vibrations of love, peace and power. It's very important.
1: And actually hum jitna peace, power aur is love ki vibrations bhejenge wo humse hi hokar guzrenge. To this actually we can try it out.
0: Actually situation ko accept karna padta hai. Dard kyun create karte hain hum accept nahi
1: karte. I don't want to
0: mere saath kyun aisa hua, mere saath mujhe nahi. Hame accept karna padega ki atma ka mere saath itna hi samay ka paath tha, ab unka paath kahin aur hai, aur jitna hum unko achhi vibrations bhejenge wo us paath mein बहुत अच्छा अपना जीवन अपने परिवार के साथ अपने नए शरीर में अपने नए रोल में बहुत अच्छा बिताएंगे. एंड एज अ फैमिली मेंबर, एज अ पेरेंट, हमारी शुभ भावना हमेशा क्या होगी कि वो बच्चा जहाँ भी है वो वहाँ पर बहुत सेटल्ड.
1: आई थिंक इट्स अ वंडरफुल वे टू लुक एट इट. कोई बात, कोई सवाल मन में है आप जरूर हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे को हमने अपने साथ लिया है. सिस्टर शिवानी, ये जो प्रोसेस है ये बिना साइलेंस में बैठे हम नहीं अनुभव भी कर पाएंगे. तो हम चाहेंगे कि अगर आज कुछ शेयर करें.
0: सबसे पहले अपने आप को देखें. इस शरीर का मालिक, इस शरीर को भी चलाने वाली शक्ति, दैट प्योर कॉन्शियंट बीइंग शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं. आई एम अ पीसफुल बीइंग. My peace is my creation. It is not dependent on those who are with me, and it is not dependent on those who have left. I can create it right here in the present moment. And as I create it, it flows out from me. Shanti ke vibrations. मुझ आत्मा से निकल बाहर चारों तरफ फैल रहे हैं और ये उन आत्माओं तक पहुंच रहे हैं जो आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन संबंध तो है आत्मा का, आत्मा के साथ संबंध. और ये संबंध स्नेह, शांति और शक्ति का है. I send out vibrations of peace and love to that soul. Om Shanti.
1: Om Shanti. Thank you so much. बहुत कुछ हम अभी तक अपने दर्द के लिए करते आए हैं. आज ये प्रयास भी करके देखें और फिर देखें कि कैसा हम महसूस करते हैं. आपसे अभी विदा लेते हैं. अवेकनिंग में आगे भी बहुत सी बातें होती रहेंगी. ओम शांति.

0: श्रोतेहो, रेडिओ मनभावनच्या कार्यक्रमांबद्दल आपले अभिप्राय देण्यासाठी आम्हाला फोन करा 9284499433 ह्या क्रमांकावर, किंवा व्हॉट्सअप करा 9922337361 ह्या क्रमांकावर.
1: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में बातें मुलाकातें. इस कार्यक्रम में आज के हमारे खास मेहमान संजय जी हैं, जिनसे हम लोग बातें करेंगे, और एजुकेशनिस्ट है. और मुझे अच्छा लगा जब उनसे हमने बातें की कि किस तरह से हम लोग टॉक करेंगे, किस विषय को लेकर बातचीत करेंगे. तो संजय जी का बहुत ही अच्छा एक व्यू था कि उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में जिस तरह से टीचर्स और बच्चों ने जो चैलेंजेस फेस किए हैं, उस विषय को लेकर हम लोग बातचीत कर सकते हैं, और नई चीज़ें क्या कर सकते हैं, इस विषय को लेकर बातें करेंगे. तो आप सभी की तरफ से संजय जी का आज के शो में बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार, कहते हैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप वर्तमान में कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं, थोड़ा बताइए, अपने लोकेशन के बारे में भी बताइए.
2: सर, फिलहाल मैं सूरत में हूँ और 26 साल से मैं सूरत में ही कार्यरत हूँ. फिलहाल गणित का टीचर हूँ, 11वीं-12वीं के बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ.
1: जी जी.
2: और मैंने 25 साल से मैं इस लाइन में हूँ, और मैंने इस दौरान CBSE के बच्चों को पढ़ाया है, ISC के बच्चों को पढ़ाया है, गुजरात बोर्ड के, स्टेट बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया है. और मेरे ये सफर बहुत ही आनंददायी और बहुत ही रिच रहा है. मैंने काफी कुछ सीखा है पढ़ाने के दौरान. मेरा अनुभव सीखने का ज्यादा रहा है, मेरे ख्याल से मैंने सीखा ज्यादा है इस दौरान. बहुत मजेदार सफर रहा है, काफी कुछ सीखने को मिला.
1: जी जी जी, बहुत ही अच्छा लगा है और बहुत बहुत खुशियाँ आपको. और बच्चों के साथ जितना आप रहते हैं उतना सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं, तो नेचुरली एक अलग माहौल बन जाता है और एक जो है अलौकिक रिश्ता भी बन जाता है बच्चों के साथ में. भले बच्चे कहीं से भी आ जाते हैं, लेकिन जब तक आपके पास रहते हैं तो वो आपके बच्चे बनकर रहते हैं और आप उन्हें अपना समझ के पढ़ाते हैं, तो निश्चित तौर पर एक जुड़ाव बन जाता है. और ये जुड़ाव जो है हमें बहुत जो है सुकून देता है. कोई नौकरी हम लोग करते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ें रहती हैं, बॉसिज्म की बात आती है और ओनर्स वगैरह की बात आती है. यहाँ पर वो चीज़ें नहीं रहती हैं विद्या में या स्कूल एजुकेशन में, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं. यहाँ पर सिर्फ लेन देन होता है, बच्चों को हम पढ़ाते हैं, बच्चों से हम कुछ सीखते हैं, तो ये एक अलग चीज़ आता है यहाँ पर जो और फील्ड में नहीं है. तो आइए इसी को लेकर हम लोग बातें करेंगे, लेकिन मैं एक छोटा सा गीत जरूर सुनाना चाहूंगा जो बहुत ही प्यारा सा है, और इस गीत को आपको डेडिकेट करता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे.

0: नमस्कार, फिर से एक बार संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस गीत के माध्यम से। और हमारे
1: नमस्कार।
0: साथ रोशनी जी भी जुड़ गई हैं। रोशनी जी मणिपुर से हैं और एजुकेशन फील्ड में ही वो भी सेवा देती हैं, और साथ ही साथ संगीत के साथ उनका बड़ा लगाव है, म्यूजिक उनका पैशन है। बड़ा अच्छा लगता है जब भी वो आ जाते हैं। तो आइए संजय जी, मैं चाहूँगा कि जैसे कि अभी हम लोग धीरे धीरे लॉकडाउन अनलॉक होते जा रहा है, और हम लोग जो है अपने फिर से पहले वाले प्रारूप में आने की कोशिश में लगे हुए हैं, और कुछ नियमों का पालन करते हुए। अभी मैं चाहूँगा कि जैसे लॉकडाउन और अभी जो सिचुएशन है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो टीचर्स और बच्चों ने चैलेंज फेस किया है इस दौरान, इस एक साल के दौरान, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप बातें बताइए, अपना अनुभव सुनाइए।
1: रमेश जी, आपने एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न किया है। लॉकडाउन जो है वो पूरे विश्व के लिए एक नई स्थिति थी। इसके लिए हम पहले से तैयार नहीं थे, कोई भी तैयार नहीं था। लॉकडाउन के दौरान जो ऑनलाइन एजुकेशन पर इतना जोर दिया गया, और टीचर्स ने, बच्चों ने, पेरेंट्स ने, स्कूल ने एक दूसरे के साथ में मिलकर इस चीज़ को कैसे बेहतर और बेहतर बनाया जाए इस पर जोर दिया। लेकिन स्कूल का जो काम है, स्कूल का जो पर्पस है, वो एकेडमिक से, शिक्षा से बहुत बहुत ऊपर है। वहाँ पर सिर्फ किताबें ज्ञान नहीं है, पढ़ाना ही नहीं है, उसके अलावा भी बच्चे स्कूल में जब जाते हैं तो वो सैकड़ों नई चीज़ें सीखते हैं। ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो आगे जीवन में बहुत काम में आ रही हैं। मैं दो तीन चीज़ बताना चाहूँगा। जब रिसेस में बच्चे खाना खाते हैं तो वो एक दूसरे के साथ में अपना डब्बा शेयर करते हैं। मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स पीरियड और रिसेस जो होता है, लंच टाइम जो है, वो बच्चों का सबसे सबसे मज़ेदार समय होता है स्कूल के दौरान। तो उस दौरान जब बच्चे आपस में हिल मिलकर खाना खाते हैं तो वो ऊंच नीच का भेदभाव नहीं देखते हैं, वो जाति पाति नहीं देखते हैं। आप हम सब एक हैं, हम सब साथ में हैं, मिलकर वो खाना खाते हैं। ऐसे जब वो खेलते हैं तो डिसिप्लिन तो वो सीखते ही हैं, लेकिन डिसिप्लिन अनुशासन के साथ साथ वो एक चीज और सीखते हैं कि हार जीत जो है वो अस्थाई है। आज मैं जीता हूं, कल वो जीतेगा, या आज मैं हारा हूं, कल वो जीतेगा। और लगातार प्रयास चलता रहना, हमारी टीम कैसे जीते, हम कैसे आगे बढ़े, अपने को कैसे डेवलप करना है, उसके ऊपर वो कहीं रुकता नहीं है, वो निराश नहीं होता है। ऐसे ही कक्षा में जब वो बैठे रहते हैं बच्चे, तो वो ये नहीं देखता कि मेरे बाजू वाला बच्चा हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है, वो दोस्त है, वो एक है। ये हमारे भारत का कल्चर रहा है, हमारे भारत की संस्कृति रही है कि स्कूल जो है वो शिक्षा के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें बच्चों को सिखा रहा है जो आगे जाके जीवन में उसको काम में आएगा। जो हर महीना होने वाली कसौटियां हैं, टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, यूनिट टेस्ट हैं, ये जो परीक्षाएं होती हैं समय समय पर, ये बच्चों को आने वाले समय के लिए तैयार करते हैं कि जब वो फील्ड में जाएंगे, जब वो काम करने जाएंगे, तो वहां पर भी उनको इसी तरह से काम दिया जाएगा। जैसे कि कल उनको प्रेजेंटेशन देना है, बैलेंस शीट बनाना है, रिपोर्ट बनाना है, सबमिशन करना है, तो ये सारी चीजों के लिए एक तरीके से स्कूल उनको तैयार कर रहा है। तो स्कूल का जो रोल है वो सिर्फ पढ़ाने तक सीमित नहीं है, इसके बियॉन्ड भी बहुत ज़्यादा है। लॉकडाउन के दौरान मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमने कुछ हद तक पढ़ाई पर जोर दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख पाए, और ये समय 10 महीने का इतना लंबा होने के कारण अब जाके वो बच्चे थक गए हैं, जिसको हम लोग फटिग बोलते हैं। वो मानसिक तौर पर थोड़ा थक गए हैं, वो एक ब्रेक चाहते हैं। वो ब्रेक इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो अपने दोस्तों को मिस कर रहे हैं, वो खेल कूद को मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें लॉकडाउन के दौरान नहीं हो पाई। वो सिर्फ घर के चार दीवारी में बंद हो गए, या फिर अपने बिल्डिंग के कैंपस तक ही सीमित रह गए। तो अब धीरे धीरे वो चिड़चिड़े से हो गए हैं, वो थोड़े झगड़ालू हो गए हैं। ये उनका बेसिक नेचर नहीं है, लेकिन क्योंकि 10 महीने का इतना लंबा समय निकला है, ना वो किसी अपने दोस्तों से मिल पाए हैं, ना बातचीत कर पाए हैं, और जो स्कूल की जो मस्ती है, स्कूल का जो वातावरण है, उसको जो वो मिस कर रहे हैं, उसके कारण ये मैं सोचता हूँ कि ये सारी चीजें तो आनी थी। और जब अनलॉक हो रहा है अभी, अब जैसे जैसे बच्चे स्कूल में जाएंगे, तो टीचर्स के लिए ये ये और बड़ा चैलेंज हो जाएगा स्कूल के लिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी कि बच्चे जब एकदम से बाहर आएंगे और स्कूल पहुंचेंगे तो उनको किस तरीके से हैंडल करने का, क्योंकि जो लॉकडाउन की जो इन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है कि हमको क्या क्या चीज़ों की सावधानी बरतनी है उसका भी उनको ध्यान रखना है। और जो मिलने की खुशी है बचपन में एक दूसरे दोस्तों से जो मिलते हैं उसको भी उनको संभालना है। तो ये चैलेंज था। एक चैलेंज और इंडिया ने, हमारे देश ने जो फेस किया मेरे हिसाब से, हम लोग तो शहर में रहते थे, हमको लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी सफल रहा, लेकिन जब अब शहर से थोड़ा सा बाहर की तरफ जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ नेटवर्क का इशू है, उनके पास में लैपटॉप नहीं है, मोबाइल फ़ोन नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, पूरे घर में दो बच्चे हैं, तीन बड़े लोग हैं, एक मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल है जिसके अंदर टेलीकास्ट हो सकता है, लेकिन पापा अगर काम से गए हैं, खेत पर गए हैं, दुकान पर गए हैं तो वो अपना मोबाइल साथ में लेकर जाएंगे, तो बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा। एक तरीके से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था इस सब चैलेंज के लिए, लेकिन फिर भी इन परिस्थितियों में युद्ध स्तर पर जो हम तैयारी कर सकते थे उतना किया, हर एक ने अपने तरफ से पूरा योगदान दिया है, पेरेंट्स ने भी कोऑपरेट किया है, सेक्रीफाइस किया है, बच्चों ने भी सेक्रीफाइस किया है, कोऑपरेट किया है, और टीचर्स का जो चैलेंजेस था वो सबसे बड़ा था, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स को तो कंप्यूटर चालू करना भी नहीं आता था, और वहाँ से आगे बढ़कर कैसे अपने लेसन को बच्चों तक पहुँचाने का, पढ़ाने का तरीका बदल गया, समझाने का तरीका बदल गया, तो ये बड़ी विषम स्थिति थी जिससे हमारा देश बहुत अच्छी तरह से उभर के बाहर आया है, और अब टीचर्स ने दौड़ना सीख लिया है, तो मेरे ख्याल से हम ये सफर अच्छी तरह से तय कर पाएंगे।
0: संजय जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में आपने शेयरिंग किया, और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं इमीडिएट वाली बात होती है, और बहुत जल्दी उन चीज़ों को करना इतना संभव भी नहीं था, और यहाँ पर टेक्निकल इश्यूज हैं, जैसे आपने बताया कि गाँव के बच्चे हैं तो वहाँ पर डिवाइसेस उनके पास नहीं है, जहाँ पर डिवाइसेस हैं तो वो अपने घर के लिए यूज़ करेंगे पहले, तो बच्चों को तो नहीं देंगे, ये भी एक चीज़ें सामने आई थी, और ऐसी कई चीज़ें हमारे बीच में आती हैं जिसको देखकर हमें लगता है कि निश्चित तौर पे हमें जो है उसके लिए पूरी तैयारियां और भी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी इस दौरान मैं चाहूँगा कि काफ़ी कुछ जैसे चैलेंजेस आते हैं तो हम लोग कुछ सीखते भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि लर्निंग क्या क्या हुआ वो भी थोड़ा बताइए।
1: लर्निंग तो मैं कहूँगा कि बहुत बहुत बहुत सीखा, सबने सीखा, पेरेंट्स ने भी सीखा, बच्चों ने भी सीखा, स्कूल ने सीखा है, जो साधन है उसको कैसे हम अवसर में बदल सकते हैं, उसका कैसे पूरा उपयोग कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में एक नियम आया है वो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेस, मतलब जो साधन हमारे पास में उपलब्ध हैं उन साधन को हम किस तरीके से बेहतर और उपयोग में ला सकते हैं, ये हमको सीखा इस दौरान। बच्चों ने सीखा कि कैसे एक टक एक साथ पौन घंटा, एक घंटा, तीन घंटा, चार घंटा क्लासेस के हिसाब से शांत होकर लैपटॉप के सामने बैठना है, उस पर गेम्स नहीं खेलना है। पेरेंट्स को भी, अभी तक पेरेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट था बच्चों की एजुकेशन में वो बहुत कम था, पेरेंट्स का बहुत से पेरेंट्स का ऐसा मानना था कि हमने बच्चों को स्कूल में भेज दिया तो उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, जब बच्चा घर पर पढ़ाई कर रहा है, तो छोटे बच्चों के केस में विशेष तौर पर मैं सोचता हूँ 8वीं तक के बच्चे तो ऐसे थे जिनके पेरेंट्स उनके मम्मी या पापा या दादा या दादी या बड़ा भाई बहन उनके साथ पे बैठा रहता था ये निगरानी रखने के लिए कि वो ढंग से पढ़ाई कर ले। वो उनके मास्टर नहीं बन रहे थे, वो कोई रिंग मास्टर नहीं बन रहे थे, लेकिन उनकी चिंता थी कि टीचर जो भी प्रयास कर रही है उस प्रयास में वो सफल हो, मेरा बच्चा कहीं पीछे नहीं रह जाए, इन्वॉल्व हो जाए। तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इस दौरान देखने को मिला, ये नई चीज है जो पेरेंट्स ने देखी, और पेरेंट्स को ये भी पता लगा कि मेरे बच्चे में क्या खूबी है और क्या खामी है। उनको ये भी पता लगा कि जो टीचर्स हैं, जो स्कूल है, वो अपनी तरफ से कितना प्रयास करते हैं, एक एक बच्चे को संभाला, एक क्लास में 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं कहीं पर, उन बच्चों को एक साथ बांधे रखना बहुत बहुत मुश्किल कार्य है, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, और वो भी तब जब आप आमने सामने नहीं हैं, एक माध्यम से आप जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप जुड़े हुए हैं। आपको नहीं मालूम कि सामने वाला बच्चा भी सोते हुए पढ़ाई कर रहा है, खाना खा रहा है, घूम रहा है, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी टीचर्स अपने मकसद में लगे हुए हैं। किसी न किसी तरह हम जो समझाना चाहते हैं वो बच्चों तक पहुंच जाए, बच्चे समझ जाए और उनका ग्रोथ हो जाए, ये उनका एकमात्र लक्ष्य था। मैंने टीचर्स को देखा है जिन्होंने, जिनके पास साधन नहीं थे, उन्होंने अपने मोबाइल को हवा में टांग दिया, रस्सी से बांध दिया, लकड़ी से बांध दिया, नीचे वो कॉपी पर नोट्स बना रहे हैं, एक एक बात एक एक बच्चे का नाम लेकर पूछते हैं, बेटा समझ में आया ना, बेटा समझ में आया ना, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो ये काफी चीजें सीखी और बहुत चैलेंजिंग था और इंटरेस्टिंग भी था। इंटरेस्टिंग इसलिए था और संतोषप्रद इसलिए है क्योंकि सबने उस चीज को अपना कॉमन मिशन बना दिया। एक बहुत अच्छी कहावत है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कब ग्रो करता है, वो तब ग्रो करता है जब हम एक लक्ष्य के पीछे लगते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक अपने अपने लक्ष्य के पीछे जा रहा है, ऐसा नहीं, अपनी संस्था का एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य के लिए हर कोई काम कर रहा है, तब जाकर वो संस्था, वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। तो ये भी ऐसा ही एक दौर था जब पूरा देश, पूरा स्कूल, हर बच्चा, हर एक जना जो उसमें इन्वॉल्व था, प्रिंसिपल से लेकर टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स, हर कोई इन्वॉल्व था कि कैसे हम बच्चों को सही तरीके से शिक्षा दे पाए। काफी चीज सीखी लेकिन अच्छा था ये दौर, काफी बढ़िया था, काफी कुछ सीखने को मिला।
0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। चलिए, संजय जी ने अपनी दिल की बातें हमारे साथ शेयर किया कि चैलेंजेस जो था लॉकडाउन के पीरियड में, तो बहुत सारे चैलेंजेस थे डिवाइसेस, टेक्निकल चीज़ों का, और टीचर्स को भी इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था तो उनको भी ये चीज़ें सीखने को मिला, और बच्चों को भी ये चीज़ें नहीं पता था कि हमें इस तरह के घर में बैठ कर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो दोनों जगह से लर्निंग्स तो काफ़ी हुए लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही थे और लर्निंग्स भी उतने ही थे। मुझे लगता है कि हमें सीखने को भी काफ़ी मिला और कुछ चैलेंजेस थे उस सीखने में, वो चैलेंजेस में हमारे सामने आकर हमें जो है कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ें सिखाने की कोशिश की। तो आइए आगे बढ़ते हुए, विक्रांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, तो मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद फिर संजय जी से जुड़ेंगे और एजुकेशन में नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान जो चीज़ें हुई और जो पढ़ाई हुई उसमें बच्चों ने क्या सचमुच पढ़ाई हुई, ये भी बात है। विक्रांत जी सुनाइए।
2: पहले तो मेरा प्रणाम और नमस्कार।
0: नमस्कार,
2: आइए मैं आपके बीच एक गणेश वंदना गाइए, गणपति जग वंदन।

0: सुबह सुबह प्रार्थना सुनने में अच्छा लगता है, भजन सुनने में अच्छा लगता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। संजय जी, फिर से मैं आपको जोड़ना चाहूँगा, जैसे कि अब क्या सचमुच बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हुई या नहीं, ये आप अपने अनुभवों को शेयर कीजिए, अगर हुई है तो किस तरह के हुई है,
1: क्या सीखा, इसको हम दो परिप्रेक्ष्य में देखना चाहेंगे।
0: जी जी जी,
1: बच्चों ने लैपटॉप चलाना सीखा। अभी तक हम बच्चों को लैपटॉप नहीं देते थे, हाथ मत लगा। बच्चों ने उसको स्टार्ट करना सीखा, उस पर लॉगिन करना सीखा, उस पर टाइपिंग करना सीखा, उसमें वॉल्यूम सेट करना सीखा, उसमें म्यूट अनम्यूट करना सीखा, उसमें अपना असाइनमेंट टाइप करना सीखा, जो उनको होमवर्क दिया उसको फोटो लेना, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना, उसको भेजना, ये सीखा बच्चों ने कि अगर टीचर्स नहीं है, सामने से पढ़ा रहे हैं तो भी हमको इसको करना है, ये उन्होंने सीखा। तो सीखना सिर्फ किताबी ज्ञान है ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। दूसरी बात, एजुकेशन सिस्टम उसकी एक तरीका होता है, कोई भी नई चीज जो हम बच्चों को सिखाते हैं वो कम से कम 2 साल और अधिकतम 3 साल तक कवर होती है। मैं एक बात बताता हूँ, जैसे परसेंटेज बच्चों को सिखाना है, परसेंट प्रतिशत कैसे निकालना है, तो प्रतिशत 7वीं में बच्चों को सिखाया और उसी का कुछ एडवांस वर्जन, उसी की कुछ एप्लीकेशन बच्चों ने 8वीं में और सीखी। उन्होंने ज्योमेट्री में अगर ट्रायंगल सीखा है 1 साल, तो अगले साल ट्रायंगल्स और उसके आगे क्वाड्रिलेटरल्स और सर्कल सीखेंगे। इस साल एलजेब्रा सीखा है तो नेक्स्ट ईयर, ऐसा नहीं कि एलजेब्रा 1 साल आया और खत्म हो गया। तो इस साल अगर बच्चे कुछ कम ज्यादा भी सीख पाए तो ऐसा नहीं है कि उनका जीवन या उनकी पढ़ाई व्यर्थ हो गई या आगे वो कोप अप भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि वो 3 साल तक कम से कम चलता रहेगा और ये टीचर्स भी उस चीज को समझ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो कवर अप हो जाएगा अगर कहीं पर कुछ कमी रह गई है तो। दूसरा एक विषय यह है कि सबसे ज्यादा परेशानी किनको भी, तो हम बच्चों को 3 लेवल में डिवाइड करते थे। एक जो बहुत होशियार है, जो सेल्फ मोटिवेटेड है, खुद ही अपने बेसिस पर कर लेते हैं, एक तो वो बच्चे, एक वो बच्चे हैं जो एवरेज है, जिनके मार्क्स जो है वो मतलब 50 से लेकर 60-65 तक आ रहे हैं, ऐसे बच्चे हैं। और एक वो बच्चे हैं जो बहुत स्लो लर्नर्स है, उनको 2-3 बार ऐसा कराना पड़ता है। सबसे ज्यादा समस्या इन बच्चों के साथ में हुई, जो बच्चे स्लो लर्नर्स हैं। लेकिन भगवान की दया से मैंने जितने भी वीडियो देखे, मैं जिन जिन स्कूल्स में गया है, मैंने जहां पर भी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं, मैंने देखा है टीचर्स ने बहुत धैर्य के साथ में बहुत अच्छे वीडियोस पढ़ाए हैं। उन्होंने जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए, उनकी जो मानसिकता है बच्चों की इस समय, उसको समझ कर उन्होंने पढ़ा है। एक एक चीज को 2-3 बार उसको समझाने की कोशिश करेंगे। फिर भी मेरा ये कहना है कि अगर कुछ कमी रह गई है तो आने वाले दिनों में हम इसको पूरा कर सकते हैं। 365 दिन होते हैं एक साल में, उसमें से स्कूल लगता है 220 दिन, 220 दिन में से 40 दिन परीक्षा के चले जाता है ना, जब हम एग्जाम देते हैं, मतलब 180 दिन हमारे स्कूल में पढ़ाई हो रही है। उन 180 दिन में से 30 दिन किसी न किसी एक्टिविटीज में, प्रोग्राम की तैयारी में, प्रिपरेशन में चले जाते हैं। जैसे स्पोर्ट्स डे 1 हफ्ता उसमें चला गया, स्कूल का वार्षिक उत्सव है तो उसमें हमारा समय चला जाता है, कभी जन्माष्टमी मना रहे हैं, कभी 26 जनवरी है, 15 अगस्त की तैयारी चल रही है, परेड की तैयारी चल रही है। तो कुल मिलाकर मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि जो कोर टीचिंग पढ़ाने का जो दिन होते हैं वो 150 दिन होते हैं, जो 50% से भी कम है। तो आने वाले दिनों में, अगला साल जो 2021-22 होगा, इसमें अगर हम हमारी वेकेशन को कुछ स्क्वीज कर सकें, हमारा टाइम टेबल जिसको हम एकेडमिक टाइम टेबल बोलते हैं, उसको अगर हम प्रॉपरली डिवाइस कर सकते हैं, प्रॉपर प्लानिंग कर सकें, तो जो कभी इधर रह गई उसको हम पूरा कर सकते हैं। दूसरा, टीचर्स ने क्या सीखा, तो टीचर्स ने ये सीखा कि ऑनलाइन हम कैसे पढ़ा सकते हैं, ऐसी कौन सी भाषा में हमको पढ़ाना है कि बच्चों तक मेरा मैसेज पहुंचे, बच्चों तक वो कंसेप्ट पहुंच जाना चाहिए। बार बार देखो ऑनलाइन एजुकेशन के तीन बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिसको हम बोलते हैं कि इसको ध्यान में रखना चाहिए। उसमें से एक है उनको एंगेज करने का। बच्चे अगर एंगेज नहीं है तो वो भाग जाएंगे। जैसे आपके प्रोग्राम में रमेश जी आपने विक्रांत जी को बुलाया, इन्होंने भजन किया, रोशनी जी थे, उसके पहले आपने गाना सुनाया, तो इस तरीके से एंगेजमेंट बढ़ता है। तो टीचर्स ने भी ऐसा प्रयास किया, बच्चों को बीच में कुछ चुटकुले सुनाए, कुछ क्विज किया, कुछ एनिमेशन दिखाया, कुछ वीडियो दिखाया, कुछ इधर उधर की बातें करी। तो एक पहला होता है एंगेजमेंट, है ना, उनको एंगेज करो अपने प्रोग्राम में, क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं, ये एक सीरियस वर्क है ऐसा। तो अगर बच्चे एंगेज नहीं होंगे, अगर आपसे जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो बच्चे वो भाग जाएंगे वो ऐसा। तो एंगेज करने का दूसरा होता है उनको एंटरटेन करने का, किसी ने किसी तरीके से उनका मूड बनाए रखने का, उनको जागरूक कर रखने का। तो हमको ये कोशिश करनी पड़ती है कुछ हंसी मजाक इधर उधर की बातें करने का ऐसा। वो कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो उनको भेज दिया, TIR भेज दिया, कुछ कार्टून भेज दिया, कुछ यूट्यूब से निकाल कर कुछ हंसी मजाक की बात कर ली। कभी कभी कई प्रश्न जिसको बोलते हैं पहेलियां जो है वो पूछ लेते हैं बच्चे टीचर्स, ताकि बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो एंगेज हो गया, एंटरटेन हो गया, एजुकेट तो आप कर ही रहे हैं, पढ़ा तो रहे हैं, वो तो हमारा मुख्य उद्देश्य। और तीसरा होता है उसको इवेल्युएट करने का, उसको जांचने का, परखने का कि बच्चे किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है। अब इवेल्युएशन करना मतलब उनको परखना, ये सबसे चैलेंजिंग काम होता है साहब, क्योंकि जैसे ही आपने बोला कि कल मैं टेस्ट लूंगा, तो अगर बच्चे को नहीं आता है तो वो चीटिंग के तौर पर चला जाता है, इधर उधर से देख कर लिखने की कोशिश करता है। गूगल पर बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, उसके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल है। तो मैं तो जैसे मैथ्स का टीचर हूँ, गणित पढ़ाता हूँ, तो मैं तो ये वर्ड ही नहीं यूज करता हूँ कि मैं टेस्ट ले रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ कि कल हमने ये सीखा था, लेट अस रिवाइज इट। तो मैं क्या करता हूँ, कल जो पढ़ा उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन दे दिए बच्चे को, बोला लेट मी सी कि सबसे पहले तीन करने वाले कौन है, ऐसा कि बच्चों ने सही किया है वो मुझे देखना है। मैं टेस्ट ले रहा हूँ लेकिन मैंने टेस्ट वर्ड नहीं यूज किया इस तरह। तो बच्चे एक चैलेंज के तौर पर लेते हैं उसको, उनके बीच में होड़ लगी हुई आस पास, लेकिन फिर भी उनकी होड़ लगी हुई, वो उसको सॉल्व कर दें। अब मुझे पता लग जाता है कि क्लास में अगर 60-70% बच्चों ने उसको सॉल्व कर लिया, मतलब क्लास का एवरेज आ गया, अब हम इस कंसेप्ट को रिवाइज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो परखना, ये इवेल्युएट करना कि बच्चों ने पूरा समझा है या नहीं समझा, ये सबसे चैलेंजिंग काम है। इसलिए मेरे को लगता है कि अगर आप 1.5 घंटा पढ़ा रहे हो, अगर आपके पास में 40 मिनट का पीरियड है, तो कम से कम 15 मिनट आप पहले जो पढ़ाए, पहले दिन जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करें, उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछें, ताकि वो इन्वॉल्व महसूस करें। क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है तो बच्चों को ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को आता है इसका आंसर। इजी क्वेश्चन पूछना, इजी क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, उसके दो फायदे हैं। अगर मैंने को लगता है कि बच्चा थोड़ा डल है, तो मैं उससे पर्पसफुली एक इजी आसान क्वेश्चन पूछता हूँ। आसान प्रश्न पूछने से उसको मन में यह तसल्ली रहती है कि मैंने आंसर दिया। उसको नहीं मालूम कि प्रश्न आसान था या मुश्किल था, कठिन था, उसको उसने प्रश्न पूछा गया और उसने उसका जवाब दिया, उसको बहुत अच्छा लगता है, ही फील हैप्पी। दूसरा वो इन्वॉल्व हो जाता है तुरंत कि टीचर मेरे से भी पूछ सकती है, मैं इग्नोर नहीं हूँ क्लास के अंदर, टीचर ने मुझसे पूछा है और टीचर का मेरी तरफ ध्यान है, मेरे को भी ध्यान देना है, हो सकता है अगली बार फिर से टीचर बेस से ही पूछ ले, बाकी बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से हर रोज आपको इवेल्युएट करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, सिलेबस भी खत्म करना है, रिविजन भी करना है, बच्चों को एंगेज भी करना है। तो अगर हम इन तीन चीजों पर ध्यान दें, उनको एंगेज करो, उनको एंटरटेन करो, एडुकेट करो और इवेल्युएट करो, तो मेरे ख्याल से हम ऑनलाइन को ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। अब आपका जो प्रश्न था कि बच्चों ने कितना सीखा था, तो जो कमजोर बच्चे थे उनको सबसे ज्यादा परेशानी हुई है, क्योंकि स्कूल में तो क्या होता है, जैसे आपने छोटे बच्चों को बोला ये बोर्ड से आपको कॉपी करना है, ये लिखना है, अब घर में बच्चा नहीं लिख पाया तो पेरेंट्स को वो करना पड़ रहा है। स्कूल में तो टीचर क्या है, पर्सनल अटेंशन देती है, उसके पास चले गए, बेटा क्या नहीं समझ में आया, देखो इसको ये करने का है, इसको ऐसा कर दो, ये तुमने गलत कर दिया, इसको ठीक कर दो, वो पर्सनल अटेंशन हम दे सकते थे स्कूल में। लेकिन ये जो एवरेज और बिलो एवरेज वाले जो बच्चे हैं, मैं बिलो एवरेज नहीं बोलता हूँ, मैं वर्ड यूज करता हूँ स्लो लर्नर्स, इनको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, इनको रिविजन की सपोर्ट पड़ती है। तो स्कूल में ये सुविधा थी कि टीचर उन बच्चों को पर्सनल अटेंशन दे सके, उनके पास में जाकर उनको समझा सकते थे। लेकिन ऑनलाइन में ये टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, टीचर की जो जिम्मेदारी है, वो बहुत हद तक पेरेंट्स ने जो है उसको पूरा किया। पेरेंट्स, मैंने मेरे घर में मेरी बेटी जो है वो अभी सेकंड स्टैंडर्ड में है, यही सूरत में पढ़ती है, तो उसकी मम्मी हमेशा उसके साथ में रहती है। तो अगर वो कुछ मिस कर जाती, कुछ नहीं लिख पाती है, तो उसको बोलती, देखो बेटा टीचर ने बोला ना तुम्हारे सवाल आधा रह गया, पहले इसको कंप्लीट कर लो। तो या फिर जब क्लास खत्म हो जाती है, उसको बोलती, देखो 15 मिनट में जो जो क्वेश्चन तुम्हारे बाकी रह गए ना वो कर लो, तो ये सेंटेंस तुम पूरा नहीं लिख पाए, ये पूरा लिख दो, ये स्पेलिंग तुमने गलत लिख दी बेटा, इसको 2 बार लिख लो। तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें बढ़ गया, ये मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि अभी तक पेरेंट्स इस चीज से दूर भाग रहे थे, वो बच्चों की परीक्षा मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे। उनका इंटरेस्ट ये था कि बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेज दो, उसकी फीस समय से जमा करा दो, अगर कोचिंग की जरूरत है तो उसको ट्यूशन टीचर लगवा दो, बस। लेकिन आज के दौर में पिछले 10 महीने में घर का कम से कम एक सदस्य तो अपने बच्चों के साथ में इन्वॉल्व है। इसमें उसने समझा है कि मेरे बच्चे का क्या स्तर है, मेरे बच्चे को 5 विषय में से कौन से विषय में इंटरेस्ट ज्यादा है, उसकी कौन सी रुचि ज्यादा है, वो अपने बच्चे को समझ पाया। और जो होशियार बच्चे थे उन्होंने तो खैर अच्छा किया है, और लर्निंग मेरे ख्याल से थोड़ा हैम्पर तो होता है, थोड़ा असर तो पड़ता ही है, स्कूल में नहीं है, ऑनलाइन का है, तो 20-30% तो कमी तो रह गई है। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे आपसे चर्चा करी मैंने, हमारे पास काफी समय रहता है साल के दौरान, तो हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं। नया सत्र जब चालू हो तो पहला 1 महीना हम रिविजन के तौर पर ले सकते हैं कि पिछले साल का जो है हम उसको रिवाइज करें, हाँ स्कूल का क्या हुआ उसको करके हम आगे बढ़ सकते हैं।
0: संजय जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, दोनों तरफा आपने बताया, बच्चों का और माता पिता का इन्वॉल्वमेंट जो है इस समय ज़्यादा हुआ, जो पहले नहीं हुआ करता था, क्योंकि रेगुलर स्कूल जाते थे तो इतना वो भी ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अभी क्योंकि घर से ही बच्चे पढ़ते हैं तो नेचुरली उनको एक जन को किसी न किसी को इन्वॉल्व होना ही पड़ता है उसमें। और मैंने देखा कि बच्चों के साथ साथ माता पिता भी बैठ कर उन्हें गाइड कर रहे हैं, उनके साथ वो भी सुन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये एक प्लस पॉइंट रहा जिसमें हम सभी को अच्छा लग रहा है, और खास करके टीचर्स को भी अच्छा लग रहा है कि बच्चे बच्चों के साथ माता पिता भी जुड़ गए हैं। हाँ, ये रोशनी भी जुड़ गए हैं। रोशनी जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच
0: जी। और आप मणिपुर में बच्चों को एजुकेट करते हैं, आपने क्या इनिशिएटिव नया किया है उसके बारे में बताइए। संजय जी भी यहाँ पर सूरत में बच्चों को पढ़ाते हैं, मैथ्स के टीचर हैं।
2: मैं साइंस पढ़ाती हूँ सर, संजय जी, और मैं बच्चों के लिए इनोवेटिव आइडिया बनाकर टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाती हूँ विदाउट स्पेंडिंग मच मनी, क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ वो ज़्यादातर जो स्टूडेंट आते हैं तो फैमिली बैकग्राउंड बहुत, तो उसके पास इतना पैसे भी नहीं है जो वो सब नोटबुक की या और जो एक्सपेंसेस है वो हैंडल कर पाए।
0: उनके यहाँ नेटवर्क इश्यू है रोशनी जी के पास, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं जो जुड़ पाऊँ, जितना भी जुड़ पाऊँ आपसे। तो वहाँ जो है मणिपुर में जो बच्चे बहुत गरीब हैं उनको पढ़ाते हैं, और उनका देखते हैं कि नोटबुक भी वो खरीद नहीं सकते, तो ऐसे बच्चों के लिए कैसे एजुकेशन देना है ये एक चैलेंजेस था। तो उन्होंने इनिशिएटिव ये लिया कि कुछ रैम्स वगैरह जो है उनके लोकल भाषा में बच्चों को बना के यूट्यूब के माध्यम से सुनाते हैं, कराते हैं। और स्कूल में जैसे कि कुछ डिवाइसेस होते हैं, टीवी वगैरह होता है, उसके माध्यम से भी बताते हैं, तो इससे बच्चों को जो है डायरेक्टली ऑडियो विजुअल मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूँगा कि एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे। ऑनलाइन लर्निंग का बेनिफिट

0: अगर मैं एक स्लो लर्नर हूँ, मैंने एक बार क्लास अटेंड करी, मेरे को वो नहीं समझ में आया, तो मेरे पास ये सुविधा है ऑनलाइन है कि मैं टीचर से उसकी रिकॉर्डिंग ले लूँ और उसको वापस रिवाइंड करके दो बार तीन बार जब तक मुझे नहीं समझ में आया मैं उसको समझ लूँ। ऐसा सुबह नहीं तो शाम को, सुबह अगर मैं बिजी हो गया तो शाम को कर लिया, शाम को मैं व्यस्त हूँ तो अगले दिन कर लिया। ये एक सुविधा ऑनलाइन कंटेंट में है ऐसा। दूसरा, उसमें हम ऑनलाइन में उसके साथ में कुछ एनिमेशन वगैरह ऐड कर सकते। टीचर ने एक जगह एक्सपेरिमेंट कर ली, 20 बच्चों ने उनको घेर लिया, तो बात बाहर के जो बच्चे उनको तो कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसा। लेकिन ऑनलाइन में सामने कैमरा लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, टीचर एक एक्सपेरिमेंट कर रही है, हर एक बच्चा उसको ध्यान से देख, उसको ऐसा लगेगा जैसे उसके प्रत्यक्ष उसके बिल्कुल सामने ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये इसके कुछ बेनिफिट है। लेकिन जो हम आमने सामने होते हैं, जब हम एक्चुअल क्लासरूम में स्कूल के अंदर जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों के हाव भाव देखने से टीचर को पता लग जाता है कि इसको समझ में आया है, इसको नहीं समझ में आया है, इसको अभी कुछ कंफ्यूजन है। तो ये एक प्रभाव पड़ता है कि जब हम सम्मुख रहकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे हमारे सामने हैं, तो टीचर को उनको देख कर उनको पता लग गया कि हाँ ये हमारा काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, मैं जो मैसेज जो चीज समझाना चाहती हूँ बच्चों तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। लेकिन ऑनलाइन में ये एक डिफिकल्टी है। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में हमको एक कंसेप्ट है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग मतलब हमको दोनों चीज को मिक्स करके पढ़ाना है। कुछ चीज ऐसी है जो ऑनलाइन बच्चों को हमको पढ़ाना है और कुछ चीज ऐसी है जो बच्चों को सम्मुख रखकर हमको पढ़ाना है। कोई भी लेसन क्यों नहीं हो, हम बच्चों को उसको पहले भेजें, बच्चे घर पर उस वीडियो को देख लें, उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को देख लें, यूट्यूब पर वो वीडियो है तो उसको देख लें, अगर लाइव लेक्चर है तो उसका रिकॉर्डिंग देख लें। उसके बाद में जब वो स्कूल में आते हैं तो वो ऑलरेडी एक लेवल तक तैयार है। जैसे मैं कल क्या पढ़ाने वाला हूँ, अगर मैंने आज बच्चों को बताया कि कल मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे और ये वीडियो की लिंक मैं उनको भेज देता हूँ, तो बच्चे क्या करेंगे, उस वीडियो को लिंक देख कर अगले दिन आते हैं। जब वो अगले दिन क्लास में आते हैं तो उनकी समझ काफी डेवलप हो जाती है और क्लास में उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। वो तैयार होकर आते हैं कि हाँ मुझे क्या प्रश्न पूछना है टीचर से। तो आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को मिक्स करके ही हम आगे बढ़ पाएंगे। इतना जो हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े हैं, अब हम सोचें कि 10 महीने के बाद टीचर्स को और बच्चों को बोला अब इसको भूल जाओ, अब तो आप स्कूल में आकर ही पढ़ने, ये तो गलत बात है। ये तो ऐसे ही हो गया था, साइकिल से जाता था स्कूल, अब मैंने बाइक चलाना सीख लिया है तो तब भी आप बोले कि नहीं सर आप बाइक रख दो, आपको तो स्कूल तो साइकिल सीख जाना, ऐसे नहीं चले। ये तो जब हमने नई चीज सीखी है और वो बेहतर है मतलब हम दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो इनको आगे साथ में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी भी मैं सोचूं कि मैं टीवी नहीं देखूं, मैं अभी सिर्फ रेडियो के माध्यम से ही चलूं तो वो नहीं चलेगा। सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखूं, मेरे को कलर टीवी HD टीवी नहीं यूज करना है तो दैट विल नॉट गो। टेक्नोलॉजी को हमको साथ में लेकर चलना है। टेक्नोलॉजी ने हमारा काम बेहतर बनाया है, आसान बनाया है, लेकिन टेक्नोलॉजी भी सब कुछ है ऐसा नहीं है। ऐसा टीचर्स का उसमें बहुत बड़ा रोल है, स्कूल का बहुत बड़ा रोल है। और इस संवाद के शुरुआत में हमने डिस्कस किया था, इस पर चर्चा करी थी कि स्कूल में बच्चा सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसके अलावा भी जीवन उपयोगी बहुत सारी चीजें हैं जो वो सीख रहा है
1: ऐसा ही बात।
0: तो अगर वो सिर्फ ऑनलाइन रहेगा तो ये बहुत सारी कमी उसमें रह जाएगी, वो कभी भी दूसरे बच्चों के साथ में सामंजस्य स्थापित करके आगे बढ़ना ये नहीं सीखेगा। टॉलरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, सोशल टॉलरेंस होता है, रिलीजियस टॉलरेंस होता है, इमोशनल टॉलरेंस होता है, ये वो कैसे सीखेगा। आज मेरे बाजू वाले बच्चे को छींक आ गई तो मैं स्कूल में हूं तो समझता हूँ कि हाँ ये ठीक है, अभी मैं अकेला रहता हूँ कोई छींकेगा मैं अरे आई विल रिएक्ट लाइक दिस, ये क्या है। मेरे साथ में आकर कोई अगर दूसरे धर्म का बच्चा बैठ जाएगा तो मुझे अजीब सा लगेगा, लेकिन स्कूल में जाता हूँ मेरे को सिखाते कि वो भी इंसान है, उसका भी एक मजहब है, उसको भी हमको पालन करना, उसका भी रिस्पेक्ट करना, उसका भी आदर करना। क्यों? क्योंकि स्कूल में हम लोग सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं अपना रहे, हम वहाँ जन्माष्टमी मनाते हैं तो ईद की भी छुट्टी है, वहाँ पर क्रिसमस का भी सेलिब्रेशन है, नए साल का भी सेलिब्रेशन।

0: डिप्रेशन है, सब है। हम नवरोज की भी छुट्टी हो रही है, वहां पर गुड़ी पड़वा भी मना रहे हैं, संक्रांत भी मना रहे हैं, तो सब चीज सीख रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि बच्चों को सिर्फ एक ही चीज के बारे में बता रहे हैं। तो पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें जो है वो ऑफलाइन, जब हम स्कूल में जाएंगे, बच्चे हमारे सम्मुख रहेंगे, तो हम सीखेंगे। लेकिन मेरा ये निवेदन है कि टीचर्स ने और बच्चों ने इतना लंबा सफर हमने तय किया है, तो इसको जाया नहीं करें। इस लर्निंग को, ये जो हमने सीखा है, इसको साथ में लेकर और बेहतर तरीके से हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये करना चाहिए। अच्छा, आप सोचो, एक मैं क्लास ले रहा हूँ, स्कूल जाकर बच्चे आ रहे हैं, 20 बच्चे में से 3 बच्चे आज एबसेंट है। अब अगले दिन वो स्कूल में आते हैं तो देर बेस्ड, उनको नहीं समझ में आता। लेकिन अगर मैं उस लेक्चर को रिकॉर्ड कर लेता हूँ, शाम को बच्चों के साथ शेयर कर लेता हूँ कि आज मैंने क्लास में ये पढ़ाया था, कल आने के पहले ये वीडियो देख कर आना, तो वो 3 बच्चे जब अगले दिन क्लास में आते हैं तो दे आर एट पार, वो बाकी बच्चों के समकक्ष हो गए। नहीं तो अगले दिन आकर आपको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या किया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों चीजों को मिक्स करके आगे चल रहा हूँ ना, जैसे हमको ब्लेंडिंग करके आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी भी एक चीज पर पूरी तरह से निर्भर होकर नहीं चल सकते, ऐसा मेरा मंतव्य है।
1: जी संजय जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि टेक्नोलॉजी के साथ लेके चलना है वर्तमान समय को देखते हुए। अगर लॉकडाउन अनलॉक हो जाता है, बच्चे स्कूल में आना शुरू कर देते हैं, तो अगर हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई जो चल रहा है उसको थोड़ा सा कम जरूर करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह से खत्म होगा, ऐसा नहीं होगा। और दोनों चीज़ें साथ साथ चलेगी तो निश्चित तौर पे जो बच्चे किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए तो उनके लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा, असेट रहेगा। तो आइए इसी बीच एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
2: तो आइए एक भजन आप लोगों के बीच, गुरु पर, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं।
3: गुरु बिन ज्ञान कहाँ

0: गुरु बिन ज्ञान का लाऊं।
1: कहना है
0: गुरु मेरा ईश्वर, गुरु परमेश्वर, गुरु मेरा माता भाग्य विधाता है, गुरु मेरा राखा, गुरु मेरा शाखा, गुरु मेरा भाग्य विधाता है, गुरु के चरण शीश झुकाऊं, गुरु बिन ज्ञान

ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर गुरु में सबका वास है। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर गुरु में सबका वास है। गुरु की कृपा जिस पर होती उसका बेड़ा पार है। गुरु की महिमा से दिन गाओ, गुरु की महिमा से दिन गाओ, गुरु बिन ज्ञान से ला।

0: चलिए, बहुत ही अच्छा लगा विक्रांत जी, बहुत ही प्यारा सा गीत और समय और विषय को देखकर आपने इस गाने को सुनाया तो अच्छा लगा हमें। अब आइए आगे बढ़ते हुए, आखिरी प्रश्न है हमारा। संजय जी, जैसे कि हम लोग एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों को हमने बलिवाती समझने की कोशिश की, और इस लॉकडाउन के चैलेंजेस और लॉकडाउन के बाद क्या चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में भी जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। अब मैं एक और सवाल, ये लास्ट सवाल ये है कि जो बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, मतलब लर्निंग डिसेबल है थोड़ा सा, उनको जल्दी से समझ में कोई चीज़ नहीं आता, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग उसके बारे में बताइए।
1: बहुत बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि जो बच्चे एनडी बच्चे हैं, लर्निंग डिसेबल, मेरे अनुभव में मैं उन बच्चों के लिए वर्ड यूज करता हूँ स्लो लर्नर्स। स्लो लर्नर्स इसलिए हैं क्योंकि कुछ बच्चों को एक बार सुनने से, एक बार समझाने से वो समझ जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको दो बार समझाना पड़ता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको तीन बार या चार बार आपको समझाना पड़ता है। अब जो बच्चे तीन बार या चार बार या पांच बार समझाने पर समझते हैं, वो बच्चे कक्षा में बाकी बच्चों से पीछे रह जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि दसवीं का भी अगर कोई बच्चा है तो 30 घंटे, 30 आवर्स, 30 घंटे अगर हम उसको शिद्दत से पढ़ा दें, नया नहीं, जो उसने पहली से लेकर 9वीं 10वीं 10वीं तक जो सीखा है, 30 घंटे में हम उसको बाकी बच्चों के साथ में ला सकते हैं, और ये संभव है। मैंने पिछले 25 साल का मेरा टीचिंग लाइन का अनुभव है, मैं करीब 12 साल से इस चीज पर काम कर रहा हूँ, और मैंने देखा है कि जो हम बच्चों को एलडी के टैग से लेबल कर देते हैं, लेकिन स्लो लर्नर्स, और उनको ये समझाओ कि बच्चे आपकी प्रवृत्ति एक बार में नहीं समझने की है, लेकिन दो बार में समझ में आ जाएगा, तीन बार में समझ में आ जाएगा। तो अगर हम ये करें तो कोई सा बच्चा हो, वो दिमाग से, मतलब वो बुद्धू नहीं है, दिमाग पैदल नहीं है, वो उसको हम समझा सकते हैं, उसको बाकी बच्चों के पास ला सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम जो बच्चे गणित में और लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में जो वीक रह जाते हैं, कमजोर रह जाते हैं, हम उन बच्चों को कमजोर है ऐसा लेबल कर देते हैं। लेकिन यही बच्चे जब मातृभाषा में, उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है या हिंदी में है, उस भाषा में जब हम उनको समझाते हैं, उस प्रश्न को समझाते हैं या उस पढ़ाई को कराते हैं, तो बच्चे बहुत तेजी से उस चीज को सीखते हैं और आगे कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमको इस चीज को थोड़ा, हमारा नजरिया बदलना पड़ेगा कि मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा मैथ्स में वीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सपोज करो मेरा बच्चा 9वीं में है और उसको गणित समझ में ही नहीं आ रहा। उसको इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि 9वीं का जो गणित है, वो जो विषय है, उसके जो सिद्धांत है, वो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में जो उसने पढ़ा उसके ऊपर आधारित है। तो अगर वहां पर कोई कमजोरी रह गई तो वो 9वीं में उसको नहीं समझ में आएगा। अब टीचर्स को, पेरेंट्स को वहां पर ध्यान देने का है, 30 घंटे का समय निकालो, वो जो कक्षा में गणित 10 कटो सा, वो अगर तीसरी कक्षा में है तो 30 घंटे उसको लगेंगे, चौथी कक्षा में गुणित 30 घंटे, 30 आवर्स का मैंने ऐसे देखा है कि 30 आवर्स अगर हम बच्चों के लिए निकालें तो वो निश्चित तौर पर बाकी बच्चों के पैदल हो जाएगा, उससे बेहतर भी निकल सकता है। मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा है जो गणित से एकदम दूर भागते थे, मैं गणित की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा विषय रहा है ऐसा, तो वो बच्चे जो बिल्कुल दूर भागते थे, नहीं सर मेरे को तो करना ही नहीं है, कई बच्चे ऐसे बोलते हैं सर पहला मौका मिला तो मैं गणित छोड़ दूंगा। अगर गवर्नमेंट हमको ऑप्शन क्यों नहीं देती कि हम गणित ड्रॉप कर रहे हैं, किसने गणित बनाया ऐसा प्रश्न पूछते, किसके दिमाग में आया कि ये चैप्टर्स इंक्लूड करना चाहिए, ऐसे प्रश्न करते। तो बच्चा मुझे इनडायरेक्टली ये बोलना चाहता है कि आप जो ये पढ़ा रहे ना, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, या तो इसको मैं जिस भाषा में समझ सकता हूँ, मैं जिस तरीके से समझ सकता हूँ उस तरीके से समझाओ, तो मैं इतना कुछ करूंगा, नहीं तो मेरे लिए बेकार है। जैसे अभी विक्रांत जी ने भजन गाया है ना। अब अगर मेरे को संगीत की बिल्कुल भी समझ नहीं होगी, मेरे को यह भाषा ही नहीं आएगी विक्रांत जी, मेरे को अगर हिंदी समझ भी नहीं आएगी, तो मैं इसको उसका लुफ्त नहीं उठा पाऊंगा, उसका आनंद नहीं उठा पाऊंगा, उसको समझ ही नहीं पाऊंगा। तो मैं आपसे क्या निवेदन करूंगा कि विक्रांत जी इसको उस भाषा में समझाओ जो भाषा में मैं समझ पा रहा हूँ। ऐसा मैं मेरे एक सर की बात बताता हूँ, वो हमको पढ़ा रहे थे, हमको स्लोप बता रहे थे कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, लाइन कितना इंक्लाइंड है। बच्चे ने पूछा तो सर ने बोला कि स्लोप मतलब ग्रेडियंट। अब बच्चे को स्लोप समझ में नहीं आ रहा तो ग्रेडियंट वर्ड और उससे डिफिकल्ट वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है, वो कैसे समझ में आएगी। ये ऐसा हो तो बच्चा जिस भाषा में उसको समझ पा रहा है उसमें समझाने का। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है, जो नई एजुकेशन NEP 2020 लॉन्च किया है, उसमें इस बात पर भी जोर है कि हम जो लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में उनको गणित और विज्ञान पढ़ाएं, सोशल सामाजिक विज्ञान भी उसमें पढ़ाएं, जिससे बच्चों की समझ बढ़ेगी। आपको कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, 12वीं तक एक बच्चे ने गुजराती मीडियम में पढ़ाई करी, ठीक है, वो क्लास का टॉपर था, उसने बायोलॉजी उसका विषय था, उसने बहुत अच्छे मार्क्स आए, एग्जाम देकर वो मेडिकल कॉलेज में चला गया, ठीक है। उसने पढ़ाई किसमें करी है, गुजराती मीडियम। जब वो मेडिकल में जाता है पूरी पढ़ाई कौन सी भाषा में, इंग्लिश में। वहां पर जाकर जो बच्चा अपने कॉलेज में अपने स्कूल में टॉप रहा है, जिसने बोर्ड में इतना अच्छा परफॉर्म किया है, जिसने नीट के एग्जाम में इतना अच्छा परफॉर्म किया, तब तो जाकर उसका मेडिकल में एडमिशन हुआ। वहां पर जाकर बच्चे को वो टेक्निकल वर्ड समझ में नहीं आते। और ऐसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो वहां पर जाकर उनको एक एक दो दो विषय में वो फेल हो जाते हैं। जब वो फेल हो जाते हैं तो वो मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं और अधिकतर बच्चे एक साल के बाद में पढ़ाई छोड़ देते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया है, फर्स्ट ईयर में ऐसे बच्चों के लिए इंग्लिश एक विषय उसमें ऐड किया है, लेकिन वो विषय भी उनको जो 12 साल का है उसको मेकअप नहीं कर सकता। तो मेरा तो गवर्नमेंट से ये गुजारिश रहेगी, ये रिकमेंडेशन रहेगा कि हम अगर बच्चों को 12वीं तक हमने गुजराती में पढ़ाया या मराठी में पढ़ाया है तो आगे की जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसको भी आप उसमें करिए ताकि बच्चे को उसका बेनिफिट मिले। आज मराठी का एक बच्चा है, वो कॉमर्स में उसने बहुत अच्छा किया, लेकिन वो CA बनना चाहता है, लेकिन जब उसके पास में CA की बुक्स आती है, जब उसके नोट्स आते हैं, स्टडी मटीरियल आता है, तो वो देखता है पूरा मटीरियल तो दो ही लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी। अब उसने तो हिंदी में लिखना पढ़ना भी नहीं सीखा। अब आप बताइए वो बच्चा जो टॉपर है वो CA बनना चाहता है, वो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना चाहता है, CS करना चाहता है, लेकिन आगे जाके क्या देखता है, आगे की पढ़ाई हायर एजुकेशन तो पूरा का पूरा अंग्रेजी में, वो कैसे सर्वाइव करेगा बताइए। वहां जाकर वो जो टॉपर है वो भी वीडियो का एवरेज बच्चा हो जाता है, लो परफॉर्मर हो जाता है। ये कुछ चीजें हैं जिस पर हमको ध्यान देना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है। ऐसा अगर आपके माध्यम से ये चीज हम लोग गवर्नमेंट तक या अथॉरिटीज तक पहुंचा सकते हैं, हायर एजुकेशन को भी इसमें सम्मिलित करें, और जो ये जो विषय है गणित का है और विज्ञान का विषय है, अगर हम इनको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाएं तो आगे जाके बच्चों का बहुत उद्धार होगा, बहुत आसानी होगी।
0: संजय जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोगों को जो LD वाले बच्चे हैं यानी स्लो पढ़ते हैं, जो बच्चे स्पीड नहीं उनका रहता है, उन बच्चों को भी आपने कहा कि एक बहुत ही अच्छा 30 घंटे का जो है अगर उनको टाइम मिल जाता है तो निश्चित तौर पे वो बच्चे भी नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ाई कर सकते हैं और उनको भी उनको जोड़ सकते हैं। तो कई बार हम लोग कुछ एफर्ट नहीं लेते हैं तो इस वजह से भी वो बच्चे छूट जाते हैं। थोड़ा सा हमें जो है स्कूल मैनेजमेंट हो या सरकार हो या टीचर्स हो थोड़ा सा इस पे और आगे काम करें तो निश्चित तौर पे उन बच्चों को हम लोग सभी को साथ लेके चल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और आपने कहा कि इस माध्यम से अगर ये संदेश सब तक पहुंच जाए और वो इसके लिए कुछ काम करे तो और अच्छा है। तो मैं भी चाहूँगा कि आप अगर देख रहे हैं, अगर आप अथॉरिटी हैं, तो निश्चित तौर पे संजय जी ने जो बात बताई उसके ऊपर थोड़ा सा एक बार फिर से रीथिंक करें, विचार मंथन करें और फिर इन चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पे हम जो पीछे स्लो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको स्पीड अप कर सकते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ सकते हैं। तो संजय जी थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया। एजुकेशन फील्ड में काफ़ी समय से आप हैं तो आपके पास पूरा अनुभव है, और गणित के आप शिक्षक हैं तो बच्चों को गणित पढ़ाते हैं, और गणित को पढ़ाने के लिए आपने काफ़ी कुछ मशक्कत की है, और बच्चों को आप जो है जो नहीं पढ़ना चाहते उनको भी आप जो है अच्छी तरह से समझा सकते हैं। और एक तरीका अच्छा लगा कि बच्चों को डायरेक्टली पढ़ाई पढ़ाने के बजाय उनसे बातें करके फिर अगर पढ़ाना शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पे बच्चों का एक कनेक्शन बन जाता है। कई बार हम लोग तुरंत आ जाते हैं और लेसन शुरू कर देते हैं तो वो थोड़ा सा मोनोटोनस लगता है, कहीं ना कहीं लगता है कि सर पढ़ा के जाने वाले हैं और हमको सिर्फ सुन के जाना है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं, वहाँ जुड़ाव नहीं होता है। तो जैसे कहते हैं कि अगर आप आज टेक्नोलॉजी में और हम लोग सब तीन लोग यहाँ पर हैं तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं वायरिंग जुड़ा हुआ है, हाँ जो दिख नहीं रहा है लेकिन जुड़ा हुआ है, चाहे एयर से हो चाहे फिजिकली हो, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तब हम लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को भी कनेक्ट करके फिर उनकी अपनी भाषा करके उनके साथ थोड़ी हंसी मजाक करके फिर आप पढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पे बच्चों को भी अच्छा लगेगा और वो आपको सुनेंगे भी और समझने की कोशिश भी करेंगे, खुल जाएंगे बच्चे और आपके साथ रैपो बनेगा। तो उनके पास जो भी उनको लगता है कि ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो आपसे वो खुल के पूछेंगे तो सही। अभी क्या हो रहा है कि आप पढ़ाते चले जाते हैं तो जो नहीं समझ में आया तो पूछने में भी डर लगता है उनको, तो ये चीज़ें भी ना हो। तो बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू संजय जी, बहुत सारी बातें आपने की, फिर वापस मिलते हैं हम लोग कुछ नई बातें लेकर। थैंक यू सो मच संजय
1: जी, आपका और मधुबन रेडियो का बहुत बहुत आभार, विक्रांत जी का आभार, बहुत अच्छे दो भजन सुनाए उन्होंने, थैंक यू वेरी मच। रमेश जी आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया मधुबन रेडियो का कि उन्होंने मौका दिया।
0: जी जी जी, नमस्कार मित्रों, आज के इस लाइव सेशन में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपने काफ़ी कुछ समझा होगा, सीखा होगा, जो कुछ अच्छी बातें आपको लगी हो उससे दूसरों तक जरूर पहुँचाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर एक बार सलाम नमस्ते, खमा गनीसा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, जय हिंद जय भारत, ओम शांति।
2: शिक्षण माहिती ज्ञान मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका, रेडिओ मनभावन 90.8 FM, always heard.

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि वीके कृष्ण मेनन का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 3 मई। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, शिवाजी नगर भोपाल से जयप्रकाश दुबे और उज्जैन से संजीव जैन। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

चंपारण भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास से जुड़ी वो भूमि जहां सत्य ने पहली बार अन्यायी सत्ता की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारा था, जहां से नील की खेती करने पर मजबूर शोषित किसानों की मुक्ति का महामंत्र गूंजा और पूरे देश में छा गया। चंपारण यदि गांधी जी को महात्मा बनाने वाली प्रयोगशाला थी, तो उस प्रयोगशाला में प्रज्वलित सबसे प्रकाशवान दीपक थे राजकुमार शुक्ल। उन्हें चंपारण आंदोलन का वास्तविक शिल्पकार माना जाता है। राजकुमार शुक्ल का जन्म 23 अगस्त सन 1875 को चंपारण जिले के सतवरिया गांव में हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार था जिसकी अपने क्षेत्र में बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनके पिता का नाम कोलाहल शुक्ल था, जो मूलतः सीवान जिले के निवासी थे, लेकिन बाद में वो सतवरिया आकर बस गए थे, जहां उन्होंने काफी भूमि अर्जित की। इसी समृद्ध परिवार में राजकुमार शुक्ल का पालन पोषण हुआ। इस तरह वो एक समृद्ध और प्रभावशाली किसान थे, जिनकी आर्थिक स्थिति उस समय के औसत किसान से बहुत बेहतर थी। उनका विवाह केवला देवी से हुआ था। उनके पारिवारिक जीवन में उनकी पत्नी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि पंडित राजकुमार शुक्ल को एक सत्याग्रही के रूप में विकसित करने और संघर्षों में साथ देने में केवला देवी का महत्वपूर्ण योगदान था। उनके परिवार में दो पुत्रियां थीं, जिन्होंने उनके संघर्षपूर्ण जीवन को बहुत करीब से देखा था। राजकुमार शुक्ल ने अपनी युवावस्था में बेतिया राज में एक मुहर्रिर यानी मुंशी के रूप में भी कार्य किया था, जहां उन्हें प्रशासनिक और विधिक प्रक्रियाओं का आरंभिक ज्ञान प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह कृषि तथा सामाजिक कार्यों में संलग्न हो गए। ये वो समय था जब अंग्रेजों ने किसानों पर अत्याचार की एक अलग ही कहानी लिखी। अपनी ही कृषि भूमि पर किसानों के लिए अलग नियम, कानून और प्रतिबंध लागू हुए, जिसने किसानों की दुर्दशा कर रखी थी।

19वीं शताब्दी के मध्य से ही यूरोपीय बागान मालिकों ने चंपारण में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी थीं और ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में उन्होंने किसानों पर अत्याचार का एक संगठित ढांचा तैयार कर लिया था। उन्होंने तिनकठिया खेती की प्रणाली लागू की थी। ये एक दमनकारी भू राजस्व व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी भूमि के प्रत्येक बीघा यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा भूमि पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी। ये प्रणाली बेहद शोषणकारी थी क्योंकि किसानों को नील की फसल के लिए जो मूल्य दिया जाता था वो उनकी लागत से भी कम होता था। बागान मालिक स्वयं ही मूल्य निर्धारित करते थे। नील की खेती से भूमि की उर्वरता का भी ह्रास होता था क्योंकि नील की जड़ें गहरी होती थीं जो भूमि की उर्वरता को नष्ट कर देती थीं, जिससे उस भूमि पर बाद में अनाज उगाना कठिन हो जाता था। इसके साथ ही 40 प्रकार के अवैध कर भी किसानों पर लगाए गए थे। राजकुमार शुक्ल स्वयं बेलवा कोठी के अंतर्गत एक रैयत थे, इसलिए इन प्रताड़नाओं का उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव था। अंग्रेजों के इस शोषण और अत्याचार ने उन्हें भीतर तक आंदोलित कर रखा था। उनकी संघर्ष यात्रा इन्हीं अत्याचारों के प्रतिरोध से आरंभ हुई। उनका प्रतिरोध सन 1907-8 के आसपास स्पष्ट रूप से उभरने लगा था। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था और भारत की धरती पर यह उनका पहला आंदोलन था, लेकिन चंपारण में गांधी जी के आगमन से लगभग एक दशक पहले भी किसानों ने सामूहिक विद्रोह किए थे, जिसमें शेख गुलाब और शीतल राय जैसे नेताओं की अगुवाई में बागान मालिकों के गुंडों और कारिंदों को कड़ी चुनौती दी गई थी। राजकुमार शुक्ल ने इस दौरान स्थानीय पंचायतों को संगठित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। वो चाहते थे कि किसान अपने विवादों को निलहे साहबों की अदालत के बजाय अपनी पंचायतों में सुलझाएं। राजकुमार शुक्ल की ये पहल ब्रिटिश सत्ता और बागान मालिकों के लिए एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि इससे उनके न्यायिक और प्रशासनिक एकाधिकार को खतरा पैदा हो गया था। वो बागान मालिकों के लिए एक बड़ा अवरोध बन गए थे। परिणाम स्वरूप उन्हें व्यक्तिगत क्षति पहुंचाई गई, उनकी फसलों को नष्ट कर दिया गया, उनके घर को आग लगा दी गई, उनका पशुधन भी छीन लिया गया, उन पर दर्जनों झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। बेलवा कोठी के बागान मालिकों ने उन पर चोरी, मारपीट और दंगे के आरोप लगाए। सन 1914 में एक बागान मालिक के साथ हुए विवाद के कारण उन्हें कुछ हफ्तों के लिए जेल में भी डाला गया, लेकिन राजकुमार शुक्ल का प्रतिरोध लगातार जारी रहा। ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, उनका संकल्प अडिग रहा। अपमानजनक स्थिति और आर्थिक नुकसान के बावजूद वो अंग्रेजों को चुनौती देते रहे, लेकिन अब उन्हें लगने लगा था कि चंपारण की जो समस्या है वो केवल स्थानीय स्तर पर प्रतिरोध करके सुलझाई नहीं जा सकती है, इसके लिए एक राष्ट्रीय नेतृत्व की आवश्यकता है और उनकी दृष्टि में इस समस्या को केवल गांधी जी ही सुलझा सकते थे।

राजकुमार शुक्ल के इस संघर्ष में उनके साथ जुड़े पीर मोहम्मद मुनीश। वो एक पत्रकार थे और कानपुर से निकलने वाले समाचार पत्र प्रताप में वो चंपारण के किसानों पर होने वाले अत्याचारों की खबरें लिखते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में निकलने वाला ये पत्र किसानों की पीड़ा का दर्पण बन गया। पीर मोहम्मद मुनीश के साथ मिलकर राजकुमार शुक्ल ने इस संदर्भ में गांधी जी और कई राष्ट्रीय नेताओं को पत्र भी भेजे थे। दोनों की जोड़ी ने ही मिलकर वो वैचारिक धरातल तैयार किया जिस पर बाद में चंपारण सत्याग्रह खड़ा हुआ। दिसंबर सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, अंबिका चरण मजुमदार जैसे अनेक नेताओं से राजकुमार शुक्ल खुद मिले, लेकिन सभी ने उनसे कहा कि वो स्थानीय स्तर पर इस समस्या को सुलझाएं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब गांधी जी से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने गांधी जी से प्रार्थना की कि आपको चंपारण चलना होगा, वहां किसान मर रहे हैं। हालांकि अधिवेशन में उनके प्रयासों से चंपारण में किसानों की दुर्दशा पर एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया था, लेकिन राजकुमार शुक्ल इससे संतुष्ट नहीं थे। वो चंपारण में गांधी जी की उपस्थिति चाह रहे थे, जैसे नियति भविष्य लिख रही थी। अधिवेशन के बाद गांधी जी ने चंपारण जाने में अपनी असमर्थता जताई और राजकुमार शुक्ल साये की तरह उनके पीछे हो लिए। गांधी जी कानपुर गए, शुक्ल जी वहां भी पहुंच गए। गांधी जी साबरमती आश्रम लौट आए तो वो आश्रम में डेरा डालकर बैठ गए। गांधी जी कलकत्ता पहुंचे तो वो पहले से ही वहां मौजूद थे। गांधी जी ने बाद में लिखा भी कि इस अनपढ़ किंतु संकल्पवान किसान ने मुझे जीत लिया। अंततः 9 अप्रैल सन 1917 को वो राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण के लिए रवाना हुए और 10 अप्रैल को दोनों पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचे। दोनों की साधारण वेशभूषा देखकर नौकरों ने उन्हें अछूत समझ लिया तथा कुएं से पानी तक लेने से रोक दिया। यही वो बिंदु था जब गांधी जी ने महसूस किया कि भारत की लड़ाई केवल अंग्रेजों से नहीं, सामाजिक कुरीतियों से भी है। इसके बाद गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां जेवी कृपलानी और छात्रों ने उनका स्वागत किया। 15 अप्रैल सन 1917 को वो मोतिहारी पहुंचे, जो पूर्वी चंपारण का मुख्यालय था। यहीं से आरंभ हुआ चंपारण सत्याग्रह, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह जिसने ब्रिटिश राज को हिला कर रख दिया। कमिश्नर ने गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने इस सरकारी आदेश की विनम्रता पूर्वक अवहेलना की। 18 अप्रैल को मोतिहारी की अदालत में गांधी जी की पेशी हुई। राजकुमार शुक्ल ने आसपास के गांवों में सूचना फैला दी, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों की संख्या में किसान अदालत परिसर में जमा हो गए। ये जन सैलाब ब्रिटिश सत्ता के लिए अप्रत्याशित था। और फिर गांधी जी ने अदालत में अपना ऐतिहासिक बयान दिया। उन्होंने कहा, मैंने कानून तोड़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज और मानवीय सेवा के उच्चतर कानून का पालन करने के लिए जिला छोड़ने से इनकार किया है। उनका बयान बिजली की तरह पूरे देश में फैल गया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा, मुकदमा वापस ले लिया गया और गांधी जी को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति मिल गई। ये भारत में सविनय अवज्ञा की पहली बड़ी नैतिक जीत थी। राजकुमार शुक्ल गांधी जी के साथ गांव-गांव घूमते रहे। गांधी जी ने उन क्षेत्रों को देखा जहां अत्याचार चरम पर था। इस जांच के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद और जेबी कृपलानी आदि के साथ एक टीम तैयार हुई। राजकुमार शुक्ल ने किसानों को निर्भीक होकर बयान देने हेतु प्रेरित किया और लगभग 10,000 किसानों के बयान दर्ज हुए। इस आधार पर चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ, तिनकठिया प्रथा समाप्त हुई, किसानों से वसूले गए अवैध धन का एक हिस्सा लौटाने का आदेश हुआ और अन्यायपूर्ण कर से भी मुक्ति हुई। राजकुमार शुक्ल ने इस आंदोलन के बाद भी शिक्षा, स्वच्छता और जन जागरण के कार्य में स्वयं को समर्पित रखा। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। वो विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और खादी के प्रचार में जुट गए तथा किसान सभा आंदोलन के प्रारंभिक स्तंभ बने। वर्षों की कानूनी लड़ाई में ब्रिटिश दमन ने उनकी संपत्ति छीन ली थी, पशुधन नष्ट हो गया था, उनकी आर्थिक स्थिति भी टूट चली थी, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। इसी विपन्न अवस्था में उन्होंने 20 मई सन 1929 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि राजकुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन लें, राजकुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: भूदान की तरह साल की अखंड पदयात्रा में विनोबा ने सर्दी, गर्मी और बारिश की सतत मार सहन की है। कुदरत की क्या करामात थी कि जहां सबसे अधिक गर्मी, वही गर्मी के दिनों में उनकी पदयात्रा चलती थी। जहां सबसे अधिक ठंड, वही ठंड के दिनों में घूमने का कार्यक्रम बनता था। यही हाल बारिश का। बारिश के ही दिनों में उनकी असम यात्रा और केरल यात्रा चली। लोग कहते, बाबा अब तो बैठिए, कब तक घूमते रहेंगे, इतना कष्ट इस जर्जर शरीर को क्यों दे रहे हैं, थोड़ा उसकी तरफ भी तो देखिए।
1: तुम लोग कुछ नहीं जानते, इस यात्रा में इस देह को थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी, परंतु बापू सतत मेरे आगे पीछे रहते हैं और मुझे संभालते हैं, इसीलिए तो मुझे ना कोई तकलीफ है ना कोई चिंता।
0: भूदान पदयात्रा में एक डच सज्जन विनोबा जी से मिलने आए। पहले ही मुलाकात में उन्होंने कहा, विनोबा जी आपके भारत में मैं आया था गांधी जी को देखने। मैं दिल्ली गया, बंबई गया और भी कई जगह भटका, परंतु गांधी कहीं नहीं दिखाई दिए। इज ही रियली डेड? क्या वे सचमुच मर गए?
1: नो सर, ही स्टिल लिव्स। सर्वोदय के काम में लगे हुए 4-5 हजार सेवक जो गांव-गांव भटककर तपस्या कर रहे हैं, उनके दिल में गांधी जिंदा बैठा है, उन्हें गांधी जी ही घुमा रहे हैं और मुझे भी।
0: ऐसे ही एक दफा किसी ढलती हुई शाम को बाबा अपने 4-5 साथियों के बीच बैठे हुए थे। लालटेन का हल्का प्रकाश बाबा के मुंह पर पड़ रहा था। बापू के बारे में बातें चल रही थी। बाबा भूतकाल में खोते जा रहे थे, एक के बाद एक प्रसंग कहते जा रहे थे। आखिर उन्होंने आंखें बंद कर ली और धीरे से गदगद आवाज सुनाई दी,
1: वे हुक्म दें और मैं उनके हुक्म को उठा लूं, यही आज तक का मेरा जीवन रहा है।
0: पवनार का पवित्र परमधाम आश्रम, सुबह का शांत शीतल समय। ब्रह्म विद्या मंदिर के सभी सदस्य अपने अपने दैनिक कार्यक्रम में व्यस्त थे। नहा धोकर जब मीराबेन बाबा की छोटी सी कुटिया में जाकर देखती है तो कुछ नई प्रवृत्ति में बाबा अकेले व्यस्त थे। बिछावन अस्त व्यस्त पड़ा था और नीचे बैठक जमाने का प्रयास चल रहा था। पूछा, क्या करना है?
1: नीचे सिर्फ दरी और तकिया ही रखनी है, बाकी सब निकाल दो।
0: मीराबेन ने कहा, बाबा पहले पाट पर की गद्दी निकाल दी, फिर पाट ही निकाल दिया, अब नीचे सिर्फ दरी रखने के लिए कह रहे हैं, क्या बात है?
1: देखो, एक तो हमारी ये छोटी सी कुटिया, उसमें पाट हो तो फिर आने वाले को बैठने में मुश्किल होती है, सब नीचे बैठे और मैं ऊपर बैठूं, यह भी ठीक नहीं। इस दृष्टि से मैंने पाट निकलवा दिया और नीचे बिछाने का शुरू किया, परंतु नीचे की बैठक में मेरी इस मोहिनी पर सबका पांव पड़ता है, यह ठीक नहीं। इसलिए आज से तय किया है कि दिन में दरी पर नीचे ही बैठना और लेटना, रात को पाट पर सोऊंगा और मोहिनी मेरे नीचे नहीं रहेगी परंतु मेरे सिरहाने रहेगी।
0: और विनोबा ने बिस्तर में से एक ब्राउन रंग का कंबल हाथ में लेकर मीराबेन को बुलाया। कोने में बापू का नाम लिखा हुआ था। उनका पारायण बाबा की मुंह से अनेक बार सुनने को मिलता था, आज फिर से सुनने को मिला।
1: तुम जानती हो इस मोहिनी की कहानी? सन 1950 में मेरा दिल्ली जाना हुआ, तब बापू का यह कंबल मुझे बख्शीश में दिया गया, तब से वह मेरे पास ही है। बापू की यह स्मृति है इसलिए उसका नाम मैंने मोहिनी रखा है। रोज नीचे बिछाकर इतने साल सोया हूं, मेरे पास सुरक्षित रहा है। गांधी स्मारक वाले जानेंगे तो मैं मानता हूं कि मुझसे मांगेंगे नहीं, क्योंकि मैं उसे संभालता हूं।
0: वैराग्य के प्रखर वैनाश्वर में जिनके मोह, ममत्व और आसक्ति का कण कण सुलग कर भस्म हो चुका है, निरासक्त सन्यासी का उत्तम नमूना जिसने अपने जीवन के द्वारा दुनिया के समक्ष खड़ा किया है, उस बैरागी को मोहिनी की मोहिनी से मोहित देखा तो मेरा सिर उनके इस अलौकिक प्रेम के आगे झुक गया। मोहन उनके शरीर के रोम रोम में व्याप्त हो गया है। इसकी प्रतीति हुई। मोहन की मीठी याद दिलाने वाली उस मोहिनी सेज पर सोने के लिए रोज रात को जय जगत करके ये शुभ्र वस्त्रधारी मूर्ति जब मच्छरदानी में अदृश्य होती है तब बहुत बार लगता है कि बाबा बापू में समा गए। बापू के शिक्षण का निचोड़ विनोबा ने इस प्रकार रखा है।
1: सत्यम जीवन का लक्ष्य, संयम जीवन की पद्धति, सेवा जीवन का कार्य, यह सब आचरण में उतरे यही भगवान से निरंतर प्रार्थना है।

0: दूसरा दुर्दैव क्या? जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है उन सबको मैंने अपने हाथों से भोजन पकाकर खिलाया है। जेल में भी जेल को आश्रम बनाते वक्त मैंने रसोई का काम उठा लिया था। मेरे हाथ की रसोई यानी बिना मिर्च मसाले की। पहले तो राजनीतिक कैदियों में से 10-15 लोग ही बिना मिर्च मसाले की रसोई खाते थे, क्योंकि सबको तीखा पसंद था। परंतु जब मैंने रसोई बनाना शुरू किया तो सब राजनीतिक कैदी सादी रसोई ही ज़्यादा पसंद करने लगे। धीरे धीरे दूसरे कैदी भी उसमें शामिल होने लगे। फिर तो संख्या इतनी बढ़ गई कि जेलर को प्रार्थना करनी पड़ी कि कृपया आप दूसरे कैदियों के भोजन की जिम्मेदारी मत उठाइए।
1: रसोई को विनोबा फाइन आर्ट कहते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि रसोई सुखादु बननी चाहिए और खाना चाहिए अस्वाद की भावना से। रसोई का स्वाद सिर्फ मिर्च मसाले से नहीं आता है, उनमें जब भाव उड़ेला जाता है तब मनपसंद भोजन बनता है। माँ के हाथ से जब रसोई बनती है तब रसोई की प्रत्येक प्रक्रिया में माँ के हृदय का भाव उड़ेला जाता है। उसका वो कर्म उपासना रूप होता है। जेल में सब राजनीतिक कैदी अपने पढ़ने के लिए अपनी रुचि की किताबें मंगवाते रहते थे। जेल का एक सरकारी अफसर उन पुस्तकों को देखकर आपत्तिजनक पुस्तकों पर रोक लगाता था और देने जैसी पुस्तकों की इजाजत देता था। दूसरे सब कैदियों की रोज बर रोज कुछ न कुछ शिकायत सुनाई देती थी कि आज फलानी किताब को रोका गया क्योंकि सरकार की दृष्टि से वो खतरनाक थी। विनोबा की किताबों पर कभी कोई रोक नहीं लगती थी क्योंकि उनकी फेहरिस्त में गीता, उपनिषद, पुराण जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ रहते थे। एक दिन किसी ने कहा, हम सहस्त्र किताबें मंगाएंगे तो उनमें से हमें एक दो मिलेंगी और विनोबा की सभी किताबें मंजूर होकर आएंगी। तब विनोबा ने कहा,
0: यह सरकार मूर्ख है। खतरनाक क्या है, उसकी उसे कोई पहचान ही नहीं है। अकल होती तो उपनिषद, गीता को सरकार जरूर रोकती और दूसरी किताबें जिनसे वह भड़की हुई रहती है उन्हें आने देती। गीता का आधार नहीं होता तो अंग्रेज सरकार के लिए महाखतरनाक गांधी गांधी ना बनते, तिलक तिलक ना बनते, श्री अरविंद अरविंद ना बनते। जिन ग्रंथों में जीवन का अधिष्ठान है वे ही ग्रंथ जुल्मी सत्ता में बारूद लगा सकते हैं।
1: स्वराज आंदोलन के सैनिकों की सजा थी जेल यात्रा। 1943 में एक बार सिवनी जेल से कैदियों को दक्षिण में वेलूर जेल ले जाया गया। दूसरे कैदियों के साथ विनोबा भी सवेरे वेलूर जेल में पहुंचे। जेलर हाजिर था। सब कैदी राजनीतिक थे, इसलिए हर एक को अपनी अपनी आवश्यकता बताने के लिए जेलर ने कहा। प्रत्येक ने अपनी अपनी आवश्यकताएं बताई। जब विनोबा की बारी आई तब उन्होंने कहा,
0: मुझे दो चीजों की जरूरत है। ये जरूरतें पहले पूरी होनी चाहिए। एक तो मेरे सिर के बाल बहुत बढ़ गए हैं इसलिए नाई चाहिए, और दूसरे मैं तमिल सीखना चाहता हूँ इसलिए मुझे कोई तमिल शिक्षक चाहिए।
1: विनोबा ने पहले ही दिन से तमिल भाषा सीखना आरंभ कर दिया। बेचारे तमिल शिक्षक को लगता था कि ये मनुष्य तमिल क्यों सीखता है, क्या मद्रास में व्यापार करना चाहता है। वे जेल में 4 महीने रहे, परंतु दूसरे कैदियों की मदद से दक्षिण की चारों भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम उन्होंने सीख ली। वे मानते हैं कि जिस प्रांत का अन्न खाते हैं उस प्रांत की भाषा न सीखे तो वो प्रांत द्रोह माना जाएगा। दूसरा, राष्ट्र की भावनात्मक एकता सिद्ध करने के लिए प्रत्येक अदक्षिणी को दक्षिण की कोई न कोई भाषा सीखनी ही चाहिए। जेल के प्रांगण में एक जगह घास को कतर कर 1945 लिखा था। हर साल ये डिजाइन बदल दी जाती थी। पुरानी घास निकाल डालते थे, चालू वर्ष के अंक बना दिए जाते थे। उसका दृष्टांत देकर विनोबा अपने साथियों को समझाते थे।
0: घास के प्रत्येक तिनके का अपना अपना स्वतंत्र प्रयोजन है, परंतु उन सब तिनकों का मिलाजुला एक सामूहिक प्रयोजन भी है।

0: और वह है 1945 बनाना। यह बात ये तिनके नहीं जानते, वे तो उगते हैं और मिटते हैं, परंतु सब मिलकर एक प्रयोजन सिद्ध होता है। हम सब भी तिनके जैसे ही हैं, हम अपना प्रयोजन देखते हैं, परंतु इस सृष्टि में अपना क्या प्रयोजन है वह हम नहीं जानते। परंतु कोई ऐसा प्रयोजन जरूर है जिसके लिए सृष्टिकर्ता ने हमें पैदा किया।
1: वेलूर जेल में विनोबा और उनके साथी जब पहुंचे, उसके पहले कोंडी वेंकट्टा नाम के भाई वहां पहुंच गए थे और उन्होंने कैदियों में प्रार्थना शुरू करवा दी थी। प्रार्थना में गीता के 11वें अध्याय से कुछ श्लोकों का पाठ कराया जाता था और फिर रामधुन आदि बापू की प्रार्थना करवाते थे। क्रम में कुछ फर्क था। जेल में बापू के कुछ अनुयायी गए, उनको ऐसी प्रार्थना पसंद नहीं आती। वे विनोबा से कहते रहते कि आपको जोर देकर कहना चाहिए कि बापू ने जो क्रम रखा है वही क्रम रखना चाहिए, क्रम भंग होना अच्छा नहीं है, ये बात आपको उन्हें समझानी चाहिए।
0: भाई मुझसे ये काम नहीं बनेगा, भारत में हिंदुओं में एक ही प्रार्थना चले यह असंभव है। जिसके हृदय को जो स्पर्श करे वही प्रार्थना हो सकती है। हिंदू धर्म की यही विशेषता है कि उसमें हजारों संप्रदाय रह सकते हैं। तिलक ने हिंदू की व्याख्या की, उपास्यानाम अनियमः साधनानाम अनेकता। जिस धर्म में साधना की अनेकता हो, मतलब किसी एक ही निश्चित साधना का आग्रह ना रखा जाए, वही तो हिंदू धर्म है।
1: गोपाल राव काले विनोबा के बचपन के सहपाठी रहे हैं। जेल में रहते समय एक बार उनकी पत्नी विनोबा से मिलने आई। विनोबा की तबीयत के समाचार पूछकर उन्होंने विनोबा से पूछा, क्यों जेल में कैसा लग रहा है? विनोबा ने लाक्षणिकता में जवाब दिया,
0: आपने सर्कस देखा है ना, सर्कस में मनुष्य पशु पर जुल्म ढाते हैं, जेल में इससे उल्टा होता है। यहां पशु मनुष्य पर जुल्म ढाता है। जेल जीवन का विधायक दर्शन देखिए। सच्चा आश्रमी जीवन तो जेल में भी अनुभव किया जा सकता है। गिनती के कपड़े, पानी का मग और कांजी की कटोरी, इतने से बर्तन, इससे अधिक असंग्रह के व्रत का पालन कहां होगा? नियम से नहाना, खाना, काम करना और घंटी बजते ही सो जाना और उठना, क्रमबद्ध जीवन, बीमार पड़ने की छुट्टी नहीं, भोजन में रोज ही अस्वाद व्रत, इससे अधिक संयम व्रत हम अपने आश्रम में भी कहां पालते हैं? अपने आश्रमों में जेल की अच्छी चीजें अपनाकर सुधार करना होगा।
1: सिवनी जेल में राजनीतिक कैदी अपने रिश्तेदारों को पत्र लिख सकते थे, परंतु विनोबा को यह भेद मंजूर नहीं था, इसीलिए वे किसी को भी पत्र नहीं लिखते थे। 3 साल में उन्होंने किसी को पत्र नहीं लिखा था। एक दिन न जाने जेलर का क्या हुआ कि वो विनोबा के पास आकर बैठ गया और पूछने लगा,
2: आपके जीवन में दुख जैसी कोई चीज नहीं है?
0: हाँ है, परंतु वह दुख कौन सा है यह आप ही ढूंढिए। मैं आपको 7 दिन का समय देता हूं।

0: विनोबा जी, पिछले एक सप्ताह में मुझे कुछ मिल नहीं रहा, कृपया आप ही बताइए आपको कौन सा दुख है।
1: इस जेल में सूर्योदय और सूर्यास्त का दर्शन नहीं होता, यह मेरा सबसे बड़ा दुख है।

0: लोग पूछते कि विनोबा जी, आपको 1200 कैलोरी भोजन कैसे पर्याप्त मालूम होता है? तो हंसते हंसते विनोबा जी जवाब देते,
1: अरे भाई, मेरी खुराक कितनी है यह आप कैसे जानेंगे? इन 1000 कैलोरी के अलावा मैं गीता के 18 अध्याय खाता हूँ और उससे भी अधिक चारों ओर फैला हुआ विशाल आकाश खाता हूँ। अब आपको कुछ कहना है?